बिल्कुल दोस्तों, प्रेम की गंगा बहाना बहुत ज़रूरी है। और ये गीत आपने अभी सुना मुकेश की आवाज़ में फिल्म संत ज्ञानेश्वर से। और दोस्तों, ज़िंदगी हमें कई बेहतरीन दोस्त दे सकती है, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमें बेहतरीन ज़िंदगी दे देते हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दोस्ती से ये गीत।

दोस्तों, हम सब यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह हैं। कब सफ़र ख़त्म हो जाएगा और कब हम चल पड़ेंगे, ये सिर्फ प्रभु ही जानता है। आइए सुनते हैं परिचय फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म पैगाम से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अभी से कुछ ही देर में 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का गोल्ड सुप्रभात। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का।

म्यूजिकल दिल लगी। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। 9:10 पर सुनिएगा स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा।

9:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। सुबह 10:30 पर सुनिएगा दिल का मेल बॉक्स। ग्यारह बजकर दस मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम तस्वीर का।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से

संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो चला है 6:11 और 58 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। वैसे आज सुबह जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो हल्की हल्की ठंड का आभास हो रहा था, और वैसे भी आज 30 सितंबर है, कल से अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। और ये महीना सिर्फ प्रकृति के एक नए अध्याय का आरंभ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ सीखने का भी एक आरंभ है, जीवन के परिवर्तन को समझने की एक पहल है। जैसे ऐसा लगता है कि ये जो बदल रहा है मौसम, ये हमें ये सिखा रहा है कि सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जो चिंताएं हमारे मन में हैं, जो नकारात्मकता है, वो हमेशा रहने वाली नहीं, वो भी धीरे धीरे समय के साथ बदलती जाएगी। बस हमें उसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, या उसे स्वीकार करना होता है। तो अगर स्वीकार करते हैं तो बदलाव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बस

जी हाँ, तो बात हो रही थी बदलते मौसम की और हमारे अपने अंदर के मौसम की। तो जब ये मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो ये हमें एक सुंदर बदलाव की तरफ लेकर जाती हैं, अपने अंदर के बदलाव की तरफ। क्योंकि आकाश की निर्मलता है, हल्की ठंडी हवाएं हैं, त्योहारों की मधुर आहट है, और ये सब हमें याद दिलाती हैं कि जैसे ये मौसम बदल रहा है, निर्मल होता जा रहा है और सब कुछ हमारे हिसाब से या एक नए उम्मीद की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसे ही हम भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो भी चिंताएं हैं, जो भी क्रोध है, जो भी अंदर की शिकायतें हैं, उन्हें बस अब एक जगह स्थिर कर दीजिए। क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव इसीलिए है ताकि हम उस स्थिरता को समझ सकें और इस बाहरी मौसम के बदलाव के साथ साथ अपने अंदर भी ये बदलाव ला सकें। तो अब कुछ ही दिनों में आप तैयारी करना शुरू करेंगे माँ दुर्गा की स्तुति की, उनकी पूजा की। तो ये भी हमें यही संदेश देता है कि नई ऊर्जा ये बस सामने ही है, नई उम्मीदें बस आने ही वाली हैं। इसलिए अपने अंदर इन सब नकारात्मकताओं को निकाल दीजिए, अहंकार को विनम्रता में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम देवी आराधना की बात करते हैं ना, तो वो भी अज्ञान से ज्ञान की विजय है, और अहंकार से हम विनम्रता की तरफ बढ़ते हैं, निराशा से विश्वास पर आगे जाते हैं। बस ऐसे ही जब बदलाव की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां जो है ना, जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं, वो अपने आप बदलने लगेंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी। सिर्फ अपनी मनोस्थिति को बदलने की बात है। तो ये मनोस्थिति बदलने का बहुत ही अच्छा समय है, इसलिए इसे बदलिए और देखिए कि सब कुछ कैसे आपके मुताबिक होने लगता है।

जी हाँ, तो बात हो रही थी बदलते मौसम की, और उस बदलते मौसम के साथ हमारे आत्मनिरीक्षण की, हमारे ठहराव की, हमारी मानसिक शांति की। और ये सब कुछ आसानी से हो जाता है इस बदलते मौसम में, क्योंकि देखिए ना, गर्मियों की चंचलता अब धीरे धीरे जाने लगी है और सर्दियों की लंबी और शांत जो एक स्थिरता है वो आने लगी है, जिससे बाहर का जो कौतूहल है या बाहर का जो शोर है वो कम होने लगता है। हमारा मन अपने आप ही ध्यान या आत्ममंथन की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसे में जब बाहर की गतिविधियां कम होती हैं, मन शांत होने लगता है, तो अपने आप ऐसा लगता है कि हम स्वाध्याय करें, यानी कुछ पढ़ें, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझें। इसीलिए इस समय जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने आप

जी हाँ, तो बात हो रही थी बदलाव की, इस मौसम की और अपने मन की सकारात्मकता की। जानते हैं जैसे जैसे शरद ऋतु आने लगती है, ये मौसम हमें सिखाता है कि पुरानी आदतें, नकारात्मक सोच और बीती बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ज़रूरी है, नए की तैयारी करना ज़रूरी है। और ये जो नया है ये हमेशा एक ताजगी लेकर आता है। इसीलिए जब हम प्रकृति को देखते हैं और इस बदलाव को देखते हैं तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उस ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए कि भगवान ने एक और अवसर दिया, ईश्वर ने, परमात्मा ने, परवरदिगार ने एक और ऐसा हमें समय दिया, ऐसा चक्र दिया जिसमें कि हम उस बदलाव को स्वीकार कर कर आगे बढ़ सकते हैं। और जानते हैं इस मौसम में धीरे धीरे रिश्ते भी गहराने लगते हैं क्योंकि शामें अक्सर परिवार के साथ बीतती हैं, वो गर्माहट रिश्तों में महसूस होती है, वो गहरे होते जाते हैं। और सच कहें तो ये भी आध्यात्मिकता का एक स्वरूप है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनसे बात करें, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखें। क्योंकि वास्तव में आध्यात्मिकता का अर्थ तो तभी समझ में आता है ना जब हमारा व्यवहार बदलने लगे, नहीं तो अगर हम वैसे ही रहें तो फिर क्या ही फ़ायदा कुछ भी करने का, पढ़ने का, स्वाध्याय का, त्याग का, मेडिटेशन का या प्राणायाम का या जो भी हम करते हैं उसका। बात तो यही है कि हमारे व्यवहार में कितना बदलाव आ रहा है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो बदलाव हमसे ज़्यादा औरों को नजर आए और वो कहें कि हाँ, आप में बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है ना, ऐसे हमारे अंदर की नकारात्मकताएं भी सब खत्म होती जाएं।

और इस बदलाव के साथ साथ हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं इसकी। तो इस समय अगर आध्यात्मिकता के तरीके से सोचें तो इनवर्ड रिफ्लेक्शन का ये टाइम होता है, यानी अंतर्मुखी होने का ये समय होता है। और इसके लिए आप 10 से 15 मिनट का मौन रख सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है, हम प्रेजेंट होते हैं इस बात के लिए कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है। दूसरा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है इस समय, कि आप ताज़ा भोजन करें, गर्म भोजन करें और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखें, क्योंकि अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो भी हम इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छी तरह रह नहीं पाते। तो ये चीज़ें करके देखें और आप देखेंगे कि जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। फिलहाल समय हो चला है कि आप चलें सुने श्री रामचरितमानस।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: प्रदर्शयति। रक्षा उद्योगानां तथा आपूर्ति व्यवस्था सहकारस्य विषये दशमं भारत कोरिया गणराज्यस्य JCM इति संयुक्त समिति सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। गतरात्रौ जम्मू कश्मीरस्य बडगाम जनपदस्य उच्चक्षेत्रेषु सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे लश्करे तैयबा इत्यस्य एकः प्रमुखः आतंकी मृतः। यद्यपि भारतीय सेनायाः कश्मीरस्थितस्य चिनारकोरे इत्यनेन मृतस्य भयोत्पादकस्य परिचयः न प्रकटितः, तथापि अधिकारिणः तं सुलेमान शाह अथ मूसा इति नाम्ना अभिज्ञातवन्तः, यः पाकिस्तानस्थस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः भयोत्पादकः आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले चिनारकोरे इत्यनेन उक्तं यत् बडगाम नगरस्य यूस्मर्ग इत्यस्य समीपे कोरा क्षेत्रे ऑपरेशन कोराग संचालितम् आसीत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उपमंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi, Mr. Singh said that the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
2: The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability.
4: He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
3: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price.
5: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Toor, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Ravi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
3: Home Minister Amit Shah is visiting Punjab today to flag in Nasha Mukt Punjab Yatras in Jalandhar. The Home Minister will also hold a gathering on the occasion. The Yatras, which were launched by BJP President Nitin Naveen on the 18th of this month from Pathankot, have covered a distance of 4,000 kilometres in all the 117 assembly constituencies in 13 days. The objective of Yatras was to transform the fight against drugs in Punjab into a people's movement. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Tayyaba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Tayyaba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army, Police and the Central Reserve Police Force in Korag near Yusmarg in Budgam. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. India has reaffirmed its commitment

7:10 और ठीक 58 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है एक खूबसूरत सुबह बुधवार की और आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात, जहां पर हर सुबह शुरुआत होती है मुस्कान, सेहत और सकारात्मक विचारों के साथ। आज आप हैं पूनम के साथ, नमस्कार सुप्रभात। सोचिए सुबह सुबह जब खिड़की से आती सुनहरी धूप आपके चेहरे को छूती है, रसोई में चाय की खुशबू फैलती है और बाहर चिड़ों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो दिल अपने आप कह उठता है ना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो इसी खूबसूरत जिंदगी की बात हम करते हैं गोल्ड सुप्रभात में और ढूंढते हैं कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें खुशियाँ मिलती हैं, जैसे कि एक शांत सुबह या परिवार के साथ बिताए 5 मिनट या अपने लिए निकाला हुआ थोड़ा सा समय। सब कुछ हमें और ताजगी देता है, जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है, जैसे कि ये गाना।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: जी, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हम बात कर रहे थे आज की सुबह की खूबसूरती की और इस सुबह के साथ हमारे मन के बदलाव की। लेकिन सच कहें तो ये मन तब बदलता है जब हम सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, और जब दर्शन करते हैं तो एहसास होता है कि ये जो एक और दिन है ना, खूबसूरत सा दिन, ये उन्होंने हमें दिया है बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनली। और हमें सिखाता है कि हम भी किसी के लिए कुछ भी अनकंडीशनली या बिना किसी शर्त के, बिना कुछ अपेक्षा किए कैसे कर सकते हैं। वैसे वो आ गए थे आज सुबह 6:14 के आसपास और जाएंगे 6:09 के आसपास। और अगर बात करें मौसम की, तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इस वक्त। धूप हल्की हल्की है और जो शहर का मौसम है वो भी बिल्कुल शांत है। धुंधली सी धूप, हल्की सी धुंध, ये सब मिलाकर इस सुबह को बहुत ही खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। लेकिन दोपहर तक होते होते गर्मी का एहसास हो जाएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल इसी मौसम को एन्जॉय करते हैं, इसकी खूबसूरती की बात करते हैं और साथ ही ये वाला प्यारा सा गाना भी सुन लेते हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, और हम बात कर रहे थे सुबह की खूबसूरती की। और ये खूबसूरत तब होती है जब छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, जैसे सुबह का मतलब ना मोबाइल की घंटी, ना काम की चिंता, बल्कि कुछ पल अपने और अपने शरीर, अपने मन के नाम। जी हाँ, तो बात हो रही है अपने आप से जुड़ने की, यानी योग की। और योग जो है ना, वो सिर्फ हमें शारीरिक रूप से नहीं जोड़ता, बल्कि मानसिक स्तर पर भी अपने आप से जोड़ने का काम करता है। वैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर सुबह हम कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग, जिसे हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, लेकिन अगर योग के हिसाब से कहा जाए तो वो है ताड़ासन, जिसमें सीधे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, धीरे धीरे पंजों पर आइए और सामान्य सांस लेते हुए शरीर को हल्का सा खींचिए। जानते से होता क्या है?

इससे हमारे शरीर का बैलेंस यानी संतुलन बढ़ता है और सजगता का अनुभव होता है, यानी हम अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, जिसमें आराम से बैठना है और बिना जोर लगाए एक नाक से, एक नासिका से सांस लेकर दूसरे से छोड़ना है। तो ये आप किसी एक्सपर्ट से बात करके और शुरू कर सकते हैं। बस इतना समझिए कि योग करना ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि अपने आप से जुड़ने का एक माध्यम है। शुरुआत में हो सकता है कि हमें थोड़ी देर लगे, हम अपनी क्षमता के अनुसार करें, धीरे धीरे हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये ना सोचें कि कोई और जो है वो तो ये आधे घंटे योग कर लेता और हम 10 मिनट भी नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप अपने हिसाब से, अपने स्वास्थ्य समस्याएं अगर आपको कोई हैं तो उसके हिसाब से एक विशेषज्ञ की सलाह लेकर योग कर सकते हैं, पर ज़रूरी है कि अपने लिए सुबह सुबह 10 मिनट ज़रूर निकालिए। जैसे हम अपने घर का बहुत ध्यान रखते हैं ना, उसे सुंदर रखते हैं, ऐसे ही अपनी बॉडी को, अपने शरीर को भी बहुत सुंदर और स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बातें तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन एक प्यारा सा गाना आपका इंतज़ार कर रहा है, तो पहले वो गाना सुन लेते हैं और हाँ, उसके बाद बात करेंगे कि एक पौष्टिक जो नाश्ता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और जब हम पौष्टिक नाश्ते के साथ शुरुआत करते हैं तो दिन वास्तव में बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है।

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारे और आपकी और हमारे सुबह सुबह के नाश्ते की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह जल्दी में होते हैं और सिर्फ चाय पीकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन ये आदत जो है इसे बदलने की बहुत ज़रूरत होती है। एक संतुलित नाश्ता यानी एक खूबसूरत शुरुआत, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अपने लिए अपना सकते हैं। जैसे कि आप वेजिटेबल पोहा बना सकते हैं, इस समय सब्ज़ियाँ अच्छी आ रही हैं।

वक्त की लहरों पर बहता देखो एक और मुकाम आ गया, खामोशी से गुजरते सफर में सितंबर का आखिरी पैगाम आ गया। श्रोताओं, आज 30 सितंबर है, यानी इस सुहाने महीने का आखिरी दिन। सितंबर हमसे विदा ले रहा है और खिड़की से आती हल्की हल्की ठंडी हवा इशारा कर रही है कि त्योहारों और गुलाबी ठंड का मौसम बस दस्तक देने ही वाला है। महीने का ये आखिरी दिन हमसे कह रहा है कि भाग दौड़ को थोड़ा थामिए और इस खूबसूरत सुबह का मजा लीजिए। और जानते हैं कि आज की सुबह को और भी शानदार बनाने के लिए हमारे साथ कौन है। आज जन्मदिन है सुरों के सरताज शान का, और साथ ही जयंती है सादगी के महानायक ऋषिकेश मुखर्जी और अमर आरती के रचयिता पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी की। तो चलिए सितंबर के इस आखिरी दिन की मखमली सुबह को एक खूबसूरत सफर में बदलते हैं हमारे बर्थडे बॉय शान की जादुई आवाज के साथ।

0: इस खूबसूरत और दिलकश तराने के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट नीना अरक्कल।
1: हेलो जया एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड जया यू राइटली सेड अबाउट द लास्ट डे ऑफ मंथ सितंबर एंड वी आर नॉट जस्ट एंडिंग अ मंथ, वी आर मेकिंग रूम फॉर अ न्यू वन।
0: बिल्कुल।
1: सो Listeners, don't just count the days, but make the days count with new energy and positive vibes. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 30th of September 2026. And Jaya, let's begin with the headlines.
0: Bilkul.
1: Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Singh said that the developments reflected the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystems, underlining the Navy's efforts towards achieving self-reliance in the defence sector. Defence Minister emphasised that the Indian Navy's warship production ecosystem is now meeting global benchmarks. He said the warships commissioned recently contain over 75% indigenous content.
0: इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है कि बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी उजागर नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की है। बता दें कि मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था।
1: The 10th India-Republic of Korea Joint Committee Meeting, JCM, on Defence Industries and Logistics Cooperation was held in New Delhi yesterday. The Defence Ministry said both countries

0: He's reviewed the ongoing bilateral cooperation in defense industries and logistics and discussed avenues to further strengthen and expand defense ties. The discussions provided an opportunity to exchange views on enhancing cooperation between the defense industries of the two countries and promoting greater engagement in defense production and logistics.
1: इधर भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया।
0: U.S. President Donald Trump launched America.gov portal, describing it as a major overhaul aimed at putting government services directly in citizens' hands. Speaking at the unveiling yesterday, Trump said the platform would serve as a single digital entry point to federal government information and services, using plain language and artificial intelligence technology. The launch came alongside an executive order directing federal agencies to integrate public-facing services with more than 1 lakh annual users into the platform.
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सफाई मित्रों का सम्मान संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।
0: Indian Railways has approved 2 new MEMU mainline electric multiple unit services connecting Meerut city with Khurja and Saharanpur in Uttar Pradesh. The Ministry of Railways said that the new services will provide additional travel options to passengers and strengthen regional rail connectivity centered around Meerut city.
1: Neena. उत्तर प्रदेश से एक और खबर है कि प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है और इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल भी शामिल हैं। अब जानकारी देते हैं हमारे कुछ खेल की। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक जीते हैं। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया और नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो इस कल 2 स्वर्ण के साथ भारत ने पदक तालिका में भी छलांग लगा दी है, क्योंकि भारत अब 6 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब समय आ गया है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत
0: चेन्नई। The 18th century geology and anthropology buildings at the government museum in Egmore are undergoing a 10 crore rupee conservation makeover by the Public Works Department and will be completed by next year. The conservation work involves roof restoration, flooring, wall plastering and making the buildings waterproof. Some more from Chennai. The Association of Senior Living India has urged the government to recognize the senior living care industry. It also pressed for the launch of insurance products for senior citizens above 65 years of age, covering home care, assisted living and memory care. C. Rajagopal, chairman of the association, said that with the aging population projected to reach about 350 million over the next 2 decades, it is a necessity to recognize the senior living care industry. He said that the government can bring in some basic regulations to comply with.
1: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खबरों का। दिल्ली नगर निगम ने कल सोनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की शुरुआत की है और दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे काफी दिनों से। तो दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया

0: कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन वर्षों के लिए किसी भी ब्याज या जुर्माने के बिना निर्धारित करदाता का भुगतान किए बिना वित्त वर्ष 19-20 से पूर्व की अवधि से संबंधित बकाया संपत्ति कर राशि और उस पर लागू ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। ये योजना इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावित रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करना, प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक और त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने का अनुदान दिया जाएगा। दूसरे निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
1: And now from Delhi we move on to Bengaluru, Jaya. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has issued directions to the banks and financial institutions that they must not deduct Griha Lakshmi benefit of 2,000 rupees credited to the beneficiaries by the state government. The petition had mentioned that the Griha Lakshmi guarantee of 2,000 rupees credited to the women's accounts are being adjusted for the loan installments or interest recovery by the banks and financial institutions. The Chief Minister informed that the Chief Secretary will write to the Bank Management Board for not deducting the money from Griha Lakshmi beneficiaries' bank accounts. Over 1 crore 24 lakh women, heads of families in the state, get 2,000 rupees under the government scheme.
0: और अब चलते हैं देश की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध मुंबई की ओर, जहां महाराष्ट्र सरकार 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य पुलिस और अन्य सरकारी बलों में समायोजित करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है, जिसमें से 25% को सशस्त्र बलों में बरकरार रखा गया है और शेष 75% अन्य सरकारी सेवाओं में अवसरों के लिए वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र चारा विकास नीति को मंजूरी दी गई और इस नीति का उद्देश्य पशुओं के लिए पर्याप्त चारा सुनिश्चित करना, जिलेवार चारा उपलब्ध कराना, चारे की कमी को दूर करना है। सरकारी बंजर भूमि, चारागाह और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों का उपयोग भी चारा उत्पादन के लिए किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय से संबंधित ढांचे को भी मंजूरी दी है, जिसमें पदों की सीमा 2761 निर्धारित की गई है। इसके अलावा और भी कई ऐसे फैसले हैं जिसको मंत्रिमंडल ने कल मंजूरी दी है।
1: Time for Hyderabad News now. Direct air connectivity between South India and Central Asia marked a major milestone with the launch of Centrum Air's non-stop service connecting Uzbekistan capital Tashkent to GMR Hyderabad International Airport. The inaugural flight operated on Tuesday, operating twice weekly. The schedule features flights departing Tashkent every Monday and Thursday at 21:30 hours, arriving in Hyderabad at 2:20 hours the following morning. The return flights depart Hyderabad every Tuesday and Friday at 3:35 hours, landing in Tashkent at 7:45 hours.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के विकास परियोजनाओं में कॉरपोरेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आज विभिन्न कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेगी। कोलकाता के एक 5-सितारा होटल में होने वाले इस बैठक में कई मंत्रियों, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल और राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक का आयोजन औद्योगिक और कॉरपोरेट घरानों के साथ समन्वय बढ़ाने और इस आंकड़े को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब जानते हैं कि हमारे महानगरों में मौसम का क्या हाल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम से। राजधानी दिल्ली में आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। अगर आप बाहर भी निकल कर देखें तो काफी सुहाना मौसम बना हुआ है। कुछ दिनों से बारिश हो रही है। अगर आज के तापमान की बात करते हैं तो शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस

0: सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जॉय सिटी कोलकाता में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना अर्कल से।
1: चेन्नई इज लाइकली पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 28 डिग्री एंड मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्री व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 30 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 23 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस।
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ प्रमुख घटनाओं के जिक्र का। आज 30 सितंबर है और आज की तारीख में खेल से लेकर सिनेमा तक कुछ ऐसे पन्ने दर्ज हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं।
1: In 1687, Mughal Emperor Aurangzeb captured Golconda Fort in Hyderabad. In 1935, Hoover Dam was formally dedicated on the Colorado River in the United States. In 1938, Britain, France, Germany and Italy signed the Munich Agreement concerning the Sudetenland region of Czechoslovakia. In 1949, the Berlin airlift ended after nearly 15 months of operations. In 1954, the USS Nautilus, the world's first nuclear-powered submarine, was commissioned.
0: और साल 2003 में आज ही के दिन भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया था। वे चेस की दुनिया के वे बादशाह हैं जिन्होंने भारत में इस खेल की परिभाषा ही बदल दी और आज देखिए कितने ग्रैंड मास्टर्स भारत ने दिए हैं। साल 2009 में आज ही के दिन संगीत के महानायक और प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को साल 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो रूह खुश हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद यानी साल 2010 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दशकों पुराने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला विराजमान, नरमोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का आदेश दिया था, जिसने आगे चलकर इस पूरे मामले को नई दिशा दी। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही किया था। और यहाँ हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पंडित श्रद्धाराम शर्मा यानी श्रद्धाराम फिल्लौरी जी से, जिनकी आज जयंती है। 30 सितंबर 1837 को पंजाब के जालंधर में फिल्लौर शहर में जन्मे श्रद्धाराम जी एक महान समाज सुधारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता सेनानी और अद्भुत संगीतकार थे। श्रोताओं, हम बचपन से ही भगवान विष्णु जी की जो कालजयी आरती सुनते आ रहे हैं या फिर गाते आ रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसकी रचना साल 1870 में इसी महान विभूति ने की थी।

केवल शब्द ही नहीं बल्कि आज हम जिस पारंपरिक मधुर धुन में इसे गाते हैं वो संगीतबद्ध भी खुद पंडित श्रद्धाराम जी ने ही किया था। इस आरती की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के फिल्म जगत में लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल से लेकर हरिहरन जैसे दिग्गजों ने इसे अपनी आवाज दी है और मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म पूरब और पश्चिम में तो इसे एक आइकॉनिक सिनेमाई दृश्य के रूप में फिल्माया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के समय वे अपने ओजस्वी कविताओं और महाभारत के पाठ से लोगों में आजादी का अलग भी जगा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साल 1877 में भाग्य

0: पार्वती नाम का ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जिसे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है।
1: Monica Anna Maria Bellucci, born on September 30th, 1964, is Italy's most celebrated actress and model, admired for her elegance. Beginning her career with Elite Model Management, she fronted campaigns for Dolce & Gabbana before stepping into acting with Vita Coi Figli in 1991. Her breakthrough came with Melina, followed by memorable roles in Brotherhood of the Wolf, Irreversible, and The Matrix Reloaded and Revolutions. She portrayed Mary Magdalene in The Passion of the Christ, and at 50 made history as the oldest Bond girl in Spectre 2015. Here's Daniel Craig and Monica Bellucci in Spectre.
2: Hey, you need to take a breath and calm down. You're in shock.
3: Get away from me! Just get away! Did it cross your mind that you led them to me?
2: I haven't got time for this. You need to tell me everything you know about L'American. I gave your father my word.
0: आज हम साहित्य जगत की एक ऐसी शख्सियत को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से कोंकणी भाषा को समृद्ध किया। आज प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार और कवि यूसुफ शेख की पुण्यतिथि है। 30 सितंबर 2017 को 69 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। यूसुफ शेख जी की अपनी बेहतरीन कोंकणी काव्य रचनाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिनमें उनका काव्य संग्रह घंटी बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने साहित्य अकादमी के कई प्रकाशनों के लिए भी काम किया, और सबसे खास बात, उन्होंने पवित्र कुरान के 30वें और अंतिम भाग का कोंकणी भाषा में अनुवाद कर समाज में भाषाई और सांस्कृतिक भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश की थी। साहित्य जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा।
1: Dear listeners, today we remember Jalaluddin Muhammad Rumi, better known simply as Rumi. Rumi's life was shaped by exile, mysticism, and an extraordinary friendship. Rumi's masterpiece, The Masnavi, is often called a Quran in Persian and remains one of the most revered books of Islamic literature. His words transcend cultures and languages, speaking of love, loss, and the divine. No wonder he's celebrated as the world's most popular poet, with translations reaching millions across the globe. Let's listen to the poetry for heart and experience the mystical poetry of Jalaluddin Muhammad Rumi, translated into English and set to a deeply moving Sufi fusion melody.

हम याद कर रहे हैं उर्दू साहित्य और शायरी के उस मुकद्दर को जिन्होंने उर्दू अदब को एक नई दिशा दी। आज महान कवि, लेखक और आलोचक अल्ताफ हुसैन हाली की पुण्यतिथि है। हाली साहब का जन्म 1837 में पानीपत में एक विद्वान अंसारी परिवार में हुआ था। तंगहाली के बावजूद उनका पढ़ने का जज्बा ऐसा था कि वे दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्हें उर्दू के सबसे महान शायर मिर्जा गालिब का साथ मिला और वे उनके सबसे चहेते और आखिरी शागिर्दों में से एक बने। हाली साहब ने रूढ़िवादी शायरी छोड़कर समाज को जगाने वाली कविताएं लिखी। उन्होंने एक महाकाव्यात्मक नज्म लिखी, मुसद्दस ए हाली। इसके अलावा उनकी नज्में हुब्बे वतन यानी कि देश प्रेम और बरखा रुद आज भी साहित्य के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने गालिब की जीवनी यादगार गालिब भी लिखी। हाली साहब की शायरी सिर्फ दिल बहलाने वाली नहीं थी बल्कि जिंदगी में हमेशा कुछ बेहतर तलाशने का एक फलसफा थी। उन्होंने बेहद मशहूर गजल में ये कहा है कि इंसान को कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए बल्कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश करती रहनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन हाली के इस बेमिसाल साहित्यिक योगदान, समाज सुधार और उनकी विद्वता को देखते हुए साल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान और उपाधि

0: उलेमा यानी विद्वानों का सूर्य से नवाजा था।
1: Truman Capote was one of America's most distinctive literary voices. Capote's fame soared with Breakfast at Tiffany's in 1958, a novella that became a cultural touchstone. Here's an excerpt from Breakfast at Tiffany's.
2: Well, that's how many words it takes. Will you marry me?
3: Oh, we'll get married, all right. I know we will. And in church and with his family there and everything. And that's why he's waiting till we get to Rio. Probably.
2: Do you think it's trying to tell us something?
3: I hope you like chicken and saffron rice served with chocolate sauce. It's an East Indian classic, my dear. 3 months ago, I couldn't scramble eggs.
0: और आज ही जयंती है सादगी के सबसे बड़े जादूगर, महान फिल्म निर्देशक, लेखक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी की, जिन्हें प्यार से पूरी इंडस्ट्री ऋषिका दा कहती थी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिका दा ने विज्ञान और गणित की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें रुपहले पर्दे की दुनिया में ले आई। कोलकाता में मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय के प्रोडक्शन में एक कटर और एडिटर के रूप में ऋषिकेश ने अपने सफर की शुरुआत की थी। यही उनका असली सिनेमाई घराना बना, जहां उन्होंने 2 बीघा जमीन और देवदास जैसी क्लासिक फिल्मों की एडिटिंग की। बाद में वे मुंबई आ गए। 1957 में फिल्म मुसाफिर से बतौर निर्देशक कदम रखा। उन्होंने राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स को उनके करियर के सबसे बेहतरीन और यादगार भूमिकाएं दी। ऋषिका दा ने हमें आनंद, बावर्ची, चुपके चुपके, अभिमान और गोलमाल जैसी कालजयी फिल्में भी दी, और उनकी फिल्मों के गाने आज भी हर पीढ़ी की पहली पसंद है। सुनते हैं फिल्म खूबसूरत का ये गीत, पिया बावरी।

0: सिनेमा में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1999 में देश के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी फिल्मों में जैसे आनंद और अनुराधा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एडिटर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। उनकी फिल्म आनंद का एक डायलॉग आज भी हम सब के जीने का फलसफा है।
1: क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मुशाए जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो डर किस बात का।
0: बहुत खूब, आज भी इससे लोग अपना फलसफा मानते हैं। तो आइए फिल्म आनंद से ही वो सदाबहार और दार्शनिक गीत सुनते हैं जिसे मन्ना डे की शानदार आवाज ने अमर कर दिया है।

अब बात करते हैं आज के सबसे सुरीले जन्मदिन की। आज जन्मदिन है हम सब के चहेते प्लेबैक सिंगर शांतनु मुखर्जी यानी शान की। 30 सितंबर 1972 को माया नगरी मुंबई में जन्मे शान का नाता एक बहुत ही प्रतिष्ठित बंगाली संगीत घराने से है। संगीत के माहौल में पले बढ़े शान पॉप एल्बम तन्हा दिल से रातों रात स्टार बने। शान ने आगे चलकर बॉलीवुड को चांद सिफारिश, जब से तेरे नैना और चार कदम जैसे एक से बढ़कर

0: श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और रीना को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

0: है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह 2-स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु

0: पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 4,00,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीख की है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि यह पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निज़ाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाज़ों की तैयारी का इको निज़ाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज़्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निज़ाम की अहमियत का एतराफ करते हुए भारत के बहरी निगरानी निज़ाम में खातिर का अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमोदरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियाँ तजज़ियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहरिया की जदीदकारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नज़रिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगा। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदराज के लिए खसूसी कैंपों का अहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के बारे में मालूमात हासिल करने और इंतखाबी फॉर्म हासिल करने या दाखिल करने के लिए इन कैंपों में पहुंचे। कैंप आज भी जारी रहेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इन कैंपों में मौजूद BLOs तलबा के फॉर्म भरे हुए फॉर्म हासिल करने और SIR से मुतालिक सवालात के हल के लिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कैंपों का एक और मरहला अगले महीने की 7 और 8 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तमाम जुमरों के वोटर्स के इंदराज के लिए अगले माह की 4 और 11 तारीख को तमाम पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। कमीशन ने कहा कि रवां साल 1 अक्टूबर को या इससे पहले 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए दरख्वास्त दहिंदगान को वोटर फहरिस्त में अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में दरख्वास्त देनी चाहिए। इसी ने वाज़े किया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा समातें की जा चुकी हैं। चुनाव कमीशन ने यह भी कहा है कि जिन वोटर्स को अनमैप्ड या मंतकी एतबार से फर्क के लिए नोटिस मौसूल हुए हैं उनकी मदद BLOs करेंगे जो दस्तावेजात जमा करने के लिए उनके घरों का दौरा करेंगे। इसी ने दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी के शेड्यूल में तरमीम की है। दावे और एतराजात दायर करने की मुद्दत अगले माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी जबकि हतमी वोटर फहरिस्त रवां साल 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल शाम सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक चोटी का दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त कमांडर फौजी मूसा के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज की चिनार कौर ने कहा कि यह कार्रवाई बडगाम में यूसमर्ग के नजदीक कोराग में फौज, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने मुश्तरक तौर पर अंजाम दी। मूसा जम्मू और कश्मीर में कई हमलों में मुलविस होने की वजह से मतलूब था। 5 सितंबर को यूसमर्ग में हुई मुठभेड़ में वो बच निकला था लेकिन इसका करीबी माविन यासिर हलाक हो गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उगाए गए लिलियम के फूलों की पहली कमर्शियल कार्गो परवाज

0: को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सक्सेना ने बताया कि कमर्शियल कार्गो लद्दाख की ज़रई तारीख में नए बाब का आगाज है। जनाब सक्सेना ने कहा कि बागबानी फूलों के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और लद्दाख के मवाफिक आबो हवा और दर्जा हरारत के सबब आला मेयार के साथ हौसला अफजा कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जहां वो जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर दाखला इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये यात्राएं, जिनका आगाज बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने इस महीने की 18 तारीख को पठानकोट से किया था, 13 दिनों में सभी 117 असेंबली हलकों में 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी हैं। इन यात्राओं का मकसद पंजाब में मुनशियात के खिलाफ लड़ाई को अवामी तहरीक बनाना है। ये यात्राएं फिलहाल पंजाब को दरपेश तीन अहम मसाइल, मुनशियात की बढ़ती लत, अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी पर मरकूज हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्ज हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक आला सतही मुकम्मल इजलास के दौरान भारत का मौकिफ पेश किया। जनाब जॉर्ज ने कल नस्ल परस्ती, नस्ली इम्तियाज़, गैर मुल्कियों से नफरत और अदम रवादारी से निमटने के मामले में भारत के गैर मुतजलजल अज़्म को दोहराया। जनाब जॉर्ज ने डर्बन एलामिए और प्रोग्राम ऑफ एक्शन DDPA को अपनाए जाने की 25वीं सालगिरह के मौके पर अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली की आला सतही मीटिंग के दौरान ये बात कही। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका का दौरा करेंगे, जहां वो G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे और अमरीकी सनती रहनुमाओं, सरमायाकारों, स्टार्टअप्स और भारतीय बिरादरी के अफराद से तबादले ख्याल करेंगे। जनाब गोयल अमरीकी तिजारती नुमाइंदों USTR की दावत पर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग G20 रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत को यकजा करेगी, जहां आलमी तिजारत और कसीर जहती तिजारती निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉमर्स और सनअतों की वजारत के मुताबिक भारत सभी G20 अराकीन के साथ तामीरी तौर पर मशगूल रहेगा और जवाबित पर मबनी खुले, शमूलियाती, शफाफ, मसावी और तफरीक से पाक कसीर जहती तिजारती निज़ाम की तश्कील की जानिब काम करेगा। इस दौरान तरक्की पजीर ममालिक के लिए पॉलिसी साजी में गुंजाइश पैदा करने पर आलमी तिजारती तंजीम WTO के साथ बातचीत मरकूज रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल कतर के दोहा में AIIB सालाना मीटिंग के तनाजुर में अपने कतरी हम मनसब अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पूरे कतर में भारत की UPI अदायगी निज़ाम को वसत देने और दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कतर की जानिब से भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे, सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे के कौमी फंड और दो तरफा सरमायाकारी माहदे को हतमी शक्ल देने पर बातचीत मरकूज रही। दोनों रहनुमाओं ने दोहरे टैक्स से बचने से मुतालिक माहदे पर भी तबादला ख्याल किया, ताकि तिजारत और सरमायाकारी और टैक्सेशन पर वाज़े नुक्ते नज़र अपनाया जा सके। मोहतरमा सीतारमन ने भारत कतर ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक ले जाने वाली हालिया आला सतही मशगूलियात को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। आज इस खसूसी सीरीज़ में हम आपके लिए एक ऐसी मिसाल लेकर आए हैं कि किस तरह इस विजन को पानी से मुतालिक इस्लाहात के जरिए अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दहाइयों से गुजरात मुसलसल खुश्क साली और पानी की शदीद बुरान के साये में जी रहा था। बुरान के बंदोबस्त से मुनज़्ज़म तख्लीक की तरफ रुख मोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर-आला पानी के जामे हिकमत अमली शुरू की। गुजरात को पानी से महफूज बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरबेसन वाटर ट्रांसफॉर्म चीप डेमो और नहरों के वसी नेटवर्क को इस्तेमाल मिलाया गया। सुजलाम सुफलाम जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्टों ने शिमाली अजला में 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहरों के जरिए सैलाब के इजाफी पानी का रुख मोड़ दिया, जबकि सयून योजना ने सौराष्ट्र की खुश्क साली से मुतासर झीलों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया, जिससे 10 लाख एकड़ से ज़्यादा की आबपाशी की सलाहियत पैदा हुई। 1,85,000 से ज़्यादा चेक डैम तामीर किए गए, जिससे ज़ेर तामीर पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और गुजरात की ज़रई और माशी तरक्की की एक मजबूत बुनियाद रखी गई। पानी की किल्लत से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इस तब्दीली के सफ़र को याद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: पानी की इस मुनज़्ज़म यकीनी फराहमी से लाखों किसानों को बराह रास्त बाइख्तियार बनाया गया, उनकी रोजी रोटी को महफूज बनाया है और खुश्क साली के मुसलसल खतरे को ख़त्म किया है। ज़मीनी सतह की ज़रात पर सयून योजना के असरात पर रोशन डालते हुए अमरेली ज़िला के किसान लबूबेन सरोला ने अपना तजर्बा बयान किया।
3: मेरा नाम लाभूबेन सारोला है। मैं गुजरात के अमरेली की वाकिया गांव की रहने वाली हूं। मैं एक किसान हूं। सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी को कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
0: जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने ओकाजाकी चौसोगो पार्क में खेले गए फाइनल मैच में आज चीन को 234 के मुकाबले 238 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकरोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एकरोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थीं, जिससे मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं और वो दूसरे एकरोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। ये 3 खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि बहर हिंद में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर। अखबार ने शहरी हवाबाजी के वजीर के बयान को अहमियत देते हुए लिखा है, नायडू ने दुनिया को भारतीय हवाबाजी की मार्केट से जुड़ने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर खजाना सीतारमन ने दोहा में नेपाल सऊदी अरब के वज़राए खजाना के साथ 2 तरफा अहमियत की हामिल मीटिंगें की।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरलम और शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीख की है। और कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमेरिका के विस्कॉन्सन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 56 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी म्यूजिकल दिल लगी। तो कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका दिन, कैसे गुजर रही है जिंदगी? अरे भाई, हर रोज की ऑफिस जाने की टेंशन है, तैयारी है, घर में कामों की व्यस्तता है, और शायद कहीं कहीं गाड़ी चलाते वक्त हमारी आवाज सुनने का एक मौका है। पर जो भी है, ये भाग थोड़ी पर जिंदगी जो है ये तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन इसी में से हमें कुछ पल निकालने हैं ना, और अपने पसंदीदा काम करने हैं, जैसे पसंदीदा संगीत सुनना जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने बताया ना, मैं हूँ पूनम आपके साथ, और लेकर आई हूँ वही प्यारी बातें, खूबसूरत नगमे और दिल को छू जाने वाली कुछ गीत, ऐसे ही गीत, ऐसी ही बातें जो हमें याद दिलाती हैं कि एक छोटी सी मुस्कुराहट जो है वो कितनी ज़रूरी होती है। और जब हम गाने सुन रहे होते हैं ना, तो कई बार किसी इंसान की मुस्कुराहट आंखों के सामने आ जाती है, तो कभी कभी कोई एक धुन ऐसी होती है जो सुनते सुनते हमारा पूरा दिन बीत जाता है, पूरे दिन का मूड भी बदल जाता है। तो संगीत से ऐसा ही कुछ रिश्ता है हमारा, कभी सुकून का, कभी परेशानी का, कभी दर्द का, कभी खुशी का, बस कोई ना कोई एक गाना हमारी ज़िंदगी का एक अहम, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी यादों का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं अप्रैल फूल के इस प्यारे से गाने के साथ।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आठ बजकर 52 मिनट और ठीक 52 सेकंड हो चले हैं। आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और ये है म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें हम बात कर रहे थे म्यूजिक के बारे में। वैसे आपने कभी सोचा है कि संगीत की तरह कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं, और जब बात हो साहित्य की या अभिव्यक्ति की या रचनात्मकता की तो याद आता है कि ऐसे सफ़र जिन्होंने अपने पाठकों को बहुत सारा समय दिया हो, 2 दशक से भी पूरा ज़्यादा समय दिया हो, उनका जिक्र कैसे ना हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कलरव पत्रिका की, जिसने 20 वर्ष पूरे किए हैं। 20 साल, सोचिए कितनी कहानियाँ, कितनी कविताएँ, कितने विचार, कितनी भावनाएँ इस सफ़र का हिस्सा बनी होंगी। और सच कहें तो किसी पत्रिका की यात्रा जो होती है ना, वो सिर्फ पन्नों या अक्षरों की यात्रा नहीं होती, बल्कि उन तमाम लेखकों, पाठकों, शुभचिंतकों की साझी यात्रा होती है जो अपने शब्दों से उसे जीवंत बनाते हैं। तो कलरव पत्रिका के 20 वर्ष का सफ़र एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर सभी जो रचनाकार हैं, जो पाठक हैं, उन सबका अभिनंदन है जिनके सहयोग से, स्नेह से इस यात्रा को एक विशेष बल मिला। कहते हैं संगीत दिल की भाषा है और साहित्य आत्मा की अभिव्यक्ति, और जब दोनों साथ हों तो फिर कोई भी लम्हा खूबसूरत हो जाता है। बस ये जो खूबसूरत यात्रा है, ये आगे भी ऐसे ही चलती रहे और हम कुछ ना कुछ नया जानते रहें, पढ़ते रहें, सब कुछ साझा होता रहे, यही हमारी शुभकामनाओं के साथ एक संदेश है।

तो इसी के साथ पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, रहेगा एफएम गोल्ड के साथ ही। कुछ देर में इंदु होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारत के नौसेना के घरेलू जहाज विनिर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संपत्तियों और विरासत को उनके मूल देशों में वापस लाने की सुविधा के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया है। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की है। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। चिनार कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बड़गाम के युसमार्ग के पास कोरग में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन कोरग चलाया गया। समाचार एजेंसियों के अनुसार मूसा जम्मू कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त था। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जिसमें अधिकतम तापमान शहर में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल।

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
3: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर

0: 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कॉम्पल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
1: जी।
2: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डिफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया था, और उसके बाद उनके साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। इसके चलते क्या हुआ,

0: 4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसपे एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितने उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आए हैं, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को कंसोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिन वो नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो, उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंकिंग सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर एन वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल। और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बिगड़ गया उसके बाद RBI ने एक रिफॉर्म्स लाया, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 ट्रिलियन रिकैपिटलाइजेशन किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया, तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज की पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में आप काफी टाइम

0: व्यक्ति ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही हुआ था, ये लोन जो पहले था ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ, जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था आज वो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स अब डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, हमने SME में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडररैटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया, अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
1: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिये, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मैं IBC लेके आता हूँ। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मैकेनिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप SME सेक्टर को बात करें, SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसको लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है, और उसके साथ SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो SME सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे SME सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे MSME सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आप उसका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ SME सेक्टर का 24% चल रहा है। MSME सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन MSME सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है SME सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग

0: आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट्स बनाए, और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे। तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबिल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखे कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14-15 लाख करोड़ कैश है। उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पे काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है, और पैसा भी उठा सकते हैं, और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्विन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका एवरग्रीनिंग बोलते हैं। जब आपको पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते रहते हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे, इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते। तो वो लोन वेवर खत्म हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया, और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी।

0: पता नहीं है आज यूएस में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया। मैंने दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना, इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
1: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके।
0: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था। और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था, तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिजिकल डिफिसिट उसमें नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है, 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था। रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिजिकल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक्स दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है। और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल, उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, यानी इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आता है तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को, जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम

0: आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गए एफसीएन में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का। आपको पता है कि एफसीएन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 यूएस बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोडमैप है, जिसे रोडमैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फास्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग, तो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जनरेशन था 10-20 साल में हो सकता है बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

30 सितंबर हो गई है आज, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 92 डेज बचे हुए हैं। आपको एक बार फिर से ये कहते हुए कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। नमस्कार।

वादा तो ये भी था कि हम अपना बहुत ध्यान रखेंगे। वादा ये भी था कि हम अपने लिए और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन अचानक से हमने ये पाया कि हम अपना ध्यान तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो बन गया है हमारा मोबाइल। क्या खबर थी, क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन एक वादा आप अपने आप से कर सकते हैं, और वो ये कि ये एक योजना है जिसके बारे में आप अगर जानिए तो फिर हो सकता है कि वो वादा आप पूरा कर सके। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक किफ़ायती जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख का आर्थिक कवर देती है। आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर में चालू बचत खाता होना चाहिए। प्रीमियम की राशि हर साल 31 मई से पहले या उस दिन आपके बैंक खाते से अपने आप ऑटो डेबिट कर जाती है। तो फिर घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लॉगिन करें अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं उसमें जाइए, अपनी योजना को सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी योजना है, क्या है, किस तरह से है, और उसके बाद खाता और विवरण दर्ज कीजिए। वो बचत खाता चुनें जिसमें आप प्रीमियम कटवाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी बुनियादी जानकारी जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, नॉमिनी है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा डिटेल जब लिख देंगे तो फिर भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:52:38। तो बात हो रही थी कि भाई हम अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उसके बाद जो चीज़ है जिसका हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं हमारा मोबाइल। देखिए कहीं इधर उधर तो नहीं बढ़ा।

अपनी इस दीवानी दिल को जरा दिखाइए तो सही, शहर और शहर के आसपास क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा उसको। त्रिवेणी कला संगम में 11 तक आर्ट फेस्टिवल होगा, अपनी डायरी में आप इसको अभी से नोट कर सकते हैं। और ये चलो बचपन नाम का आर्ट फेस्टिवल 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। सभी परफॉर्मेंस मुफ्त हैं, इसलिए इसके बारे में अभी से ही आप नोट करके रख लीजिए, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आईएसी में जाके देखिए, पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई है, कलाकार हैं सदफ और ये बहुत प्यारी सी है, बड़ी काफ़ी ब्राइट है। तो अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए शहर की खूबसूरती कितनी प्यारी है और वो हमें इनवाइट करती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पे अपनी शिकायत दर्ज कराना तो 311 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बजने वाले हैं 10, समय है ये समाचारों का। मिलती हूँ फिर से दिल का मेल बॉक्स में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओयोंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने एयोंग वोइन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. The camps will continue today as well. The EC said that block level officers or BLOs present at these camps are guiding the students to fill their forms, collect the filled in forms and also resolve queries related to SIR.

0: को विनियमित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी बातचीत जारी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य पेश किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने घोषणा को लागू करने के लिए ठोस राष्ट्रीय नेतृत्व वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संपत्तियों और विरासत को उनके मूल देशों में वापस लाने की सुविधा के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग की सराहना की है। श्री गुतरश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के अनुसार दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद, भारत संयुक्त राष्ट्र सहयोग और यूक्रेन में युद्ध तथा मध्य पूर्व की स्थिति सहित विभिन्न भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वार्ता में मौजूदा संघर्षों और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ पर उनके प्रभाव को कम करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड से अलग हुई। सत्र में सशस्त्र संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें संघीय सरकार को निर्देश दिया गया है कि कानून के अंतर्गत जहां तक संभव हो कार्यपालिका से जुड़े कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI शब्दों की जगह सुपर इंटेलिजेंस और SI शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: इनॉग्रेटिंग द एरा ऑफ सुपर इंटेलिजेंस शीर्षक वाले इस आदेश के तहत सरकारी एजेंसियों को अपने आधिकारिक पत्राचार, जनसंचार, डिजिटल वेबसाइटों, रिपोर्टों और प्रशासनिक नीति दस्तावेजों में नई शब्दावली का इस्तेमाल करना होगा। आदेश में कहा गया है कि तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा से आगे निकल गई है। इनमें प्रशासन को सुपर इंटेलिजेंस की नई कानूनी परिभाषा तैयार करने और मौजूदा अमेरिका के कानूनों में उसके अनुरूप बदलावों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान आया, जिनमें एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग

0: सुंदर पिचाई और जेनसन हुआंग सहित कई अधिकारी शामिल थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत और इटली ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। इटली में कल आयोजित भारत इटली पर्यटन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक में ये सहमति बनी। बैठक में दोनों देशों ने पर्यटन संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान, कम चर्चित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने, फिल्म पर्यटन, पर्यटन स्थलों के बीच साझेदारी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण तथा कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाना शामिल है। इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार संपर्क और सहयोग को सुगम बनाना है। कजाकिस्तान के ओस्केमेन में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2026 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कल आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अंतर्गत अर्ध पारंपरिक वातावरण में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं की अंतर संचालनीयता को बढ़ावा और उनकी क्षमताओं को मजबूत कराना है। अभ्यास में अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों के अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त योजना, हवाई गतिशीलता, मानव रहित हवाई प्रणालियां और ड्रोन रोधी क्षमताएं शामिल हैं। सैनिक छापे, खोज और विनाश अभियान, घेराबंदी और तलाश अभियान तथा विशेष हेलीकॉप्टर आधारित अभियान भी चलाए जाएंगे। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को और गहरा करेगा। यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी कीने की जोड़ी ने भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने भी फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234 के मुकाबले 233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। भारत अब 8 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य सहित कुल 54 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कंपाउंड तीरंदाजी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीरंदाजों की उत्कृष्ट सटीकता, धैर्य और टीम भावना ने देश को गौरवान्वित किया है। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था, जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया। और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: Good morning. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the world news. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. UN Secretary General Antonio Guterres expresses deep appreciation for India's cooperation with United Nations. US President Donald Trump decides to rename artificial intelligence as super intelligence. Tech leaders sign morally binding agreement to help regulate AI. And Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. India also wins gold in compound archery mixed team event. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will participate in the G20 Trade Ministers meeting at Milwaukee in Wisconsin today and tomorrow. He is attending the meeting at the invitation of the US Trade Representative. More from our correspondent.
2: The meeting brings together trade ministers from G20 member countries to discuss issues related to global trade and the multilateral trading system. According to the Ministry of Commerce and Industry, India will engage constructively with all G20 members and work towards a rule-based, open, inclusive, transparent, equitable, and non-discriminatory multilateral trading system with the World Trade Organization at its core while seeking adequate policy space for developing countries. On the sidelines of the G20 meeting, Mr. Goyal will hold bilateral discussions with his counterparts. The talks will focus on expanding trade and economic opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, micro, small and medium enterprises and other businesses. Mr. Goyal will also hold bilateral discussions with his US counterpart as a part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
0: India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. On Monday, Mr. George affirmed India's unwavering commitment to combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the high-level meeting on the 25th anniversary of adoption of the Durban Declaration and Programme of Action at the UN General Assembly. Last week, Secretary George highlighted the need for stronger international cooperation to return cultural properties during a high-level side event at the UN General Assembly. UN Secretary General Antonio Guterres has expressed his appreciation for India's cooperation with the United Nations during a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar at UN headquarters in New York. According to Guterres spokesperson Stefan Dujarric, the two discussed multilateralism, India-UN cooperation and geopolitical developments, including the war in Ukraine and the situation in the Middle East. Dr. Jaishankar said the discussions focused on ongoing conflicts and the need to mitigate their impact, particularly on the Global South. The meeting took place on the sidelines of the high-level segment of the 81st session of the UN General Assembly, where global challenges such as armed conflicts, climate change, food security and reform of multilateral institutions were discussed. The opening ceremony of the India-Kazakhstan Joint Military Exercise Kazind 2026 was held in Oskemen, Kazakhstan, marking the start of the joint training phase. The Defence Ministry said the exercise, which was held yesterday, aims to enhance interoperability and strengthen the capabilities of both forces to conduct joint counter-terrorism operations in a sub-conventional environment under a United Nations mandate. The exercise will focus on operations in semi-urban and mountainous terrain, including joint planning, air mobility, unmanned aerial systems and counter-drone capabilities. Troops will also conduct raids, search and destroy missions, cordon and search operations and special heli-borne operations. The exercise will further deepen military-to-military cooperation between India and Kazakhstan and reinforce the shared commitment of both nations towards regional peace, stability and collective security. India's High Commissioner to Malawi, Amaramam Gujar, has received a delegation from the United Nations Development Programme, or UNDP, and the UN Capital Development Fund to discuss the eKYC and Digital Identity Project in Malawi, supported through the India-UN Development Partnership Fund. UNDP Malawi President Representative Fenella Frost and UNCDF Regional Head in Nairobi, Rufaro Sikeso, led the delegation. Earlier this month, another project supported by the same fund was inaugurated in Sierra Leone, a rehabilitated skills training center in Kenema. The High Commission of India there joined the government of Sierra Leone, UNDP and the UN country team for the inauguration on September 18th.

यहाँ कैसे होगा, गुनगुनाइए आप हमारे साथ दिल का मेल बॉक्स में। आपका मेल है हमारे पास फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी, बाबू शिवा, शिवानी, पावन गौड़ और योगेंद्र नायक कास गजम्बी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप हैं हमारे साथ इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आपको पता है कि हमारे पास एक मैसेज आया है और ये कहते हैं कि देखिए, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन, प्रांजल, समीक्षा, लल्ला, राजू, बेबी आराध्या कहते हैं कि देखिए, मैं बहुत दिनों से आपको एक गाना की चॉइस भेज रहा हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो बता दीजिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास है, हमारे पास सारे गाने हैं, लेकिन क्या होता है ना कि देखिए सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 बज चुके हैं और दिन अभी शुरू हुआ है, ऐसे में कोई ब्राइट गाना होना चाहिए, कोई ऐसा गाना जिसको आप दिन भर गुनगुना सकें, एक ऐसा गाना जो कि हम सबको इंस्पायर करे, है ना। अब आप ही बताइए, ये गाना भी है हमारे पास, किसी ने हमें लिख के भेजा है कि सारे बदन में जहर चढ़ गया। नहीं, अभी जो गाना है ये है आपकी चॉइस का, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका, और कहते हैं कि हमारा हर पल खुशियों से भरा रहे। और हम भी आपके लिए ये कहते हैं कि हर पल खुशियों से भरा रहे, अच्छे अच्छे गाने आप गुनगुनाते रहें।

और हम आ गए दिल का मेल बॉक्स लेकर के। टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल डोंगर दीवे। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक। फरमाइश करता ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंत सिंह जौड़ा। और ये जो गाना सुनना चाहते हैं वो हमारे पास है। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं हमारे पास सारे गाने हैं और आपका गाना लेकर के हम बस अब भी फटाफट हाजिर हो जाते हैं। तो दिल का ये मेल बॉक्स है जिसमें आप बताते हैं अपनी चॉइस और आपकी वो चॉइस लेकर के हाजिर हो जाते हैं हर बार की तरह हम। जैसे कि ये वाला गाना फिल्म आनंद से और गाया है मुकेश जी ने।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची

0: में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे, और आप हमें करते हैं मेल fmgoldeirdaily@gmail.com। लगे रहिए, करते रहिए, अपनी चॉइसेस भेजते रहिए।

अब हम तो आपको यही कहेंगे कि जरा नहीं, ज्यादा मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगेगा अपने आप को भी। और ये गाने की फरमाइश हमें भेजी है मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला गौरी, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुन हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम, बेगम शबनम अनवार, और गाना है ये वाला।

पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा, कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हगोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली पार्थ और पूरा परिवार मजनू कटीला, कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा, माही मलिक, गांव जाद खोद राजस्थान से शंभू दयाल, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, शाहजीनगर दिंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नावेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली खान, यादव मोहल्ला सनावत एमपी से दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र, रीना, नेशा, मीरा, हैप्पी। अब इतने सारे नामों के बाद मेरा मन कर रहा है मैं भी अपना नाम बता ही दूं। मैं हूं आपके साथ इंदु, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हैं, रिफाकत हैं, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर, ग्राम कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, वही जिनका नाम मैंने पहले बताया था, और लास्ट में ही इनके साथ बेबी आराध्या साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, और ये सब कहते हैं धन्यवाद जी। ये रहा आपका गाना धन्यवाद, तो फिर हम भी आपको कहना चाहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

कलर पत्रिका के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या आपने इस पत्रिका को पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, क्योंकि इतने सीमित संसाधनों और बिना किसी व्यापारिक सहयोग के 20 साल तक अपनी साहित्यिक गुणवत्ता को लगातार बनाए इन्होंने रखा हुआ है। नए लेखकों को मंच देते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष विचार रखते हैं और कलरव ने हमेशा से वैचारिक और समाज को दिशा देने वाले साहित्य को प्रमुखता दी है। पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कितने आराम से कलरव पत्रिका कर रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केन्द्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी पक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान छुपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। तलाशी अभियान जारी है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों और नशीले पदार्थों को रखने और आगे पहुंचाने का काम करते थे। सभी आरोपियों के संपर्क विदेशी तस्करों के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर दिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगस ने कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 56 पदकों के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को बधाई दी है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर साहिल राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. According to Ministry of Power, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 litres per 100 kilometre in 2027-28 to 3.32 litres per 100 kilometre in 2031-32, representing an improvement of around 16% over the period. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st April 2027 and remain applicable up to 31st March 2032. It will apply to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India and the United States are witnessing strong momentum in their economic ties. Addressing a business roundtable convened by the National Association of Manufacturers in the United States, the Commerce Minister highlighted India's expanding industrial base and skilled workforce. Mr. Goyal also invited American manufacturers to explore

11:10 हो चुके हैं, ये समय है तस्वीर का। तो फिर चलो चलते हैं बादलों के घर में, जो है झरनों का शहर, जहाँ पे नेचर ना अपना रास्ता खुद बनाती है। सोहरा की धुंध और सुकून का कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ, आज तस्वीर हम दिखाएंगे आपको सोहरा यानी कि चेरापुंजी की, जहाँ की धुंध, झरने, वादियाँ सब कुछ बयां करते हैं एक खूबसूरत कविता। पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है, ये बादलों का घर है।

ये सोहरा ही है जहाँ पे आपको लगेगा कि आसमान शायद आपके कदमों में आना चाहता है या फिर आप उसको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है, ये सब कुछ नज़ारा सोहरा का ना ऐसा लगता है कि जैसे आप बादलों के घर में आ गए हैं, जहाँ पे धूप छांव का खेल हर पल चलता रहता है, कभी उजाला है तो कभी अंधेरा है। आसमान से गिरती नौ काली कई की वो धारा, बड़ा अद्भुत नज़ारा लगता है। मव समाई की गुफाओं में सदियों का फसाना है, वे सांडों के पानी में जब हमारा दिल खो जाता है। पेड़ों की जड़ों से इंसानों ने पुल बनाए हैं, यहाँ प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत रंग सजाए हुए हैं। झमझम बरसती बूंदों का यहाँ पे बसेरा है। जी, ये मेघालय का

अरे मत पूछिए, पल पल दिल के पास तो हमारे सोहरा था। वो इसलिए कि जब हम स्कूल में थे तभी से ही ये क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जाता था कि बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, और वो जवाब चेरापुंजी है, यानी कि सोहरा। तो चेरापुंजी के ये जो सवाल जवाब थे ये मतलब स्कूल से लेकर के अभी तक

बिल्कुल वैसे के वैसे अभी भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले सोचा था कि भाई चेरापूंजी तो ज़रूर जाना है, और जब गए तब लगा कि भाई वाह कितना सुंदर है ये, और ये जो सवाल है सवाल से कहीं ज़्यादा चेरापूंजी यानी कि सोहरा है। वहाँ पे आप वाटरफॉल्स देख सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है यहाँ पे, जो लगभग 1115 फीट की ऊंचाई से एक नीले हरे तालाब में गिरता है, वेई सांडोंग नाम है उसका। और उसके अलावा आप यहाँ पे सेवन सिस्टर्स फॉल्स है वो देख सकते हैं, चुने की चट्टानों से सात अलग अलग धाराओं में बहने वाला बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है। केव्स हैं वहाँ पे, मव समाई केव्स हैं, और पूरी तरह से लाइटिंग वाली चुने की प्राकृतिक गुफा है जिसे बच्चे और बड़े बड़े आसानी से पार कर लेते हैं, अरवाह केव नाम है उसका। और अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर और गुफाओं में करोड़ों साल पुराना फॉसिल्स देखना है तो फिर आप जरूर जाइएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो यात्रा होती है ना, मतलब कितना अच्छा वो सुखद एहसास होता है कि हम बस चले जा रहे हैं बादलों के बीच से छोटी मोटी पहाड़ियों को चीरते हुए, और रास्ते में जो चीज़ें हमें दिखती है ना, ऐसा लगता है कि इन्हें तो हम पकड़ लेंगे क्योंकि ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी होती है, लेकिन असल में होता नहीं है ऐसा। तो चलिए, तस्वीर है ये चेरापूंजी यानी कि सोहरा की, सोहरा की सैर करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

और जब सोहरा की हवाएं आपके ऊपर लगेंगी ना, तो हवाएं आपका पता नहीं पूछेंगी, आप पूछेंगे कि हम कहाँ हैं। सोहरा आप कैसे जाएं? सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट और सबसे मतलब जो सबसे पास वाला एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी का है। वहाँ से आप टैक्सी करके लगभग 5 घंटे में सोहरा पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क द्वारा जाना चाहते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ से जाइए, फिर वहाँ से आपको बड़े आराम से गाड़ियाँ मिल जाएंगी, प्राइवेट टैक्सी भी आप बुक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मौसम का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोहरा में मौसम कभी भी बदल जाता है। कभी बारिश शुरू हो जाती है तो कभी आपको लगेगा कि धूप हो गई, तो अपने साथ छाता जरूर रखिएगा, रेनकोट भी रखिएगा। अब वैसे भी छाता रखेंगे तो धूप में भी काम आएगा, बारिश में भी काम आएगा। कपड़े आप थोड़ा सा इसको भी थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि हल्की शाम को ठंड होती है, इसलिए हल्की जैकेट भी रखिए अपने साथ। और एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कई जगह नेटवर्क की दिक्कत की वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, तो थोड़ा सा कैश भी रख लीजिएगा। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी तैयारी वहाँ पे जाने की, लेकिन जाइएगा ज़रूर। ये तस्वीर है सोहरा की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। एक ऐसी जगह है जो बहुत ही अलग है, मतलब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का नज़ारा है। ऐसी हवा जो आप महसूस करेंगे कि शायद इसको अपने साथ अगर ले जा सकते तो लेकर जरूर जाते।

आगे यही होगा कि आप सोहरा को प्रॉमिस करके आएंगे कि देखिए हम अभी तो आए हैं और दोबारा फिर से आएंगे। ये है तस्वीर सोहरा की। सोहरा भारतीय राज्य मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा शहर है, जहाँ पे बारिश का रिकॉर्ड है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे नम जगहों में इसको गिना जाता है। तो बारिश के मौसम में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं, क्योंकि चेरापूंजी उसके लिए भी आपका स्वागत करता है। वैसे पता है, ये जो सारी की सारी जगह होती है ना, मुझे यहाँ पे जब चांद देखती हूँ इनमें रातों को, ओहो वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। जाग के आप देखिए चांद, तारे और उनकी स्थिति, उनकी जगह बड़ी साफ साफ नज़र आएगी। इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर मौसम बहुत अच्छा है तो आपको ये सारी की सारी जो हम गाना आपको सुना रहे हैं ना, आपको लगेगा कि शायद आप सोहरा में बैठ के ये पूरा का पूरा नज़ारा देख रहे हैं। आई स्वेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: जाइए तो आप अपने आप से पूछिए कि आखिर आपने बार बार इस जगह पे आने का जो वक्त है वो क्यों नहीं निकाला। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। घूमिए, दूर दूर चले जाइए, देखिए तो सही कि क्या क्या खजाना छुपा हुआ है, क्या क्या चीज है जिसको अभी तक हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, और जब देखेंगे ना तो फिर हैरान हो जाएंगे।
1: कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

सहरा में ठंडी हवाएं आपका स्वागत करेंगी, और अगर आप अकेले हैं या फिर किसी के साथ हैं तो भी आपको बहुत कुछ याद आएगा। बस यूं ही चलते चले जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर हम चल दिए। शिलांग से सोहरा जब आप आएंगे ना, तो रास्ते में आपको एक बहुत ही सुंदर सी घाटी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं, जिनको शौक है वो बिल्कुल इसको करें। इको पार्क है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे हैं यहाँ पे, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके पास और कुछ दिन हैं तो फिर नोंगरियट गांव जा करके वहाँ पे वो डबल डेकर लिविंग रूट जो ब्रिज ट्रैक है ना, उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक बात है कि यहाँ का जो फूड है उसको ट्राई कर सकते हैं आप। पारंपरिक खासी जनजातीय भोजन का स्वाद आपको मिलेगा, बहुत ही सादा होता है, कम मसालों वाला होता है लेकिन टेस्टी होता है। और आपको बहुत अच्छा चावल यहाँ पे मिल जाएगा, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं इनको ट्राई करना चाहिए, कम से कम एक बार तो ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें से जो चीज़ अच्छी लगे बस उसकी रेसिपी अपने साथ लेके आइए, क्योंकि हम कई बार यादें तो लेके आते हैं और बातें करते हैं नज़ारों की, पर कई बार कुछ ऐसी डिशेस भी हमें इंट्रोड्यूस होती हैं नई जगहों पे, जिसको हम ताउम्र अपने साथ रखते हैं। फिलहाल तो तस्वीर देखिए ये सोहरा की, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सोहरा गए हैं? नहीं गए तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कन्विंस करने की, जाइए वो दूर का कोना देख के आइए, और अगर आप अकेले हैं तो भी घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।

अब पहाड़ी रास्ते में जब आप सैर करेंगे तो थोड़ा तो संभल के चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप जादू टेस्ट कर सकते हैं। एक तरह का बिरयानी या पुलाव होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है, देखिए कैसा है। जा स्टेम, ये भी हल्के मसालों के साथ एक वेजिटेरियन चावल बनाया जाता है। उसके बाद तुंग टप, आप यहाँ पे देखिए मेघालय की ठंडी और धुंधली शामों में जो यहाँ का लोकल स्नैक्स है ना, वो बहुत ही पसंद किया

जाता है उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और एक ना मीठी सी एक बड़ी प्यारी सी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पोकलेन। ये चावल के आटे और गुड़ से बना एक मीठा तला हुआ, समझ लीजिए जैसे कि पुआ होता है ना वैसा। और इसको लाल चाय के साथ खाया जाता है। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। और सोहरा में जब बारी आती है कि भाई क्या ख़रीदें, बांस और केन के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो आप ख़रीद सकते हैं, दालचीनी और मसाले ले सकते हैं, और वहाँ का जो शहद है वो बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।

जब आप सोहरा जाएंगे शॉपिंग करेंगे ना, तो ज्यादा बार्गेनिंग मत कीजिएगा, उसकी संभावना थोड़ी कम ही रहती है। और वहां पे जाइए तो फिर गुनगुनाइएगा कि पहाड़ों की ऊंचाई पे हरियाली का डेरा है, ये बादलों का घर। जी हाँ, यही वो सोहरा है जो आपने तस्वीर में हमने आपको दिखाया था और आपने सुना था। आसमां से गिरती नोह काली कई की धारा, बहुत अच्छा लगेगा सारा का सारा वो नज़ारा। झमझम बरसती बूंदों का यहाँ पे बसेरा है, ये मेघालय का दिल है, ये खूबसूरत सोहरा है। तो फिर रिमझिम फुहारें जब आपके ऊपर गिरेंगी, चाय की चुस्की, जादू का स्वाद निराला मिलेगा, तो फिर हर मुसाफिर यही कहेगा, वाह क्या जगह।

0: वीर गाम गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावसार ने तो लगता है मन बना लिया सोहरा जाने के लिए। फिलहाल तो मैं चली घूमने, फिर से मिलूंगी। तब तक 12 बजने वाले हैं, समय है ये समाचारों का, सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कम्पाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचौंग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का

0: आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार।

मंगेशकर और किशोर कुमार की और फिल्म थी दीदारे यार। और आज है 30 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बाइबिल के अनुवादक संत जेरोम की याद में मनाए जाने वाले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2017 में, ताकि दुनिया को भाषा के आधार पर जोड़ा जा सके। और इस साल की इसकी थीम है भाषाई विविधता और भाषा का अधिकार, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स। और इसका उपशीर्षक है समझे जाने की शक्ति, यानी द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। अनुवाद सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म है जो मूल लेखक की भावना संस्कृति को बिना बदले दूसरी भाषा के पाठकों तक उस कृति को पहुंचाता है। और हमारे देश में तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस वाले बानी वाले देश में अनुवाद ही वो अदृश्य धागा है जो संस्कृत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही इसकी विविध संस्कृतियों को आपस में पिरोता है, जोड़ता है। और अनुवाद वो माध्यम भी है जिसने कितनी भारतीय पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। 1785 में जब चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया, तो इमर्सन और थोरो जैसे महान अमरीकी दार्शनिक इसके मुरीद हुए बिना नहीं रह सके। इसी तरह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित पंचतंत्र दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं और 200 से अधिक लिपियों में अनुदित होने वाला बाइबिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक अनुदित ग्रंथ है। और प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान अंग्रेजी अनुवाद के बाद ही नुस्खों के संग्रह में शामिल किया गया था, और उसके बाद ही उन्हें वैश्विक मंचों पर भारत का गोर्की या भारत का थॉमस हार्डी कहा जाने लगा। इसी तरह 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुदित संस्करण पर ही नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि गीतांजलि की मूल भाषा थी बांग्ला। अनुवाद के माध्यम से ही आज हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य सात समंदर पार को ग्लोबल बुक सेल्फ की शोभा बढ़ा रहा है। यानी अनुवादक ऐसे मूक शिल्पकार हैं जो बिना किसी शोर के दो अलग अलग देशों के लोगों को करीब लाते हैं। तो आज उन सभी अनुवादकों का आभार जो कि भाषाई सरहदें तोड़कर हमें एक सूत्र में पिरोते हैं।

जी हाँ, अगर भाषा नहीं आती है तो कोई भी हमसे कह सकता है यू आर बुद्धू और यू आर हैंडसम, जान लो। खैर, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए, और लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास हम सब ने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तारीखें, राजा महाराजाओं के नाम रटने में कितनी मुश्किल होती थी। तब कभी कभी हम सोचते थे कि काश कोई टाइम मशीन होती जो पलक झपकते ही किसी भी साल में हम चले जाते और देखते कि उस वक्त हमारे भारत में क्या चल रहा था या किस जगह किसका राज्य था। ये मुमकिन हो चुका है। इसे इतिहास को हकीकत बना दिया है टाइम मशीन की तरह मुंबई के रहने वाले पूर्व इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल कृष्णा शेषाद्री जी ने, जिन्होंने भारत राज्य डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट बनाई है जो भारतीय इतिहास को अनोखे और डिजिटल तरीके से दर्शाती है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। ये वेबसाइट भारतीय उपमहाद्वीप के 800 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को मैप करती है। इस पर जाकर आप किसी भी विशेष इस वर्ष का चयन करके ये देख सकते हैं कि उस समय भारत के किस भूभाग पर किस राजवंश का राजा राज करता था या उसका शासन था। चोल, पल्लव, कोटा राजवंश या असम का अहोम साम्राज्य को हम सभी ने पढ़ा ही है। उन्हें उनके राज्य को इस वेबसाइट पर जाकर विजुअल और कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से देखा जा सकता है। यानी इतिहास अब किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। साथ ही यहां आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए इसमें एक खास टैब दिया गया है।

कि इतिहास प्रेमी या विशेषज्ञों की राय से ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार करके इसे सटीक बनाया जा सके। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से का इतिहास थोड़ा अलग था, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सुझाव दे सकते हैं। ये वेबसाइट अपनी समृद्ध विरासत को जानने समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अपने स्मार्टफोन को खोलिए और bharatrajya.com पर चले जाइए और भारत के गौरवशाली इतिहास की सैर करिए।

ये 14 अंकों का आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये स्वास्थ्य की एक तरह से तिजोरी है। जी हां, आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की लिखी दवाइयां, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब कुछ इस एक डिजिटल कार्ड में महफूज रहेगा। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, बस ये नंबर दीजिए और डॉक्टर आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा। ना फाइल खोलने का डर और ना ही पेपर संभालने की टेंशन। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपको डेटा पूरी तरह से आपका जो है डेटा वो सुरक्षित रहता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फोन पर कंप्यूटर में जाकर abdm.gov.in वेबसाइट खोलिए, वहां क्रिएट आधार नंबर पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए और एक यूजर नेम बनाइए। बस आपका चमचमाता हुआ डिजिटल हेल्थ कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, तो फिर इसे वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात की, अपना और अपने परिवार का आभा कार्ड बनाइए और सेहत के मामले में हो जाइए एकदम टेंशन फ्री।

फिल्म लव स्टोरी से ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और दोस्तों याद है बचपन का वो आंगन जहाँ सुबह की शुरुआत घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नन्ही गौरैया की चहचहाट से होती थी। लेकिन आज हमारे आसमान से हमारे आंगन में वो छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया कहीं गुम हो गई है। कारण कई हैं, बढ़ती आबादी, आधुनिकता, खेतों में कीटनाशकों का जहर और कटते पेड़ जिसने इन बेजवानों का आशियाना छीन लिया है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण की तरह हमारे सामने आती हैं पंजाब के मोगा जिले के निधानवाला गांव से हरप्रीत कौर, जिन्होंने न केवल अपने घर को गौरैया और छोटे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाया बल्कि पूरे गाँव में कई जगह पर पक्षियों के लिए लकड़ी और मिट्टी के रैन बसेरे भी बनवाए। उन्होंने गाँव के अन्य लोगों को भी प्रकृति और जीवों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब हरप्रीत एक गंभीर बीमारी के बाद बिस्तर पर थीं। तब दीवार पर तिनका जोड़ती एक चिड़िया ने उन्हें जिंदगी जीने का नजरिया दिया और तब छोटे से गत्ते के डिब्बे से चिड़ियों के आशियाने की उन्होंने शुरुआत की। और आज हरप्रीत के घर में 175 से ज्यादा मिट्टी और लकड़ी के कृत्रिम घोंसले लगे हैं जहां रोज 250 से ज्यादा गौरैया चहकती हैं, जिनके लिए वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर साफ और ठंडा पानी रखती हैं और गर्मियों में कंगनी या बासमती चावल और सर्दियों में गेहूं या बाजरा खाने को लिए देती हैं। हरप्रीत कौर इन चिड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और प्यार से उन्हें राजकुमारियां कहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन परिंदों ने उनके जीवन में बेटी न होने का खालीपन भर दिया है। हरप्रीत कौर का इन परिंदों से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये चिड़ियां बिना किसी डर के उनकी हथेली पर आकर दाना

चुगती हैं। इन नन्हे जीवों की सुरक्षा के लिए हरप्रीत कौर हर संभव प्रयास भी करती रहती हैं। गांव के लोगों को उन्होंने पराली के धुएं और कीटनाशकों की रोकथाम के लिए जागरूक किया है। तो हरप्रीत कौर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं, बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। और शुरुआत हमारे अपने घर की खिड़की या बालकनी में एक सकोरे में पानी और मुट्ठी भर दाने से भी हो सकती है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सरगम और आवाजें थी रफ़ी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहिनी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान या फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर, जिन्हें हम फेंक

देते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं। राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू। उन बेकार कतरनों को रिसाइकिल करके ये महिलाएं ऐसे खूबसूरत और ब्रांडेड शर्ट, बैग और डिजाइन

सिन्हा, किशोर और लता मंगेशकर को। और अब बात 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। ये राष्ट्रव्यापी सफाई आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम जनता को सफाई से जोड़ने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत, यानी स्वच्छता केवल सरकारी काम नहीं बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने और इसे एक पारदर्शी जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा पोर्टल जारी किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है, इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर इसे जुड़े ऐप के माध्यम से कचरे वाले संवेदनशील स्थानों की रिपोर्ट की जा सकती है ताकि उन जगहों को पहचान कर उन्हें तुरंत साफ किया जा सके। एक बात और, इस पोर्टल पर योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। सड़क, मैदान, पार्क, पहाड़, समुन्दर सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं और इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।

अभी आप फिल्म रॉकी में सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और अब बात कर ली जाए कुछ सेहत की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आयुर्वेद में अचूक औषधि माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिमीकंद की, जिसे कई जगहों पर सूरन या ओल भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जिमीकंद में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन B6, जो मस्तिष्क के विकास, मूड को ठीक करने और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसी तरह से इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की खून की कमी को रोकने में जो सहायक होता है। आंखों की रोशनी और त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन और जो है इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जिमीकंद में बहुत से खनिज और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर, हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। और साथ ही इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संचार को बेहतर

बनाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको बनाने से पहले एक बात ध्यान रखनी होती है कि जिमीकंद काटते समय हाथों और गले में बहुत खुजली होती है, तो जब भी इसे काटें तो ग्लव्स पहनकर काटें और इसके जब गले में ये प्रॉब्लम ना करे इसलिए इसको बनाने से पहले इसमें हमेशा नींबू, इमली या आमचूर के रस के साथ ही इसे उबालें और पकाएं। और तो जब इतने सारे फायदे हैं इस फल के तो क्यों ना इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए।

अच्छा, तो हम भी चलते हैं, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और आप ये गीत जो सुन रहे हैं ये है ऑन आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। तो मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है।

0: ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11:04 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। भारतीय फिल्म सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर जिनकी फिल्में जब भी देखो उतने ही चाव और आनंद के साथ देखी जाती है जितनी कि उनकी रिलीज के वक्त देखी गई होंगी। शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज स्टाइल से वाकिफ ना हो। अपनी फिल्म्स में उन्होंने छोटे छोटे विषयों को भी बड़ी संजीदगी के साथ

जब भी देखो उतने ही चाव और आनंद के साथ देखी जाती है जितने की उनकी रिलीज के वक्त देखी गई होंगी। शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज स्टाइल से वाकिफ ना हो। अपनी फिल्म्स में उन्होंने छोटे छोटे विषयों को भी बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया। यही नहीं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट पक्ष भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाता रहा। यही वजह है सत्यकाम आनंद

पेश किया। यही नहीं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट पक्ष भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाता रहा। यही वजह है सत्यकाम, आनंद, आशीर्वाद, चुपके चुपके जैसी मूवीज आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है। गौर करें तो ज्यादातर फिल्म उनकी पारिवारिक सामाजिक रहीं। उनके कलाकार भी उतनी ही शिद्दत से पात्रों में डूब जाया करते थे जितनी लगन और मेहनत से वो फिल्म मेकिंग किया करते थे। तो आज के सफर पर, कलाकार बेमिसाल के सफर पर, निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सिने करियर की बातें सुनते रहें आकाशवाणी गोल 100.1। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र हो रहा है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें ऋषि दा के नाम से ज्यादा पुकारा करते थे। जन्म इनका हुआ 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में। फिल्मों में आने से पहले ऋषि दा गणित और साइंस के शिक्षक रह चुके हैं। शतरंज खेलने का भी इन्हें काफी शौक रहा। फिल्मों में आने का शौक इन्हें हुआ कोलकाता के न्यू थिएटर से। फिल्मों में उनके करियर को सही दिशा देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का काफी सहयोग और साथ रहा।

जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मी करियर पर बात करें तो इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1951 की फिल्म दो बीघा जमीन से। इस फिल्म में वो एक सहायक के रूप में जुड़े थे। जाने माने दिग्गज फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की और लगभग 6 साल तक एक सहायक के तौर पर काम करते रहे और निखरते रहे। स्वतंत्र रूप से 1957 की फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एज अ डायरेक्टर फिल्म का निर्देशन किया। मुसाफिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई, पर शोमैन राज कपूर उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 की फिल्म रही, इसके निर्देशन की बागडोर उन्होंने ऋषि दा को ही सौंप डाली। अनाड़ी फिल्म आपने जरूर देखी होगी। फिल्म दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है। गीत संगीत भी फिल्म का लाजवाब है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले जब इस फिल्म की बात हो रही है तो 1959 की अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा दिया जाए। लता जी की आवाज और मुकेश साहब की आवाज़।

1959 की फिल्म अनाड़ी की समीक्षकों ने भी काफी प्रशंसा की। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद जैसी जो फिल्म्स का उन्होंने निर्देशन किया और लगभग चार दशक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। और हमेशा स्टोरी चाहे गंभीर हो या हल्की फुल्की, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया ऋषिदा का, आज उन्होंने ऋषिदा ने। और ऋषिदा का जो फिल्म डायरेक्शन का एक अलग-अलग ही तरीका रहा और अपने दौर के जो दूसरे जाने माने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ उनका कोई भी कमर्शियल कंपटीशन कभी रहा ही नहीं। उनका एक अपना अलग स्टाइल, एक अलग अंदाज और एक अलग धारा में बहे ऋषिकेश मुखर्जी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर आज हम बात कर रहे हैं जाने माने फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। फिल्म्स के अलावा उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों के लिए भी काम किया। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छाओ, रिश्ते, उजाले, इन धारावाहिकों के लिए भी उनका काम काफी सराहनीय रहा। इसके अलावा उनके गीत फिल्मांकन का जो तरीका था ना, बेजोड़ रहा। एक बार उन्होंने खुद ही कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय

करता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे। तो भाई किस तरह का बैलेंस बनाते थे ऋषिदा, ये तो हम उनकी फिल्में देखकर जान ही जाते हैं कि सचमुच मजा आ जाता है जब जब उनकी निर्मित फिल्में हम देखते हैं।

ऐसे बेजोड़ उत्कृष्ट फिल्म निर्देशक निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया उनकी फिल्म्स और उनके कामों को लेकर। 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1972 में उनकी फिल्म आनंद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म 1956 की नौकरी और 1959 की मधुमती, साथ ही 1972 की आनंद के लिए बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से नवाजा गया। सन 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ऋषिदा को नवाजा गया और सन 2001 में ऋषिकेश मुखर्जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

निर्देशक बिमल रॉय से जुड़ने से पहले 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन शुरुआत की थी। यही उनकी मुलाकात जाने माने संपादक सुबोध मित्र से हुई। उनके साथ रहकर ऋषिदा ने फिल्म संपादन का काम सीखा। ऋषिदा ने बाद में बिमल रॉय से जुड़कर उनकी फिल्म दो बीघा जमीन और देवदास का संपादन भी किया। अपने करियर की शुरुआत में ही दिग्गज कलाकारों को अपने निर्देशन में काम कराने का उन्हें मौका मिला। मुसाफिर फिल्म जिसका उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया था, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन जैसे कलाकार रहे इस फिल्म में। इसके बाद अनाड़ी में भी उन्होंने राज कपूर जैसे महान अभिनेता को अपने निर्देशन में काम करवाया। अनाड़ी फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म ने ऋषिदा को भी फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया।

बड़े बड़े कलाकारों ने ऋषिदा के निर्देशन में काम किया। उनके निर्देशन में कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय सामने आया। बेजोड़ अभिनेत्री जया भादुड़ी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स का काफी योगदान रहा। जया भादुड़ी को पहला ब्रेक उन्हीं की फिल्म गुड्डी, जो कि 1971 की फिल्म रही, इससे मिला। इस फिल्म में अपने किरदार को जया जी ने इतने चुलबुले अंदाज में निभाया कि दर्शक आज तक इस भूमिका को नहीं भूल पाए हैं। बाद में जया जी ने उनके निर्देशन में बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, मिली जैसी कई फिल्म्स में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी उन गिने चुने चंद फिल्मकारों में शामिल रहे जो फिल्मों की संख्या से अधिक गुणवत्ता पर यकीन किया करते थे। फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने कई फिल्म्स का संपादन भी किया, कई फिल्म्स की कहानी और स्क्रीन प्ले भी लिखा। ऐसे महानतम फिल्म मेकर्स हमेशा यूं ही याद किए जाते रहेंगे।

इसी के साथ अंजलि आपसे लेगी अनुमति, लेकिन 2:30 पर फिर आपकी और मेरी एक मुलाकात होगी। बने रहें आकाशवाणी गोल्ड के साथ 100.1। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सिन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, 200 से ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। भारत ने अब तक सोने के 10 तमगों समेत 59 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी CAFE जाब्ते नोटिफाई किए हैं। ये मौजूदा CAFE जाब्तों की जगह लेंगे और इनका इतलाक 1 अप्रैल 2027 से होगा और ये 31 मार्च 2032 तक नाफिज रहेंगे। भारत में फरोख्त के लिए तैयार या दरामद नई मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर ये लागू होंगे। नए तरीक़ेकार के तहत ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज्यादा इंजिबाती शफाफियत और एक मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम होगा। तवानाई की वजारत के मुताबिक नए CAFE तरीक़ेकार से सभी 5 वर्षों में साल ब साल की बुनियाद पर फ्यूल इकोनॉमी में

बेहतरी आएगी। ईंधन की खपत में तकरीबन 16% से ज्यादा की बेहतरी का हदफ रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वो भारत के साथ तजारती और सरमायाकारी साझेदारी के इम्कानात सरगर्मी के साथ तलाश करें और दोतरफा बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। दोहा में कतर के कारोबारी अफराद की अंजुमन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत इक्तिसादी तरक्की, बढ़ती हुई सरमायाकारी और माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 94 अरब 50 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह से ज्यादा की आमद को उजागर किया। उन्होंने ये भी कहा कि दर्जाबंदी से मुतालिक जापान की एजेंसी ने हाल ही में भारत की तवील मुद्दती दर्जाबंदी को अपग्रेड किया है। इससे कबल मोहतरमा सीतारमन ने कतर के गैर मुल्की तिजारत के वजीर ममलिकत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद सईद से मुलाकात की। दोनों वजीरों ने बुनियादी ढांचे, खुराक की यकीनी फराहमी, दवासाजी, पेट्रोकेमिकल्स, तालीम, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप इदारों के शोबों में सरमायाकारी के मौकों पर तबादला ख्याल किया। मोहतरमा सीतारमन ने कतर और खलीज के दीगर मुल्कों के साथ मामूल की तिजारत बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते, बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद और रफ्त और तिजारती लेन देन शामिल हैं। तरफैन ने कतर के 10 अरब डॉलर के सरमायाकारी के वादे, भारत में सरमायाकारी अथॉरिटी से मुतालिक कतर के दफ्तर के कयाम और दोतरफा सरमायाकारी मुआहदे और आज़ाद तिजारत के समझौते से मुतालिक मुज़ाकरात में तेजी लाए जाने के मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के इक्तिसादी ताल्लुकात में तेज रफ्तार देखने में आ रही है। अमरीका में मैन्युफैक्चरर्स की कौमी अंजुमन के जेर एहतमाम कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने भारत की फरोख पाती हुई सनअती बुनियाद और हुनरमंद अफरादी कुव्वत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स को भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ साझेदारी करने और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग में मिलकर सरमाया लगाने की खातिर मौके तलाश करने के लिए भी मदऊ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह के इश्तराक से मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने और भारतीय और अमरीकी दोनों मईशतों को तकवियत पहुंचाने में मदद मिलेगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज और कल विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत के मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर की दावत पर यह मीटिंग हो रही है। अमरीका के अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल भारत अमरीका बाहमी तिजारती मुआहदे पर बातचीत में पेशरफ के सिलसिले में अपने अमरीकी हम मनसब के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। कॉमर्स की वजारत ने कहा है कि इस साल 7 फरवरी को जारी मुश्तरका बयान से हम आहंग एक अबूरी मुआहदे को कतई शक्ल देने पर बातचीत में तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर मौसूफ G20 मीटिंग के मौके पर अपने हम मनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें भी करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और

0: कॉमर्स की वजारत ने कहा है कि इस साल 7 फरवरी को जारी मुश्तरका बयान से हम आहंग एक अबूरी माहदे को कतई शक्ल देने पर बातचीत में तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर मौसूफ G20 मीटिंग के मौके पर अपने हम मनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें भी करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शफाफ और दुरुस्त वोटर फहरिस्त जमहूरियत की रूह है। आज नई दिल्ली में नामानिगानों से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अगर वोटर फहरिस्त में गैर दुरुस्त या नाअहल नाम शामिल होते हैं तो इंतखाबी अमल की दयानतदारी असरअंदाज हो सकती है। जनाब चौहान ने इंतखाबी बेजाबतगियों से मुतालिक अपोजिशन के इल्जाम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनके नामों को हटाने और इस बात को यकीनी बनाने कि वोटर फहरिस्त में सिर्फ अहल शहरी ही शामिल हों, इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
1: शुद्ध वोटर लिस्ट

0: लोकतंत्र की आत्मा है और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया जीवित नहीं बचा उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात के अपने प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के सुंदरबांस में ख़वातीन के हाथों बनाए गए एक
2: कारखाने की महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है।
3: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शिवा अटल सेतु का तस्करा कर रहे हैं।
4: अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु समंदर के ऊपर तामीर किया गया सबसे तवील पुल है। वजीर आजम ने जनवरी 2024 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी ने दिसंबर 2016 में इसका संगे बुनियाद रखा था। अटल सेतु 17,840 करोड़ से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया था और ये तकरीबन 21.8 किलोमीटर तवील है और इसमें 6 लेन है। पुल का तकरीबन 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर के ऊपर है जबकि लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: नेपाल की गंडक तास के इलाके और बिहार में मुसलसल बारिश के सबब दरियाए गंडक में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जिससे शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया के किनारे टूट गए हैं और 200 से ज्यादा गांव मुतासिर हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में कुशल दलाल साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम भारतीय टीम ने मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को 237 के मुकाबले 238 पॉइंट से हराया। इस तरह भारत तमगे जीतने की फहरिस्त में 7वें मकाम पर आ गया है। भारत ने अब तक मजमू तौर पर 59 तमगे जीते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सन में G20 के तजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against the West Indies at Guwahati. Government has notified the new Corporate Average Fuel Economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027 and remain applicable up to the 31st of March 2032. It will apply to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. The new framework provides greater regulatory clarity and a stable policy framework for the automobile industry. It also facilitates technological innovation and support the continued evolution of India's passenger vehicle sector towards greater energy efficiency.

0: norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर

0: इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, में होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, कहीं डुप्लीकेशन है गाँव में।

0: भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिन्द्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
2: अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
3: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
2: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
4: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
2: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदक

के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों

संगीत.com और फिल्मों से जुड़े गीतों से जुड़े कुछ किस्से आप तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह एक किस्सा आपके साथ साझा हो रहा है, फिल्म महबूबा 1976 की फिल्म है और इसका गीत है मेरे नैना सावन भादो। राग शिवरंजनी पर आधारित रहा ये गीत और इस गीत को गाने से झिझक रहे थे किशोर कुमार साहब। उन्होंने मोहम्मद रफी का नाम सुझाया पर राजेश खन्ना जिद पर अड़े रहे कि भाई ये गाना तो किशोर दा ही गाएंगे उनके लिए। किशोर दा जैसे तैसे मान तो गए लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि पहले वो लता जी का गाया हुआ वर्जन सुनेंगे और उन्होंने लता जी का गाया हुआ वो गीत सुना, एक महीने तक उसकी प्रैक्टिस की और फिर क्या, रेस्ट इज हिस्ट्री। किशोर कुमार का गाया ये गीत उनकी गायकी की पहचान बन गया। तो चलिए फिल्म महबूबा से ये गीत सुन लेते हैं, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो। आर डी बर्मन का संगीत है इस गीत में और आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज सदाबहार किशोरदा की।

0: कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी गोल 100.1 और इस वक्त संगीत.com का ये सफर हम यहाँ पर तय कर रहे हैं और संगीत.com फिल्में, गीत, संगीत और उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। महबूबा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने अभी सुना और इसी तरह 1970 की फिल्म खामोशी का जो गीत है ना, ये शाम कुछ अजीब थी, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। ये जो गाना था ना, ये हेमंत कुमार साहब को गाना था, लेकिन हुआ क्या, राजेश खन्ना चाहते थे कि हेमंत कुमार की बजाय ये गीत किशोर दास से गवाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि किशोर कुमार इस गीत को गाएं। और उस गाने में जो

उदासी थी जब उन्होंने उस गीत के बोल पढ़े, तो जो उन्हें समझ आया राजेश खन्ना साहब को, तो उस गीत में जो उदासी और दर्द था वो किशोर कुमार ही दर्शा सकते थे, ऐसा वो मानते थे। किशोर कुमार ने ये हेमंत कुमार से जब इस बात के लिए उन्हें बताया गया तो उन्होंने कोई बुरा नहीं माना और वो खुद किशोर कुमार से मिले और कुछ समय बाद किशोर कुमार की आवाज में ये गीत रिकॉर्ड हुआ, गाना हिट हुआ और ऐसा पॉपुलर हुआ कि भाई राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी हमेशा के लिए इतिहास बन गई। तो चलिए सुन लेते हैं फिल्म खामोशी से ये गीत, 1970 की फिल्म है। संगीत की धुनों से इस गीत को सजाया हेमंत कुमार ने, गुलजार के बोल हैं और किशोरदा की मधुर।

1987 की फिल्म वारिस। वारिस फिल्म के लिए गीत रिकॉर्ड करने बॉम्बे लैब पहुंचे किशोरदा। स्टूडियो में करीब 100 ऑर्केस्ट्रा और 40-50 कोरस गायक मौजूद थे। किशोर कुमार अपनी आवाज को लेकर इतने सजग रहे कि गाने के शुरुआती हिस्से को सही करने में करीब 2 घंटे लग गए। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि जब उनकी दमदार आवाज के सामने पूरा ऑर्केस्ट्रा और कोरस दब गया। संगीत निर्देशक उत्तम जगदीश जी ने बताया कि म्यूजिक ट्रैक पहले से ही फुल था और किशोर दा को अपनी आवाज थोड़ी लो करके, थोड़ी हल्की करके, थोड़ी धीमी करके ये गाना रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ऐसी दमदार आवाज के मालिक रहे, ऐसी जैसे बोलते हैं वर्सटाइल आवाज, ऐसी वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे किशोर दा। तो इन्हीं की आवाज में वारिस फिल्म का ये गीत 1987 की ये फिल्म है। गीत के बोल वर्मा मलिक के हैं और म्यूजिक कंपोज किया इस गीत के लिए उत्तम जगदीश ने।

0: संगीत.com का ये सफर फिलहाल हम यहाँ पर तय करें। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 गीत संगीत और फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें पहुंच रही हैं आप तक। 1970 की फिल्म आन मिलो सजना फिल्म का ड्यूट जो लता जी और किशोर कुमार को गाना था, पर आनंद बख्शी साहब इस गीत का मुखड़ा ही नहीं लिख पा रहे थे। 10 दिन हो गए थे। एक दिन निर्माता जे ओम प्रकाश आनंद बख्शी से मिलने गए और चलते वक्त उन्होंने सहज ही कहा कि भाई अच्छा हम चलते हैं। आनंद बख्शी ने भी कहा फिर कब मिलोगे? जवाब मिला जब तुम कहोगे। और जनाब सहजता से कही गई इन्हीं पंक्तियों से जन्म लिया इस सदाबहार गीत ने, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे। सुन लेते हैं इसी गीत को, आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत है, लता जी और किशोरदा की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 50,547.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य बाजार भाव में गिरावट से किसानों को बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,992.57 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दोहा में कतर व्यापारिक संघ की गोलमेज बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। पंजाब के जालंधर में मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में कोई कदम नहीं उठाया है।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने अपने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्य का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
2: सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ, हिरण और कई तरह के पक्षियों समेत अन्य वन्य जीवों का घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में सुंदरबन के झारखाली इलाके में महिलाओं द्वारा किए जा रहे मैंग्रोव पौधारोपण का उल्लेख किया।
3: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झारखाली की महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है।
2: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस समय मंत्रिमंडल के फैसलों के

0: बारे में जानकारी दे रहे हैं वित्त मंत्री पीयूष गोयल।
1: देना 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म देश के लिए जो उपयोगी कार्यक्रम है वो हाथ में लिया गया है, पीएम धारा। ये रिन्यूएबल एनर्जी को इवैक्यूएट करने के लिए जो ग्रिड चाहिए, स्मार्ट ग्रिड जो चाहिए, उसका प्रोग्राम है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय संबोधित कर रहे थे प्रेस वार्ता को। क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 13वें ओवर में एक विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तिरुवनंतपुरम में पहले मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। एफएम गोल्ड AIR डेली @gmail.com पर ढेर सारे संदेश आ रहे हैं, आएंगे आगे भी। आप जो हमसे अभी जुड़े हैं, आपसे भी गुजारिश है, अगर आपके जहन में कोई ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं तो FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर भेज दीजिए हमको। आज के दिन क्या ख़ास है? आज 30 सितंबर है। देखिए, हर दिन ख़ास है, हर दिन जो हमें सांस लेने का मौका मिलता है मेरे ख्याल से वही ईश्वर की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ख़ास है। 30 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, विश्व अनुवाद दिवस। जी हाँ, अनुवाद, जो कि आजकल प्रकाशक से, किसी भी प्रकाशक से आप पूछेंगे तो बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो किताबें बिकती हैं वो अनुवादित किताबें होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, कितनी भाषाओं के लेखकों को हम आज इसलिए जानते हैं क्योंकि हिंदी में या अंग्रेज़ी में भी उनकी किताबें अनुवादित होती हैं, हम पढ़ पाते हैं। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने तो बचपन से ही सिखा दिया था हमको अनुवाद, और नहीं तो क्या। बिल्कुल, आज इसी मौके पर, विश्व अनुवाद दिवस पर, देखो गाना भी मिल गया मुझे जिसमें अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ कहते तमे प्रेम करो छू और बंगाली में है ना, कितना अमेजिंग था ना वो गीत। अब तो सुन, आप समझ ही गए होंगे, आप हैं रूमी मलिक के साथ में आकाशवाणी FM गोल्ड का ये सफर जारी रहेगा इस गीत के उस पार, और ये मेरी तरफ से आपको I love you.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। दिखा कितना बढ़िया गाना ना, हिंदी फिल्मों ने सब काम किया है, पहले से समय से पहले किया है, पायनियर्स। और नहीं तो क्या, देखो कौन सोच सकता था एक आरजे और एक ट्रांसलेटर, हम ही सोच सकते थे कि ये गीत बच सकता है वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे पे, है कि नहीं। आपकी अटेंडेंस हो जाए मित्रों, रमेश चौहान, बबलू ठेकेदार, संदीप मक्कड़, ताज मोहम्मद, सतीश अनेजा, प्रथमेश चंदन, अटेंडेंस ले रही हूँ अटेंडेंस, है ना, घबराना मत, नाम बोले जाते हैं सिर्फ इसमें, भारत भूषण, सोहेल शेख, मस्कीन दादा, संदीप मकर, देव नारायण साहू, जाकिर, हरजिंदर सिंह भाटिया, सोहेल शेख, धर्मेंद्र छीपा, किशन वंजानी, बुधराज खोरवाल, अरहान अहमद, आर कुमार, कमल मारावी, सरफुद्दीन अंसारी, आगे बढ़ो संजय पाटिल, अच्छा अगले पेज पे जाए इश्क मोहब्बत, हाँ जी अच्छा, और देखते हैं बाकी तो रिपीट मेल्स ही हैं, नारायण खांडे भी हैं साथ में, मेहर अरोड़ा भी हैं, और किशन वंजानी जी का नाम ले लिया था हमने, दैट्स ऑल आई थिंक, है ना, नहीं महेंद्र प्रसाद मोदी जी भी हैं, है ना, ये सिर्फ लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड मैडम गुड आफ्टरनून रामगढ़ कैंट से, एडवोकेट ममता मोदी, डॉक्टर प्रियंका मोदी एंड डॉक्टर तस्नीम कौसर, जी हाँ गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सतीश अनेजा जी, आफ्ताब अंसारी, अवरोज शेख, ठीक है। अब मस्कीन दादा का जो मांगा हुआ गाना है वो सुन ले, वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, हम दिग्दर्शन कौर जी भी हैं, दिग्दर्शन गौर हमारे साथ हैं, विट्ठल यादव, और हाँ तो मेरे ख्याल से अटेंडेंस पूरी हुई, पर बहुत मज़ा आता है वो आपके ना लेटर्स मैसेजेस पढ़ के, अभी पढ़ते हैं इस गीत के उस पर, थोड़े थोड़े पढ़ूंगी, बड़ा आनंद आता है। तो ये सुनना चाहते हैं गीत, जब छाई मेरा जादू, और पूरे के पूरे परिवार पता नहीं साथ में सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन देखो हम शराफत से नाम सबके एक साथ ले लेते हैं, है ना। अब देखो मैंने सेव किया था कहाँ पे आपका जो है, मस्कीन दादाजी के साथ में वीना जी भी हैं और चैतन्य इनके बेटे भी हैं और सारा परिवार साथ में है, तो आइए सुनते हैं ये गीत जब छाए मेरा जादू।

FM Gold, जी हाँ, जीवन में थोड़ा सा जादू, थोड़ा सा तिलिस्म बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं और क्या। पता है वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, किसी बड़े आदमी ने कही है, पर ठीक है हमें याद नहीं, कहावत याद है, आदमी का नाम याद नहीं, कि आई थिंक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, पर प्रमाणित तौर से नहीं कह सकती, कि उसमें लिखा था कि अगर आप बच्चे हैं तो फेरी टेल्स पढ़िए, और अगर आप बड़े हो गए हैं तो फेरी टेल्स यानी परी कथाएं जरूर पढ़िए, और भी ज्यादा पढ़िए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यकीन में, प्रूफ में, एविडेंस में विश्वास करने लगते हैं जब बड़े बुड्ढे हो जाते हैं हम लोग, नहीं जब बचपन में होते हैं तो कैसे छोटी छोटी बातों के लिए विस्मय, वो वंडर की फीलिंग वो होनी चाहिए ना, तो जादू में विश्वास होना चाहिए। व्हेन लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस, यस। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा, ये कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? ये सुनना चाहते हैं तूने ओ रंगीले कैसे जादू किया। आओ सुनते हैं इस गीत को।

FM Gold, लोभरी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रतिभा नेहा, पुष्पराज ऋषभ, ये सुनना चाहते हैं गीत जाते हो परदेस पिया जाते ही खत लिखना। हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेटर राइटिंग। मेरी सारी जो भाषा है ना उसी इसी से इम्प्रूव हुई थी। मैंने खत ही लिखे हैं दुनिया भर को सच्ची में। और अब ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी तो इलेक्ट्रॉनिक खत ही है ना, मत पूछो। आय हाय, जीना तेरी गरी में कौन सी पिक्चर है, कौन सा गाना है, हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल जी की और नितिन मुकेश की आवाज़ में है ये गीत। मैंने कभी नहीं सुना सच्ची, आइए ट्राई करते हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। अरहान अहमद लिखते हैं, आरजे रूमी मलिक साहिबा, आपकी खिदमत में हमारा प्यार भरा नमस्कार। और फिर से भेज दिया एक रिलेटिवली नया गाना। अरहान, आपको प्रॉमिस करते हैं कि 5 से 6 के कार्यक्रम में गाते गुनगुनाते हुए आपको ये गीत सुनने ज़रूर मिलेगा। हमारे बहुत सारे लिसनर्स इस तरह से हैं जो नए गीतों की फरमाइश कर देते हैं। तो अब ओल्ड इज़ गोल्ड, आप समझिए ना बात को। दिल तेरा दीवाना है सनम, ये गीत सुनना चाहते हैं देवनारायण साहू। कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा छत्तीसगढ़ से हमको मेल। योगिता चुलबुली, गीतिका चंचल रानी, ये नाम है कि एडजेक्टिव विशेषण है। त्रियांश कुमार साहू, ठीक है। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत, क्लासिक गीत, दिल तेरा दीवाना है सनम।

FM Gold. आप सुन रहे हैं FM Gold, मन भावन और उग्रसेन यादव जी राम राम जी बोल रहे हैं, आपको भी राम राम जी। ये फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से गीत सुनना चाहते हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। उग्रसेन यादव जी, आप उग्र तो नहीं है ना रियल लाइफ में, है ना, यथा नाम तथा गुण तो नहीं है। शकुंतला यादव जी और गरिमा भी हैं साथ में, ये दिल्ली से ही लिख रहे हैं हमको, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। हमारे साथ मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार जुड़ा है। बबलू कश्यप जी जुड़े हैं परिवार के साथ में, और मास्टर अशोक कुमार वर्मा जी भी हैं जो सनावद मध्य प्रदेश से लिखते हैं। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना जी और भी बहुत सारे लोगों के साथ सुनना चाहते हैं गीत आपकी कसम। देखो, कसम ऐसे ना खानी नहीं चाहिए। वैसे मैं सच बता रही हूँ आपको, कसम बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ज़ुबान की बहुत कीमत होती है, शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए ज़ुबान पे खरे रहो, खरे उतरो, लेकिन बात बात पे कसमें ना खाते रहो। खैर, गीत है, हमारा भी पसंदीदा गीत है। सुनो, कहो, कहा, सुना, आइए सुनते हैं ये गीत।

एफएम गोल्ड, देखो हमने सारे खत इंक्लूड किए, आपके सबके ईमेल्स, ये खता हमसे नहीं हुई, अपनी तरफ से कोई भी ईमेल नहीं छोड़ा है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों के गीत सुन, जो भी गीत है वो अपने ही गीत हैं, अपने मित्रों के गीत हैं। आर्यन वर्मा जी सुनना चाहते हैं गीत रॉकी फिल्म से, क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, मैं कहूँगी यही प्यार है। जुड़े हुए हो एफएम गोल्ड से इतने सालों से, प्यार बरकरार है, हाँ यही प्यार है। मन भावन सुन रहे हैं आप। मेरे ख्याल से ये गीत इसके बाद क्या ही बजेगा, आखिरी गीत इस मन भावन की आखिरी पेशकश, क्या यही प्यार है। रूमी मलिक को दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, फिर हाजिर होंगे आपके साथ 5-10 पे गाते गुनगुनाते लेकर। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का परीक्षण इससे संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दोहा में कतर व्यापारिक संघ की गोलमेज बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी के बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत से दक्षता से जुड़ा हुआ मानक है। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए गए आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। पंजाब के जलंधर में मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में कोई कदम नहीं उठाया। गृह मंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जलंधर में हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम आयोग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। श्री मोदी आयोग के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और कैनन चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 27वें ओवर में 2 विकेट पर 213 रन बना लिए थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के छह बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं।
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of Intelligent Traffic Management System, ITMS, project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor, GEC Phase 3 scheme. He said the initiative will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. The centre has approved procurement worth 5,547.99 crore rupees at minimum support price, MSP, under the Price Support Scheme, PSS, for major pulses and oil seeds in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for the Kharif marketing season 2026-27. The Agriculture Ministry has said that the decision has been taken to protect farmers from a fall in market prices and ensure remunerative returns for their produce. Talking about the decision, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the centre is working with full commitment towards the welfare of farmers, increasing their incomes and making the agriculture sector self-reliant. Union Home Minister Amit Shah has said that Punjab will be made drug-free by the end of 2029. Addressing a Nasha Mukt Punjab rally in Jalandhar today, Mr. Shah appealed to people to vote for the BJP, saying the party would contest the upcoming assembly elections in Punjab on the issue of making the state free from the menace of drugs. He said the BJP fulfills the promises it makes. Mr. Shah said the government has addressed terrorism in Jammu and Kashmir and ended extremism in the northeast, adding that the focus would now be on making Punjab drug-free. Finance Minister Nirmala Sitharaman has urged Qatari businesses to actively explore trade and investment partnerships with India and further strengthen bilateral economic ties. Addressing a business roundtable of the Qatari Businessmen Association in Doha, she highlighted India's strong economic growth, rising investment and record gross FDI inflow of over $94.5 billion in financial year 2025-26. Well, in men's cricket, West Indies were 221 for 2 in 28 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium.

0: देवल साथ में प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तों, सेवा की शर्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि का विवरण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.ninpune.ayush.gov.in। लोकसभा सचिवालय में संविदागत आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स को पैनल में शामिल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार, राज्य विधानसभा सचिवालय, स्वायत्त निकाय, केंद्र अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और स्थानीय निकायों के पात्र गैर आधिकारिक भारतीय नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स को पैनल में शामिल करने के लिए भाषाएं हैं संथाली एक रिक्ति, मराठी और उर्दू एक एक रिक्ति। अधिक विवरण और निर्धारित आवेदन पत्र के लिए देखिए वेबसाइट sansad.in/is.recruitment। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में फोरमैन इलेक्ट्रिकल का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों, आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO आयोजित कर रहा है वॉक इन साक्षात्कार। 5 रिक्तियां हैं। पद है मैकेनिकल इंजीनियर का। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा सवेरे 9:30 से 11:30 बजे तक और दस्तावेज सत्यापन के बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि तय की गई है 6 अक्टूबर 2026 और 7 अक्टूबर 2026। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय आमंत्रित कर रहा है अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य आवश्यक शर्तों और निर्देशों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट rdsdetelangana.dgt.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं 4:30 यानी वक्त है आपकी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ लाए हैं हमारे लिए आज वो खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती ही है हमारी बराबर नजर और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं हरदिल अजीज, आपकी जानी पहचानी लालिमा अनेजा डैंग। नमस्कार लालिमा।
3: नमस्कार मनीष, थैंक यू फॉर ऑल द नाइस एडजेक्टिव्स एंड यू हैव वेरी नाइसली आउटलाइन द प्रोफाइल ऑफ द प्रोग्राम एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर फ्रेंड्स हू आर ट्यून्ड इन एंड ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस प्रोग्राम कॉल्ड परिक्रमा व्हिच कम्स टू यू एवरी डे एट 4:30 शार्प। सो बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद द न्यूज हेडलाइंस। यस मनीष
0: जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इनका लक्ष्य 5 वर्ष में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना है।
3: न्यू दिल्ली कतर रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ कतर्स $10 billion इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टू इंडिया ऑल्सो डिस्कस एक्सेलरेटिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट निगोशिएशंस।
0: नेपाल में लगातार बारिश के चलते उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से ज्यादा गांव हुए प्रभावित।
3: In Asian Games 2026, India bags 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking the total tally to 59, including 10 gold.
0: जी हाँ, और गुवाहाटी में भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला।
3: And friends, let's talk about what talk about. We'll discuss something. And what's that? It's very special because today is, yes, International Translation Day. Translation is one thing. It's something which unites not just India, but the entire world. Such a vast variety God has created. Vast variety of cultures within India and outside India. And vast variety of languages. And if you have translation coming into force, certainly it is kind of a great unification program. And it's been going on for a very long time. International Translation Day is observed every year on the 30th of September, highlighting the importance of translators, interpreters and other language professionals. And as I just mentioned, it's a great unifying force. You know, this date is linked to Saint Jerome, who was a Christian scholar and translator, who is traditionally regarded as the patron saint of translators. Saint Jerome translated the Bible into Latin and is remembered for his contribution to the history of translation. The United Nations officially recognized September the 30th as International Translation Day in 2017. So this kind of recognizes the work of translators and language professionals and highlights their contribution to multilingualism and international communication.
0: इस साल अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विषय भाषाई विविधता और भाषाई अधिकार है। दोस्तों, ये थीम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के लिए बहुत ही सही और महत्वपूर्ण है। दरअसल ये विषय एक दूसरे से तेजी से जुड़ती दुनिया में समावेश, समानता और भागीदारी को बढ़ावा देने में अनुवाद, इंटरप्रेटिंग और शब्दावली की अहम भूमिका को उजागर करता है। भाषाई विविधता मानवता की खास पहचान है।
3: बिल्कुल।
0: और ये सांस्कृतिक पहचान सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक जीवन का आधार है। फिर भी कई भाषाएं आज हाशिए पर हैं, उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते या उनके खत्म होने का जैसा भी खतरा है। ये विषय भाषाई विविधता को बचाने की जरूरत पर बल देता है और साथ ही सुनिश्चित करता है कि भाषाई अधिकारों को तभी बनाए रखे जा सकता है जब उन्हें पेशेवर भाषाई सेवाओं का समर्थन मिले। ये पक्का करने के लिए भाषाई विविधता

0: अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस दोस्तों भाषाई विविधता को बनाए रखने के महत्व को समझने का मौका देता है। दुनिया भर में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में अनुवाद समुदायों को अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए ज्ञान को साझा करने में मदद करता है। और जैसे जैसे वैश्विक संचार का दायरा बढ़ रहा है लालिमा, लोगों को ये जानकारी समझने और सीमाओं के पार बातचीत करने में मदद करने के लिए भाषा विशेषज्ञों की, अनुवादकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं कई बार सोचती हूँ कि यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर एट आवर डोरस्टेप, बट यू हैव टू बी केयरफुल। फॉर एग्जांपल, वंस आई वाज गोइंग टू ट्रांसलेट अ प्लांट, यू नो प्लांट मतलब एक एक इंडस्ट्री का जो प्लांट होता है मनीष,
0: जी,
1: जब उसको कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसने कहा हाँ हम स्टील का पौधा सेटअप कर रहे हैं। मतलब स्टील प्लांट को उसने स्टील का पौधा बना दिया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एआई के साथ एचआई भी जरूरत है। एचआई मींस Human intelligence.
0: जी हाँ बिल्कुल। और we often you know face such situations while translating news in our Hindi newsroom and there are very hilarious anecdotes like once what happened that one was supposed to translate public gathering. Public gathering, he addressed a public gathering, some leader and he translated और उन्होंने एक लोकसभा को संबोधित किया। लोकसभा, वी यूज फॉर पार्लियामेंट,
1: एग्जैक्टली।
0: दो इफ यू से सी इट लाइक इन द मीनिंग वाइज, यस इट कैन बी लोकसभा, दैट इज जनसभा।
1: यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाउ यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स विद दिस।
0: इंडीड जी। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यस दिस इज
1: All right, let's talk about now more. Yes, you know, Prime Minister Narendra Modi, friends, is completing 25 years in public service. Now we are moving beyond translation. He completed a journey which is defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards the goal of a developed India by 2047. So through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming our lives. And today in our special series, we bring you the story of Atal Bihari Vajpayee Seri Nava Seva Atal Setu in Mumbai.
2: The Atal Bihari Vajpayee Shivri Nava Seva Atal Setu is India's longest sea bridge. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the bridge in January 2024. He had also laid its foundation stone in December 2016. Constructed at a cost of more than 17,840 crore rupees, the Atal Setu is about 21.8 kilometers long and has 6 lanes. Around 16.5 kilometers of the bridge is over the sea, while about 5.5 kilometers are on land. According to infrastructure expert Pandurang Dandao, the Atal Setu has also improved connectivity to Navi Mumbai International Airport. It has reduced travel time between Mumbai, Pune, Goa and parts of South India. The bridge has further strengthened connectivity between Mumbai Port and the Jawaharlal Nehru Port. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
0: और दोस्तों अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का। जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास आज उनके पास।
1: राइट, एज द नेम सजेस्ट आवर प्रोग्राम इज परिक्रमा, सो वी गो हॉप हॉप हॉप ऑन टू मेनी स्टेट्स। लेट्स बिगिन विद गोवा। वेल, द गोवा स्टेट म्यूजियम इज सेलिब्रेटिंग 49th एनिवर्सरी एंड अ वन डे सेमिनार ऑन द रोल ऑफ म्यूजियम्स इन प्रिजर्विंग गोवाज हेरिटेज एंड हिस्ट्री, एंड दिस वॉज अरेंज्ड एट द ऑडिटोरियम ऑफ द गोवा साइंस सेंटर एट मीरामार पणजी। आवर कॉरेस्पॉन्डेंट has more on this.
3: The theme of the seminar was preserve the past, understand the present and inspire the future. The discussions focused on the role of museums in preserving Goa's rich historical, cultural and archaeological heritage for future generations, digitization of historical artifacts and challenges involved in conservation. Experts also exchanged views on community participation in heritage conservation, the educational role of museums and taking historical information to the wider public. The main objective of the seminar was to underline the need to preserve Goa's heritage, promote research and create awareness among society about state's historical and cultural heritage. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
1: Yes, certainly, Manish. I think we need to preserve our museums because sometimes I feel children must be so bored reading history from the textbooks. If you take them to good, well-maintained museums, they will have more interest in history. Don't you think so?
0: Indeed, they do. Yes.
1: All right.
0: We must.
1: Ji.
0: दोस्तों, नक्सलवाद की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ के

0: दक्षिणी भाग यानी बस्तर संभाग जो है वहां के दूरदराज के अंचलों में विकास की राह अब एक नई रफ्तार पकड़ रही है। बस्तर के लोगों के लिए बदलाव सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में भी वो सामने आ रहा है। और इसी दिशा में दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। इस बारे में और ब्यौरा आइए सुनते हैं, रायपुर से दे रहे हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
1: छत्तीसगढ़ में करीब 95 किलोमीटर लंबी दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोकी रावघाट रेल खंड का काम भी पूरा कर लिया गया है। अब इस खंड को रेल परिचालन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान में दिल्ली राजहरा से ताड़ोकी तक रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। ताड़ोकी से रावघाट खंड में रेल परिचालन शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय लोगों के लिए आवागमन भी आसान होगा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यापार से जुड़े अवसरों तक पहुंच भी बेहतर हो सकेगी। साथ ही रायपुर और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच भी अधिक सुगम होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रावघाट तक रेल पटरी पहुंचने को दक्षिण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ना विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। रावघाट तक पहुंची रेल लाइन सिर्फ पटरियों का विस्तार नहीं है, यह बस्तर के दूरस्थ इलाकों को नए अवसरों से जोड़ने की एक नई कड़ी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
2: जी बिल्कुल, हमारे देश में नक्सलवाद समाप्त हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले हम कितना कुछ सुनते थे और मन दहलता था, लेकिन अच्छी बात है कि अब वहाँ पर विकास हो रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू ओडिशा नाउ। वेल, वेस्टर्न ओडिशा इज अ लैंड वेयर फेस्टिवल्स एंड फोक ट्रेडिशंस ब्लेंड इनटू द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। अमंग दीज टू कल्चरल ट्रेजर्स स्टैंड आउट, भाई जुंटिया एंड द दलखाई डांस। फॉर मोर ऑन दिस लेट्स लिसन इन।
3: Bhaijutia is a festival of love and dedication between sisters and brothers. On this day, women observe a day-long fast and tie the sacred Jutia thread, praying for the long life and prosperity of their brothers. The streets and villages of Sambalpur, Borgarh, Balangir, Subarnapur and Kalahandi come alive with devotion. It is not just a ritual, but an emotional bond where sacrifice, care and affection are expressed through tradition. And when the evening falls, the rhythm of Dalkhai takes over. This famous folk dance of Western Odisha is mostly performed by young women, especially during festivals like Bhaijutia and Nuakhai. The word Dalkhai itself is an invocation, a call to the divine. Dancers dressed in colorful Sambalpuri saris move gracefully in circles to the beats of dhol, nisan, tasa, jhanj and mohri.

0: with a full-day awareness program. Here's more from a correspondent.
1: The Department of Medical Oncology at Jipmer organized the program under the theme Tiny Hands, Mighty Hearts, Childhood Cancer is Curable. The program aimed to spread awareness about childhood cancer, highlight the importance of early diagnosis and appropriate treatment, and reinforce the message that childhood cancer can be cured. The event began with a cancer awareness walk from the Kargil War Memorial to Gandhi Statue in the Rock Beach. Healthcare professionals, childhood cancer survivors, students, volunteers, NGOs, and members of the public took part in the program. Cultural performance, a childhood cancer survivor's interaction, and recognition of students who participated in a drawing competition were also held. Students from several educational institutions across Puducherry participated in the drawing competition. Dr. Swaminathan K., Assistant Professor of Medical Oncology, Jipmer, spoke about childhood cancers, the high cure rates achievable with appropriate treatment, and the free diagnostic and treatment services available at Jipmer. He also highlighted the importance of blood transfusion support for children undergoing cancer treatment. Jipmer has maintained a pediatric cancer registry since 2010 and currently registers around 200 to 220 new childhood cancer cases every year. Doctors, nurses, and medical social workers at the institute play an important role in reducing treatment abandonment through counseling, financial and logistical assistance, and follow-up support. The awareness program also highlighted that childhood cancer affects more than just physical health of a child. The program stressed that families, healthcare professionals, schools, and wider community have an important role in supporting children through treatment, ensuring their emotional well-being, and helping them continue their education and social activities. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
2: तो आइए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको खेल के मैदान में जाने वहां की हलचल. भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत लिए 4 स्वर्ण पदक. जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा. भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में भी शानदार संयम दिखाया और पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए जीते स्वर्ण पदक. पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया. उधर ज्योति सुरेखा वैनम, चिकिता तन्या पार्थी और प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को हराया. साहिल जाधव और चिकिता तन्या पार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर हासिल किया है स्वर्ण पदक. और इस जीत के साथ ही भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए अपना कोटा भी अब हासिल कर लिया है. निशानेबाजी की अगर हम बात करें लालिमा, तो देखें कि नीरू डांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और रचा इतिहास. उधर मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो देखें कि महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते. पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है.
0: एक्सलेंट न्यूज. हम जापान की इतनी बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन थी. मुझे याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुनीश, कि हर भारतीय को एक बार जापान जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी उन कितने वो रिच हैं, कितने वेल बिहेव्ड हैं, कल्चरली कितने रिच हैं, सिविक सेंस उनमें इतनी ज्यादा है, ईमानदारी इतनी ज्यादा है. और अगर आप कभी उनकी ट्रेनों में सफर करें तो कोई चूं भी नहीं करता, इतनी शांति में सब रहते हैं सिविक पब्लिक स्पेसेस में.
2: जी, मुझे एक बार ऐसा मौका मिला था 4 साल वहां गुजारने का. तो wow. सच कह रही हैं, सभ्यतागत नजरिए से देखें तो वो बहुत समृद्ध देश है. सभ्यता के नजरिए
0: बहुत सभ्य. आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू मेंस क्रिकेट. वेल, वेस्ट इंडीज बट 283/2 इन 35.1 ओवर्स अगेंस्ट होस्ट इंडिया ऑन द सेकंड ओडीआई ऑफ द 3-मैच सीरीज एट बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम इन गुवाहाटी व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन.
2: और दोस्तों आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. लेकिन उससे पहले, जी हाँ, बहुत जरूरी है कारोबारी दुनिया की खबरें भी. बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल. ओके, वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स डिक्लाइन फॉर द थर्ड स्ट्रेट सेशन टुडे. द सेंसेक्स सेटल्ड नियरली फ्लैट, डाउन बाय 49 पॉइंट्स टू क्लोज एट 72,480. निफ्टी फेल बाय 96 पॉइंट्स और 0.42% टू सेटल एट 22,620. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index remained unchanged, while the small-cap 100 index rose 0.3%. My business ओवर टू यू।
2: जी हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानियों को तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड,

0: सो मस्टर्ड और सेफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और करीब 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की और इसे डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने, बनाने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 2 विकेट पर 313 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal,

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। आपके साथ है हम रूमी मलिक। सितंबर का आखिरी दिन, गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। जिस तरह से मौसम में गर्मी अच्छी लगती है, उसी तरह से रिश्तों में भी गर्मजोशी गर्मी अच्छी लगती है। तो अगर संबंध अच्छे बनाए रखने हैं तो हाथ पकड़िए, बात नहीं। लेकिन हाँ, मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। स्वागत है आपका।

गाते गुनगुनाते का सफर जारी है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ है हम रूमी मलिक। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी मल्टीविटामिन है। तो प्यार मोहब्बत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, और इसके लिए आपको देना आना चाहिए। जिसे प्यार देना आता है उसे प्यार मिलता भी बखूबी है। फिर तो एक एक सांस जो है उस सांस में ऐसी प्यार और मोहब्बत और ताजगी होती है कि देख कर ही व्यक्ति को दिल खिल उठता है।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गाते गुनगुनाते में आपके साथ है हम रूमी मलिक। रिश्तों में मिठास चाहिए, रिश्तों में मिठास आजीवन बरकरार रहेगी बशर्ते आप दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। और ज़िंदगी में सफलता हम सब चाहते हैं। अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आप वो कीजिए जो आपका दिल चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि ये बात बहुत पहले से मैंने निर्णय ले लिया था, बहुत पहले से। इतिहास प्रिय सब्जेक्ट था, आर्कियोलॉजी भी अच्छी लगती थी। आर्कियोलॉजी में जाना नहीं चाहती थी, पर हमेशा बड़ी ही दिलेरी से कहा करती थी घर पे ये, अरे मैं तो कुछ खोदूंगी भी सही ना, मैं उसमें भी पैसा कमा लूँगी। आर्कियोलॉजी में यही होता है, खुदाई होती है, पुरानी पुरानी इमारतें और पुराने तथ्य निकल कर आते हैं। तो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि पैसा जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा, लेकिन शर्त ये है आप अपने काम में बहुत अच्छे हों, उस काम से प्यार कीजिए। और प्यार तभी कर सकते हैं जब उस काम में आपका दिल होगा। हाँ जी, ये दिल

गाते गुनगुनाते का सफर यूं ही चलता रहे। महाभारत कभी भी किसी घर में होती नहीं है, रखते बिल्कुल भी नहीं है, है ना। लेकिन वो एक नीति ग्रंथ है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर नीतियाँ, बड़ी सुंदर सुंदर बातें भी कही गई हैं वार्तालाप के माध्यम से। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि जिसमें कोई अहंकार नहीं होता ना, जिसने अहंकार अपना ताक पर रखा होता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। कभी सोच के देखिएगा, कुछ लोग होते हैं जो सर्वप्रिय होते हैं और बाकी लोग होते हैं जिनके चुने हुए दोस्त और चिने हुए दुश्मन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसी कारण से है क्योंकि अपने अहम को पीछे नहीं रख पाते। जिससे भी मिल रहे हैं और जो भी उपलब्धि आपने की है जीवन में, उसमें सामने वाले का मतलब आप उसको क्यों दिखा रहे हैं कि आप ये हैं और वो हैं। मैं हमेशा ये वाली बात सोचती हूँ, जीवन में मैंने जो भी किया या जो भी कर रही हूँ तो अपनी उन्नति के लिए कर रही हूँ ना मेहनत, तो किसी और पे क्या एहसान है या किसी और पे क्या दबाव है। तो इसलिए जब भी किसी से मिलो, प्यार से मिलो, प्रेम से मिलो। सबसे सुंदर चीज़ यही है जीवन में, और कोई कुछ भी नहीं है। सचमुच में सार यही है, विनम्रता। सबसे बड़ी बात विनम्रता। आप जमीनी हो जाएं, बी ग्राउंडेड, बी हम्बल,

दिल तो करता है गाते गुनगुनाते का सफर चलता ही रहे, और देखा जाए तो चलता ही रहता है। मन में भी तो गुनगुनाते हैं, दिल में भी तो गुनगुनाते हैं, याद करते हैं रूमी को बाद में कि नहीं। गाते गुनगुनाते का सफर दोस्त यहीं तक। आखिरी पेशकश, बस आखिरी गीत सुनाया जाएगा। आप प्रसन्न रहिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। तो कोशिश ये किया कीजिए, क्योंकि दूसरे को जब हम हंसाते हैं तो वो हंसी कहीं ना कहीं सिमट कर हमारे पास भी आती है, चिपक कर, सिमट कर, लिपट कर। तो आप खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Cabinet Committee on Economic Affairs today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
0: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
0: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the union cabinet today also approved the green energy corridor phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. The centre has approved procurement worth 5,547.99 crore rupees at MSP under the price support scheme for major pulses and oil seeds in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for the Kharif marketing season 2026-27. The Agriculture Ministry said the decision has been taken to protect farmers from a fall in market prices and ensure remunerative returns for their produce. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah has said that Punjab will be made drug-free by the end of 2029. Addressing a Nasha Mukt Punjab rally in Jalandhar today, Mr. Shah said the BJP would contest the upcoming assembly elections in Punjab on the issue of making the state free from the menace of drugs. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation, 526 kilograms of methamphetamine and heroin were seized from the boat, which was within India's exclusive economic zone. In a social media post, Mr. Shah highlighted that the Modi government is determined to shield its youth from the scourge of drugs. The minister emphasized that upholding a stellar example of coordination and cooperation among agencies, the 16-day-long operation also seized an Iranian boat. In men's cricket, West Indies have set a target of 406 runs for hosts India in the second ODI of the three-match series in Guwahati. West Indies scored 405 runs, losing 7 wickets in the stipulated 50 overs. Earlier, India won the toss and opted to field. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery with the women's team, mixed team and men's team, all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 3 bronze medals to the tally, with Priya Ghangas, Narendra Berwal and Kapil Pokharia finishing on the podium. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण है। देश की आबादी का लगभग 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति समुदाय का है। इन समुदाय के लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में लंबे समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जरूरी है कि विकास के अवसर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और शिक्षा, रोजगार, आजीविका तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PMAJY शुरू की है। ये योजना वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। PMAJY में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, किन लोगों और क्षेत्रों को इसके तहत सहायता मिल सकती है और अब तक इस योजना में क्या प्रगति हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि PMAJY के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांव और समुदायों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, अतिरिक्त रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करके गरीबी कम करना। इसके लिए कौशल विकास, आय सृजन और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को सहायता दी जाती है। दूसरा, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और जरूरी सेवाओं में सुधार करना। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विकास की कमियों को दूर करना है जहां लोगों को आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है। तीसरा, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके तहत अनुसूचित जाति के बच्चों और युवाओं को स्कूल तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जरूरत के अनुसार आवासीय विद्यालय और छात्रावास जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। श्रोताओं, योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ऐसे गांव में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करना है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना ऐसे गांव के रूप में की गई है जहां लोगों को जरूरी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों, समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और असमानताओं को कम किया जा सके। ऐसे गांव में लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल दिया जाता है। अब सवाल है कि किन गांवों को इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा विकास के लिए सहायता मिल सकती है। श्रोताओं, जिन गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक है और कुल आबादी कम से कम 500 है, वे इस योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र हैं। PMAJY का दूसरा महत्वपूर्ण घटक राज्य और जिला स्तर पे सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता देना है। इसके तहत कौशल विकास और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के साथ आजीविका परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लक्षित लोगों की आय बढ़ाना और उन्हें आय सृजन वाली गतिविधियों से जोड़ना है। अनुसूचित जाति बहुल गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी सहायता दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कूलों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। श्रोताओं, योजना के अनुदान सहायता घटक में लाभार्थियों के चयन के लिए भी पात्रता का प्रावधान है। ऐसे परिवारों और व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति बहुसंख्यक समूह के अनुसूचित जाति सदस्य भी पात्र हो सकते हैं। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास शिक्षा जारी रखने में मददगार हो सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
1: श्रोताओं, PMAJY के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने PMAJY मोबाइल ऐप और PMAJY पोर्टल शुरू किया है। इन डिजिटल माध्यमों का उद्देश्य कागज आधारित कार्य प्रवाह और प्रक्रिया से डिजिटल कार्य प्रवाह तथा वास्तविक समय में प्रक्रिया की ओर बढ़ना है। इससे योजना के कार्यों की निगरानी, सूचना तक पहुंच और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अब सवाल है कि PMAJY के तहत अब तक कितनी प्रगति हुई?

0: है, कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और कितने लोगों को कौशल तथा आजीविका से जुड़ी सहायता मिली है। आइए अब जानते हैं कि योजना के तहत अब तक की प्रमुख प्रगति के बारे में।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आदर्श ग्राम घटक के तहत देश भर में बड़ी संख्या में गांवों को शामिल किया गया है। आदर्श ग्राम घटक में अब तक 47,243 गांव शामिल किए गए हैं। इससे देश भर में 47,79,000 से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 46,944 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 27,032 ग्राम विकास योजनाएं भी तैयार की गई हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, 8 सितंबर 2026 तक 18,093 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इन गांवों में योजना के तहत तय किए गए विकास मानकों को पूरा करने की दिशा में काम किया गया है। अब बात करते हैं योजना के अनुदान सहायता घटक की। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक इस घटक के तहत राज्यों को सीधे 1,730 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। इस सहायता से 2,50,000 से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक लाभार्थियों को कौशल विकास तथा आजीविका से जुड़ी सहायता दी गई है। श्रोताओं, कौशल विकास का उद्देश्य लोगों को रोजगार और आय से जुड़ी गतिविधियों के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराना है। वहीं आजीविका से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को आय के स्थायी साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस योजना में शिक्षा के क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत की जाती है। आपको बता दें, सितंबर 2026 तक देश में कुल 785 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रोताओं, PMAJAY की एक विशेषता ये भी है कि योजना के तहत बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों या कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है। योजना की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त संसाधनों से योजना को पूरा कर सकते हैं। श्रोताओं, PMAJAY के तहत डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से योजना से जुड़े कार्यों को डिजिटल बनाने का प्रयास जारी है। इससे सूचना उपलब्ध कराने, निगरानी बढ़ाने और योजना के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है।
0: श्रोताओं, विकास तभी व्यापक माना जा सकता है जब उसके अवसर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आदर्श ग्राम, सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और छात्रावासों के निर्माण जैसे प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। योजना के तहत डिजिटल तकनीक और बेहतर निगरानी के इस्तेमाल से इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आगामि वित्तीय वर्षाय राबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्येषु वृद्धिः अनुमोदिता। नवदिल्ली आरक्षिबलस्य नवाशीत्युत्तर सप्तशत कोटि परिमिता प्राज्ञ यातायात प्रबन्धन प्रणाली अपि समनुमोदिता।

0: हरित ऊर्जायाः अविरतम् अभ्युदयाय प्रशासनेन 1.86 लक्ष कोटि परिमित व्यय साध्यः पीएम धारा इति नामधेयः बृहद्योजना प्रकल्पः अभ्युपगतः। आगामिषु पञ्चवर्षेषु यात्री वाहनानां इंधन कार्यक्षमतायां 16% संवर्धम् अभिलक्ष्य केन्द्रशासनेन नूतनाः CAFE नियमाः प्रवर्तिताः। नवविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य समाप्तिं यावत् पंजाबधरा व्यसनमुक्ता विधास्यते इति केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ब्रूते। अपि च एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे भारतीय धनुर्धरैः स्वर्णपदकानां हैट्रिक इति त्रयो विजयः समासादितः। मुष्टिद्वन्द्वे च मिश्रित ट्रैम्प दलेन स्वर्णकमलं विकसितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य आर्थिक कार्य मंत्री मण्डलीय समित्या प्रवर्तमान वित्तीय वर्षस्य कृते सर्वेषामपि राबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्येषु श्लाघ्या वृद्धिः समनुमोदिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः व्यजिज्ञापत् यत् कृषक हित रक्षणार्थम् असौ निर्णयः समाश्रितः। अनेन कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 लाख रूप्यकाणां सर्षपस्य 13.4 लाख चणकस्य 83 गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मानतः परिवर्धनं विहितम्।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: मन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् समित्या नवदिल्ली आरक्षिबलैः 80.7 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन प्रवर्तमाना प्राज्ञ यातायात प्रबन्धन प्रणाली योजना अपि स्वीकृता।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स है ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: एतदतिरिच्य मन्त्रिमण्डलेन हरित ऊर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणम् अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35.1 GW परिमितस्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतीय प्रशासनस्य ऊर्जा मन्त्रालयेन देशे समुपलब्ध यात्रीवाहनानां इंधन संरक्षण दक्षताम अभिलक्ष्य नूतना CAAFE इति संस्थागत मध्यमान इंधन दक्षता मानदंड नियमाः सम्यक् अधिसूचिताः। एते नूतनाः मानदंडाः 27.5 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् समारभ्य 32.5 वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। ये च पूर्व प्रवर्तितानां मानदंडानां स्थानम् अलंकरिष्यन्ति। एतद्विधानं भारते विक्रयार्थम् उत्पादितानां अथवा आयातितानां वा सर्वेषामपि नूतन यात्रीवाहनानाम् उपरि समानभावेन नियंस्यते। इयं हि नियमरचना वाहन निर्माण उद्योगस्य कृते महतीं नीतिस्थिरतां कार्यसुगमतां नियमन स्पष्टतां च प्रदास्यति। योजनेयं प्रौद्योगिकी नवोन्मेषं समेधयन्ती भारतस्य वाहन क्षेत्रम् उत्तरोत्तरं ऊर्जा दक्षतां न्यून इंधन व्ययं च प्रतिनेष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन दोहा नगरे कतार व्यवसायिभ्यः भारतेन सह वाणिज्य निवेश संबंधान सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवती। सा भारतस्य द्रुत विकासं प्रवर्तनान् वर्षस्य 94

अशांश पंच बिलियन डॉलर मितम कीर्तिमयं प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशम एफडीआई इति तथा ही जापान क्रेडिट रेटिंग संस्थया भारतस्य ऋण क्षमता निर्धारणे कृताम उन्नतिम उक्तवती। वित्तमंत्रिणा होमोर्स जल संधौ अबाधित सामुद्रिक वाणिज्यम पुरस्कृत्य गल्फ देशैहि सह व्यापार पुनरुद्धारस्य महत्वं प्रतिपादितम्। उपवेशनेऽस्मिन् कतार देशस्य 10 बिलियन डॉलर मितस्य निवेश संकल्पस्य कार्यान्वयनम्, भारते तस्य कार्यालय स्थापना अथ द्विपक्षीय निवेश संधि संबद्धा वार्ता द्रुतगत्या चालयितुं सहमतिः जाता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य जालंधर नगरे समाहूतां मादकद्रव्य मुक्त पंजाब महाभियानं असंभ्रमं संबोध्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह व्यजिज्ञपत् यत् नवविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य समाप्तिं यावत् पंजाब राज्यं व्यसन मुक्तं विधास्यते। तेन निगदितं यत् भारतीय जनता दलं अंगीकृत संकल्पान् सर्वदा परिपूरयति। गृहमंत्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तर राज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः। सम्प्रति च पंजाब राज्यस्य व्यसन मुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति। शहीद भगत सिंह उद्धम सिंहादि पंजाब भूमेः वीर हुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्य कृषि समृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदं अधुना वर्धमानेन मादकद्रव्य व्यसनेन संतप्यते। अद्य नवदिल्ल्यां ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलनं संबोध्य केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटन क्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमण विनोद विश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुख स्रोतत्वेन संवृत्तम्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटन क्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदात्री सूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते। असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेण कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात्। जापान देशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीय दलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि। भारतीय धनुर्धरैः कंपाउंड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हैट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्। एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते निखिल, गुड इवनिंग अनुभा।
1: सबसे पहले हेडलाइंस अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स नियरली फ्लैट, निफ्टी सेटल्स एट 22,620। कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी हाइक फॉर रबी क्रॉप्स इन 2027-28 and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ। निफ्टी 22,620 पर पहुंचा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027-28 में रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: And a disclaimer for our listeners, before we begin with the main stories, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक यानी कि 0.42% नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। मासिक आधार पर सेंसेक्स इस महीने 5.8% लुढ़का जबकि निफ्टी 6% गिर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं आया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की तेजी दर्ज हुई। इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट स्तर पर खुले क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल यील्ड को लेकर की चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क रहे। सेंसेक्स ज्यादातर समय बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा जबकि निफ्टी में उतार चढ़ाव होता रहा। बढ़त बनाए रखने में असफल रहने के कारण कारोबार के आखिरी घंटे में दोनों सूचकांक नीचे आ गए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the third straight session today. The Sensex settled nearly flat, down by 49 points to close at 72,480. The Nifty fell by 96 points or 0.42% to settle at 22,620. On a monthly basis, the Sensex shed over 5.8%, while the Nifty was down 6% in September. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index remained unchanged, while the small-cap 100 index rose 0.3%. Markets opened on a flat note this morning as investors remained cautious amid volatile crude prices and concerns over global yields. The Sensex stayed in positive territory for most of the session, while the Nifty swung between gains and losses. Failing to hold on to those gains, the indices edged lower in the final hour of trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल 2.3%, सन फार्मा 2.1% से ज्यादा और टाइटन 2% गिर गए। इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक 2.9%, आईसीआईसीआई बैंक 2.3% और इंडिगो 2% बढ़े।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged higher. Among the top gainers, Realty jumped 1.4%. Mid-small private banks rose 1% and BankEx added 0.7%. In contrast, hospitals tanked 5%, healthcare lost over 2.3% and consumer durables dropped over 1.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,232 companies declined. Shares of 2,144 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: Nifty 50 May. छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को आज शामिल कर लिया गया है। और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने जो भी अपने श्रोताओं को बताया कि निफ्टी 50 में छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को शामिल किया गया, इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी दें, कैसे होता है ये?
2: नहीं देखिए, जो निफ्टी का 50 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है, और ये मान के चलें कि जो 12-13 सेक्टर्स की जो 50 कंपनियां वो सभी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कह सकते हैं, और हर 6 महीने पे इसका एक बार जो है रिवीजन होता है इंडेक्स का, मतलब

0: निफ्टी का पार्ट होगा। और विप्रो जो है वो ऐसा स्वाभाविक है कि चूंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ों का वो आया है तब से उसके शेयरों में गिरावट भी आई, तो इस वजह से वो बाहर जा रहा है।
1: जी सिद्धार्थ, आज की शेयर बाजार की खबरों की अगर बात करें और उस पर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी में 8 साल में सबसे खराब प्रदर्शन दिखा गया और पिछले 25 साल में सबसे खराब सितंबर ये महीना गया, क्योंकि आज इस महीने का आखिरी दिन है। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, क्या ये शेयर मार्केट में रिसेशन है या कुछ और है, या वैश्विक जो हमारी चिंताएं हैं, जो वैश्विक गतिविधियां हैं उनका असर है, क्या कहेंगे?
0: नहीं देखिए निखिल, जहां तक जो शेयर बाजार में आजकल जो देखा जा रहा है, मैं कहूंगा पिछले कुछ समय से जो शेयर बाजार में दबाव है या जो वॉलेटाइल है शेयर बाजार, उसके मुझे लगता है जो ज्यादा कारण है वो देश के बाहर से हैं, जो जैसे कि अमेरिका में आप जो देखेंगे, और अब खाली अमेरिका में ये सीमित नहीं है, चूंकि महंगाई सब जगह बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड्स जो कि वो सब जगह बढ़ रही है, साथ साथ जो तेल की कीमतें हैं वेस्ट एशिया जब से शुरू हुआ ये क्राइसिस, अमेरिका और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से हमेशा से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 के आसपास के ऊपर हैं आज भी, तो वो एक बड़ा कारण है। वेस्ट एशिया जो मैंने बोला उसके वजह से जो अनिश्चितता आई है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हैं, वो एक कारण है। साथ में एक ये भी चिंता है, और हालांकि हम देख भी रहे हैं अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ऑलरेडी महंगाई को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारा रिजर्व बैंक भी शायद अपनी जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ा दें, तो मुझे लगता है। और साथ साथ इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भी जो अभी तक बिकवाली है वो अभी तक बनी हुई है, उसमें मतलब रुकावट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हमारी बाजार फिर भी मैं कहूँगा जो थोड़ी बहुत स्थिरता हमें दिखती है काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले क्या होता था जब विदेशी निवेशक जाते थे तो बहुत तेज़ी से बाजार गिरती थी, लेकिन इस अभी देखेंगे आप पिछले 2 सालों में तकरीबन 2.5-3 लाख करोड़ के रुपए के आसपास जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकला है, लेकिन उसके विपरीत जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने तकरीबन इसका डबल 4.5 लाख करोड़ के 5 लाख करोड़ के आसपास जो है भारतीय बाजारों में निवेश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि दुनिया में इतनी अस्थिरता है तो शायद उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है।
2: सिद्धार्थ, इट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग दैट यू सेइंग दैट यू नो आवर डोमेस्टिक आवर इकोनॉमी द इंडियन इकोनॉमी इज एक्ट you know quite stable when you look at whatever is happening around the world, the when you look at the global economy. But at the same time, like you said, that there's been volatility in our markets, whatever may be the reasons. So I want to ask you one question, that for the investors who probably want to are looking for other revenues for investment in terms of equity investment. So would you say that right now, like the US markets are doing pretty well comparatively, what are the options for domestic investors? Can they move out? Can they invest in markets overseas? If so, how can they do it?
0: See, Anubha,
2: and is it advisable also?
0: See Anubha, in my view, it's not very easy to track every market, right, especially the overseas market. Yes, you are absolutely right that if you look at markets outside, US markets have done fairly well. Even Kospi has done well. South Korean market has done well. So there are other markets also where, yes, investors are getting good money. But I would say for our domestic investors, especially for retail investors, they should have faith in the Indian markets.
2: Right.
0: Because as I said earlier also, our economic fundamentals are completely sound, so there's nothing to worry. Yes,
2: this is not to take away from our domestic market or our indices, it's like in addition to that.
0: I agree, but yes, you can obviously hedge your
2: bets.
0: Yeah, but in a way I would say for a retail investor it's not very easy to track every market, and every market requires different kind of mindset and knowledge sphere. So I would say stay put in our markets, but I would say also plus it's always my view, like if you want to invest in markets, as we say people do through mutual fund, through a systematic investment plan, if you are investing in markets directly, also follow SIP approach, don't go very gung-ho, do it at a very slow pace, slow and in small tranches. So but I would say good times, because markets are falling, they're giving you an opportunity to buy,
2: an entry point also for those who want to spare the money and maybe invest in better blue chip companies. Right,
0: absolutely.
2: What about the GIFT City route for investment?
0: GIFT City route is also good. I wouldn't say that's a bad, because that's obviously you're getting

0: And over you can invest in be staying in India, you can invest in overseas indices. So that's a good option for Indian retail investors or even other investors to go and invest in the GIFT City.
1: Right, but I think the crux of the matter here is, like you said, trust, have faith in your own economy. Our markets are doing pretty well, and I think the most important thing, remain calm and patient.
0: Yeah, what I'm trying to say is, yes, markets are getting impacted, and that's happening.
1: Yes.
0: But don't lose hope. There's nothing to worry. There's nothing has happened in India to which our markets are reacting.
1: Right.
2: सिद्धार्थ, एक छोटा सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा. अगर आंकड़ों की हम फिर से बात करें तो लगभग 1,000 से अधिक अंकों की 2 दिन में गिरावट हम देख रहे हैं. इतनी तेजी से गिरावट आ रही है, क्या लगता है कि जब मार्केट संभलेगा तो इसी तेजी से हम संभलते हुए दिखाई देंगे?
0: देखिए निखिल, हो क्या रहा है कि जो अनिश्चितता है वो काफ़ी हद तक अब निश्चित हो गई है, और
2: जी
0: दिनों दिन चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं. चाहे वो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो, ईरान की तरफ से रोज़ समझौते की बात आती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ और, उनकी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आता है, उसमें और नए नए एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ रही. साथ ही साथ मैं आपका जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने एक दो अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि जो सप्लाई शॉक्स हैं या जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं उनका इंतजाम करना भी आसान नहीं है. उनको फ्रेट, उनको लाना फ्रेट, और साथ साथ उनके इंश्योरेंस, तो इन सब चीजों में काफी अनिश्चितता और चैलेंजेस आ रहे हैं. तो आने वाला समय और अनसर्टेनिटी वाला हो सकता है. साथ साथ आप देखेंगे सप्लाई डिसरप्शन की वजह से मेटल की प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, उसका कहीं ना कहीं बाजार पर भी असर पड़ रहा है.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. नई दिल्ली में इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने के लिए लिया गया है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए 675 रुपए प्रति क्विंटल की गई है. इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
3: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे. आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं.
2: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पहल भारत के अंतर्राज्यीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी. इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हो सकेगा. सिद्धार्थ, ऐसे समय में जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ग्लोबली भी और इंटरनेशनल भी, साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी कई सारे असर देखे जा रहे हैं. ऐसे में इस तरह के फैसले लेना आपको क्या लगता है, कैसा निर्णय है ये, किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी?
0: नहीं, जहाँ तक कैबिनेट का ये फैसला है एमएसपी का, ये मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, जब से वो प्रधानमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो तब से हमने इस बात पे खास ध्यान दिया है कि जो एमएसपी हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे सरकार किसान से उसकी उपज खरीदती है, उसको कम से कम, जैसा मंत्री जी ने भी बोला, कि 50% कॉस्ट प्राइस के ऊपर एमएसपी रखने का हमने एक निर्णय लिया और उसको हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं. और इसका, इसमें सबसे बड़ा कारण है ना केवल अनाज, ना केवल रबी में जैसे खासकर गेहूं होगी जो क्रॉप, केवल उसके लिए नहीं, साथ साथ जो दलहन है, जो दालें हैं, और उसके साथ साथ तिलहन, क्योंकि ये दो ऐसे आइटम्स हैं जिस पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है. हम चाहते हैं कि किसान डाइवर्सिफाई करे, केवल चावल या धान या गेहूं से हटके दलहन और तिलहन की तरफ जाए, क्योंकि ये हम भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं. तो मुझे लगता है जो आज जो एमएसपी जो अनाउंस की है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को इस बात का श्योरिटी मिलेगी कि जो वो जो उनकी लागत है उसकी भी वसूली होगी, उससे कहीं ज़्यादा उनको आज एमएसपी अनाउंस की गई है.
1: एंड सिद्धार्थ, आई थिंक रिपल इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी होपफुली अ बूस्ट इन रूरल डिमांड एज वेल वंस द एमएस यू नो this is implemented.
0: Yeah, Anubha, because there has been pressure or uncertainty surrounding, especially because of the El Nino effect and the monsoons, which have now more or less we have covered the entire country. But still, so because of that uncertainty also, I think announcing MSP, also announcing it well in advance,
1: yes,
0: gives the farmer a confidence that yes, the government is standing by them. And I think another installment of PM Kisan would also be coming, I think, just before the festival, so that would also give them the necessary boost.
1: Siddharth, I want to have your comment on this other initiative as well, where the government has approved the Green Energy Corridor, the third phase of it. So basically, while the Modi government has been emphasizing a lot and focusing a lot on producing green energy, clean energy, but the transmission of it is not so easy. How do you see, in that perspective, how do you see this approval for the Green Energy Corridor?
0: I think very important step, especially the kind of money that we are putting into it, almost 2 lakh crores spread, and the corridor is slated to be completed by 2033.
1: Yes.
0: Especially the solar and the wind energy produced has to reach to the
1: yes.
0: consumer. Plus, also we are also trying to ensure that we can store it in batteries, especially
1: yeah.
0: for times when there are power cuts or we do not have the renewable source of energy available.
1: Right. Let's move on to the next story. The center has approved procurement worth around 5,548 crore rupees at minimum support price under the price support scheme for major pulses and oil seeds in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for the Kharif marketing season 2026-27. The Agriculture Ministry has said that the decision has been taken to protect farmers from a fall in market prices and ensure remunerative returns for their produce. Moving on, SEBI Chairman Tohin Kanta Pandey has said that the portfolio management industry must focus not only on growth, but also on building investor confidence, transparency and accountability. Addressing the annual conclave of the Association of Portfolio Managers in India in New Delhi today, Mr. Pandey said assets under management of portfolio managers had grown to about 9.2 lakh crore rupees by August this year, from around 1.4 lakh crore rupees at the end of the financial year 2016. Siddharth, what would you say about the SEBI chairman, when he says that portfolio management industry must focus not just on growth, but also in building investor confidence? And before you comment on that, let's listen to what he said.
4: The number of registered portfolio managers has also increased significantly, from around 200 a decade ago to over 530 today. The number of discretionary PMS clients has grown nearly fivefold, from about 46,000 to around 2.2 lakh. These numbers tell us something important. PMS is no longer a small corner of our asset management landscape. It's becoming an increasingly important part of it. Our regulatory approach has also evolved with industry. Over the years, we have sought to strengthen transparency and comparability.
1: That was SEBI Chairman Tohin Kanta Pandey. So Siddharth, I'll come back to you. As he's saying, it's very important to build investor confidence and accountability. What would you say to that?
0: Basically, I think what he's trying to say that each time we have a lot of complaints or issues coming up especially from the investors. So I think he's pushing for is more and more transparency, building
1: right.
0: the confidence of the investors, that he's assured that nothing wrong goes wrong with his money.
1: Right.
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इस फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर छूट के बारे में NPCI ने कहा है कि UPI के जरिए किए गए ऐसे पेमेंट खास फ्लैट रेट छूट के लिए योग्य हैं। ₹2,000 से ज्यादा के इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए प्रतिशत आधारित चार्ज के स्थान पर प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। यह भी कहा गया है कि रियायती मॉडल ये पक्का करता है कि ज्यादा कीमत वाले सालाना या छमाही प्रीमियम पेमेंट करने वाले पॉलिसी धारकों को भारी बैकएंड फीस की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बदले में इंश्योरेंस कंपनियों को कम लागत वाले डिजिटल कलेक्शन से फायदा होगा, जिससे उन्हें पूरे भारत में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: Meanwhile, the All India Consumer Products Federation and the All India Mobile Retailers Association have decided to withdraw their proposed call for a No UPI Day on Friday. The decision was taken following a meeting between a delegation of around 20 senior trade leaders led by BJP MP and Secretary General of the Confederation of All India Traders, Praveen Khandelwal, and Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi. During the meeting, the Finance Minister assured the delegation that the government remains committed to promoting digital transactions while safeguarding the interests of all stakeholders. The delegation expressed confidence that continued dialogue between the government and trade bodies would help evolve a practical and sustainable framework to further strengthen India's digital economy. Let's move on to the next story. India registered manufacturing sector recorded strong growth in financial year 2025, with industrial output rising 7.81% and total employment increasing about 7.2% over the previous year. According to the annual survey of industries data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today, the total number of establishments in this sector increased from 2.6 lakh in financial year 24 to 2.67 lakh in financial year 25, representing a growth of 2.64%. Meanwhile, total emoluments paid to the workforce also increased by over 12% in 2024-25 on an annual basis. Siddharth, a very brief comment in this increase in the manufacturing sector.
0: I think manufacturing from day one has been the focus of this government, and I think that is why we have launched product-specific manufacturing initiatives also. And one of the glaring examples or the examples of big success is mobile phones, where we are exporting exponentially. There is a rise in exports from India, and also mobile phones which are manufactured in India. Same way electronics, electrical equipments, and government of the day is heavily pushing on this. Now another example is semiconductors, which would be we would soon start seeing that India emerges as one of the biggest players in semiconductors. So I think that's a big initiative. And also, why focus on manufacturing? Because that is the place from where we would get large scale employment.
1: Right.
2: एशियाई बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 1.9% से ज्यादा ऊपर चढ़कर, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी आधा प्रतिशत नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में जर्मनी का डेक्स 0.3% लुढ़क कर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 100 लगभग स्थिर था। आर्थिक मोर्चे पर ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स के ताजा अनुमान के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की सकल घरेलू उत्पाद में 0.5% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी का आंकड़ा शुरुआती अनुमान से 0.1% अंक अधिक है। ये 2026 में जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान जीडीपी में हुई 0.6% की वृद्धि के बाद हुआ है। सिद्धार्थ, इस खबर का कैसा असर आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से?
0: नहीं, देखिए, जहाँ तक ग्लोबल ग्रोथ है, वो तो इस साल अगर जो एस्टिमेट्स हैं, तो ये एस्टिमेट है कि तकरीबन आधा फीसदी जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वो इसका सीधा कारण है, जब से ट्रंप साहब आए हैं, एक तो टैरिफ उन्होंने अनलीश किया, साथ साथ जब से वेस्ट एशिया, तो हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम जो है एकदम उबाल पर है, और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं महंगाई पर हो रहा है और सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन आएगा। फिलहाल ये आंकड़ा थोड़ा हमें मतलब भरोसा देता है, बेहतर है थोड़ी जो ग्रोथ दिख रही है दूसरी तिमाही में यूके में, बट ओवरऑल देयर इज प्रेशर। हालांकि अमेरिकन आज इन्फ्लेशन का भी डेटा आना है अमेरिका में, लेकिन अगर हम वहां का जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी एक और डेटा आना है जो उनके सरकारी कंपनियों में या जो सरकारी जो संस्थान है उनमें एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट रहा है वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी तक और कंजम्पशन भी अभी अमेरिका बाजार में ठीक ठाक है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल एक डिक्लाइन वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में इस साल निश्चित है।
1: Let's move on to the US markets. US stock markets ended slightly lower yesterday as bond yields continued their rise ahead of the inflation data. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average dropped 0.3%, the S&P 500 lost 0.2%, and the Nasdaq Composite dipped 0.1%. Siddharth, a very quick comment. Even though we see that yesterday the markets ended slightly lower, but overall, if you look at the US markets, they've been performing pretty well. And despite all the things that are happening? You know, you just mentioned the factors. What is it that's happening? You know,
0: I think US markets are basically being driven by the artificial intelligence euphoria. So I think that is carrying the day for them. Yes, plus also we are seeing also some impacts of tariff investments again coming back to the US, United States. And plus, I think there is also a pause in terms of, or a thaw in terms of their relationship with China after the latest visit of the Chinese premier. But yes, I would say still things need to, we need to wait and watch for next 2-3 months.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today amid stalled talks between the US and Iran aimed at ending the West Asian conflict. Brent crude was trading 0.4% up at $103 US dollars and 5 cents per barrel. West Texas

0: Texas Intermediate crude was trading 1.3% higher at $90.52 per barrel when reports last came in.
1: सिद्धार्थ, ये जो हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि क्रूड ऑयल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, और आपने खुद बोला कि एक उबाल सा देख रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर आना कहां तक हमें किस तरह की स्थिति में ले जा रहा है? और अभी हमने देखा 28 सितंबर को $108 तक भी पहुंच गया था।
2: नहीं, और अगर आप हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन क्रूड बास्केट है जो हम कंज्यूम करते हैं वो तकरीबन $114-120 प्रति बैरल के आसपास है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये, और क्योंकि हम 90% अपना जो है एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है ये चिंता का सबब है, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हॉर्मूज़ या सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है और जो अब आ रहा है बाज़ार में, वो काफ़ी तेज़ी से प्री जो जब युद्ध शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उस लेवल्स पर पहुँच रहा है, उसके बावजूद ये तेज़ी बनी हुई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी सप्लाई एकदम से बढ़ी है, तो हो सकता है उसका कुछ कीमतों पर असर पड़े।
0: और बढ़ते हैं
1: जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% बढ़कर 147,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट्स के अनुसार चांदी की कीमत 0.5% गिरकर 2,20,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, अभी सोने के दाम जिस तरह से उतार चढ़ाव हम इसमें देख रहे, एक स्थायित्व नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये भी सुनने में आता है कि सोने के दाम और लगातार तेजी से बढ़ेंगे?
2: नहीं निखिल, अभी तो थोड़े से दाम नीचे आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी लेवल के आसपास जो है ट्रेड करेगा गोल्ड अभी फिलहाल, और उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स वो किस स्तर पे रहती हैं या किधर जाती हैं, साथ साथ क्रूड ऑयल का क्या होता है और डॉलर की जो वो है वो कितना मजबूत और होता है, तो वो शायद दिशा तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है $400-4100 पर आउंस के आसपास का मुझे लगता है सपोर्ट अभी भी है, उससे नीचे मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, और हमारे यहाँ तो त्यौहार का मौसम आ रहा है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लोग अभी घरों में सोना बहुत बड़े पैमाने पे त्योहारों में खरीदा जाता है।
0: सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यू नो, वी've सीन, कॉमन विजडम सेज दैट व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, यू नो, गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर बिकम सेफ हेवन, एंड सो वन एक्सपेक्ट्स। बट टुडे ऑफ कोर्स वी सी दैट एज ऑफ नाउ द प्राइसेस हैव गॉन अप, बट इन द पास्ट वी've बीन सीइंग अ वेरी क्विक कमेंट दैट द prices are coming down. Do you see it as a good thing for bullion? Very quick comment.
2: See, I don't see it in a, basically the prices of bond yields are hardening, so that is the reason for their immediate coming down, so that right. is the only reason.
1: Siddharth, is karyakram mein shamil hone ke liye aur humse charcha karne ke liye aapka bahut bahut aabhar.
2: Aap dono ko bhi dhanyawad.
0: And before we end, look at the headlines. In Indian stock market, Sensex ends nearly flat. Nifty settles at 22,620. Cabinet approves MSP hike for Rabi crops in 2027-28, and global crude oil prices rise. And that's it in this program. For now, goodbye and namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए

0: 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालेमा अनेजा डैंग। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा। व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिता

0: आए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी, जीएसटी परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में जीएसटी एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए जीएसटी परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
0: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था। तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था।

0: दूसरा मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस। इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में, और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची, या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना, या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं, और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए, और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा, IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया गया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप

0: इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है। इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है, और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
0: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून, पुराने कानून थे, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है, और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है, और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन कानूनों को, खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं, और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जन विश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में, कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर, मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे CA से कुछ गलती हो गई है, तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों को आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या GST ने उसको और भी अलग कर दिया है, क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए। हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
0: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
2: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और 4th जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो 4 लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो एनपीएज हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें आईबीसी की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं, और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: कि अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की भी बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते

0: सर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है, इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेवल में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कॉपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो वो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
1: जी।
2: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221 रुपया 39 पैसा है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज, 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूं उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: आए। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है, कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है। ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
1: जी,
2: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था,
1: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या, अब उसके पास

0: ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई-वॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को और मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने फैसले को स्थगित किया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम

0: लेंटिल्स, रेप सीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली ITMS को अपनी मंजूरी दे दी है। ITMS का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को वास्तविक यातायात स्थितियों के मुताबिक सक्षम बनाकर मौजूदा उपलब्ध सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज नीति अनुसंधान और शासन केंद्र द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना सिर्फ परिवहन में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे ऊर्जा, विनिर्माण और शहरी नियोजन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पीएम ई ड्राइव के सहयोग से भारत एक मजबूत और स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को तैयार कर रहा है। श्री संधू ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाओं और आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान पेरू की संसद का दौरा किया। दौरे में श्री गुप्ता ने पेरू के सीनेटर विक्टर सेफरिनो फ्लोरेस रुइज के साथ चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीनेटर फ्लोरेस रुइज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक द पावर विदिन भी भेंट की। इस संवाद ने भारत और पेरू के बीच आपसी समझ और सहभागिता को मजबूत करने में संसदीय और संस्थागत आदान प्रदान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस दौरे का केंद्र संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित विषय रहे। ये संवाद दोनों विधायिकाओं के बीच व्यापक स्तर पर संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान का हिस्सा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा को जानो के अंतर्गत आज श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना JVP के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन और जनसेवा से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस दौरान दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कार्य पद्धतियों और 10 प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में इसी तरह की पहल और शासन से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित विकास भवन 2 में एआई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एआई और उभरती हुई नई तकनीक की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारियों को अपने रोजमर्रा के काम में एआई को अच्छी तरह समझने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। साथ ही गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के जरूरी मानकों को बनाए रखना भी उन्हें सुनिश्चित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर केंद्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सफाई मित्र अपने परिश्रम और सेवा भाव से हर दिन दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनकी कर्म निष्ठा ही स्वच्छ दिल्ली की शक्ति है।
4: स्वच्छता जितनी आपकी जिम्मेवारी है उतनी ही दिल्ली के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, हर एक अधिकारी की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेदारी है और मिल करके दिल्ली को सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर बनाना यही हमारा ध्येय है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को आपात स्थिति में तेज, प्रभावी और पेशेवर अग्निशमन और बचाव सेवा उपलब्ध हो।
5: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ फायर सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और तेज प्रतिक्रिया क्षमता से लैस करना आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली फायर सर्विस की क्षमताओं को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य दिल्लीवासियों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इसी व्यापक संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ तेज प्रतिक्रिया क्षमता, रणनीतिक तैनाती और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दिल्ली की आपातकालीन सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गीतांजलि फायर स्टेशन के संचालन के साथ दिल्ली फायर सर्विस के कार्यरत फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यहां 16 अग्निशमन कर्मियों के साथ एक छोटा फायर टेंडर, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल और आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरण उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: भारतीय रेल द्वारा जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जल की गुणवत्ता के अंतिम स्तर पर जांच तक सीमित न रहकर यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलपति, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य महाविद्यालयों के कैंपस और उसके आसपास छात्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा आईडीईएस के 2025 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने प्रोबेशनरी अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि देश भर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी में आकस्मिक समाचार संपादक और वाचक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं newsonair.gov.in से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में एक बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों, कार्यान्वयन और अनुपालन उपायों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति बनी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में

0: ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण की भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी। इससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी चार कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त कर दिया जाएगा। जालंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आज नई दिल्ली में INDI गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि INDI गठबंधन के प्रस्तावित मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं बल्कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और कैनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 168 रन बना लिए थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defence, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
0: Rabi season ki MSP badhane se.
3: The increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and effort.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त जो वक्त है वो कह रहा है प्रोग्राम मधुरिमा को शुरू करने का। और आज मधुरिमा में एक और राग के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने सभी सुधी श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए। साथ ही है मधुर फिल्मी संगीत।

आज जिस राग की हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम मधुरिमा में, वो राग है राग तोड़ी, जिसे मियां की तोड़ी भी कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
7: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
8: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
7: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
8: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा, और मधुरिमा में जिस राग की हम बात कर रहे हैं वो है राग तोड़ी। राग तोड़ी की जाति संपूर्ण संपूर्ण है, आरोह और अवरोह दोनों में सात सात स्वर होते हैं। वादी स्वर जो है वो धैवत है और संवादी स्वर गांधार है। इसके गायन का जो समय है वो दिन का दूसरा प्रहर है, यानी सुबह है लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रकृति इसकी गंभीर और शांत है, जिसमें भक्ति करुणा और विनती का भाव झलकता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। और मधुरिमा में आज जिस राग की हम बात कर रहे हैं वो है राग तोड़ी। राग तोड़ी की स्वर संरचना की यदि बात की जाए तो इस राग में ऋषभ रे, गंधार ग और धैवत ध कोमल स्वर तथा मध्यम म तीव्र स्वर प्रयोग होता है। षडज सा और पंचम प शुद्ध स्वर होते हैं। इसमें पंचम स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है। आरोह अवरोह की और पकड़ की यदि बात की जाए तो आरोह में सा रे गा मा पा ध नी सा लगते हैं और अवरोह में सा नी धा पा मा ग रे सा। पकड़ ध प मा ग रे सा

राग तोड़ी का गायन का जो समय है वो दिन का दूसरा प्रहर है। हम पहले आपको बता ही चुके हैं, यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक या सुबह 8 से 10 बजे तक भी इसको मान्य किया जाता है। मुख्य विशेषता इसकी यही है कि इसका जो प्रकृति है इसकी वो बहुत ही गंभीर है। इसमें भक्ति और करुण रस की प्रधानता होती है। वादी संवादी स्वर ध धैवत और संवादी ग गंधार होते हैं। इसे मियां की तोड़ी भी कहा जाता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आज मधुरिमा प्रोग्राम में हमने बात की राग तोड़ी की। इस गीत के साथ ही इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करने की अनुमति भी चाहता हूँ।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं प्रशांत कुमार अपनी सहयोगी एकता थानी के साथ आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं।
1: नमस्कार प्रशांत। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
0: एशियाई खेलों के तीरंदाजी स्पर्धा में भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। भारतीय महिला कंपाउंड, मिक्स्ड कंपाउंड और पुरुष कंपाउंड टीम ने रचा इतिहास।
1: नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी ने मिक्स ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
0: मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में जगह बनाई। प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीता।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
0: पुरुष और महिला स्क्वाश टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के 2 पदक सुनिश्चित।
1: और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी। एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत की सुनहरी इबारत लिखी। खेलों की बात करें तो किसी के लिए यह साधना है, किसी के लिए सपना, किसी के लिए जुनून तो किसी के लिए एक चुनौती। लेकिन खेल की परिभाषा चाहे जो भी हो, मकसद एक ही होता है, तिरंगे को दुनिया के खेल के नक्शे पर शान से फहराना।

0: एशियाई खेलों में आज चार बार ऐसा मौका आया जब भारतीय तिरंगा नीले आसमान पर शान से लहराया। हम सलाम करते हैं उन खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को जिन्होंने सही मायने में भारत माता को गौरवान्वित किया।
1: जी हां एकता, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए। अगर हम आर्चरी की बात करें तो जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय महिला कंपाउंड टीम, मिक्स्ड कंपाउंड टीम और पुरुष कंपाउंड टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को पदक दिलाया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय कंपाउंड आर्चरी टीम ने चीन को 234 के मुकाबले 238 से हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
3: पृथिका रेडी, दिस शुड बी इन द बैक विद ज्योति लेफ्ट टू फायर दैट लास्ट एरो फॉर गोल्ड।
4: 7 और मोर गोल्ड इन द बैग, कीप एन आई ऑन द क्लॉक, इट्स 10 टू फिनिश इट। इट्स बीन अ परफेक्ट एंड बाय द इंडियन टीम एंड दे क्लिंच गोल्ड इन एम्फैटिक फैशन।
2: फाइनल में शुरुआत में 30-28 की बढ़त लेने के बाद भारत ने अपनी बढ़त 3 पॉइंट तक बढ़ा ली। पृथिका और ज्योति परफेक्ट रही, दोनों ने पूरे समय 10 अंक बनाए। चीन ने अगले 3 एरो में 2, 10 और 1, 9 अंक हासिल किए। भारतीय तिकड़ी दूसरे रोटेशन में परफेक्ट 10 लगाकर 3 अंक से आगे हो गई। आखिरी 3 एरो में चीन ने भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए 3, 10 लगाए, लेकिन भारतीय तिकड़ी ने सभी 10 लगाकर परफेक्ट अंक किया और 238-234 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं महिला टीम के स्वर्ण जीतने के बाद राजेश जाधव और चिकिता तानिपार्थी की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को एक रोमांचक शूट ऑफ में हराया। फाइनल में मुकाबला 157-157 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद भारतीय जोड़ी ने शूट ऑफ में साउथ कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया।
3: Yes, a 10 for Sahil also. And a 9 it is. That means this is yet another gold for Team India courtesy archery. This is a terrific start for the archers by the archers. Second gold this morning confirmed. Thank you, Sahil Jadhav and Chikita.
2: इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट का कोटा भी हासिल कर लिया है। चिकिता और साहिल ने शानदार शुरुआत की, दोनों तीरंदाजों ने दूसरे एंड में भी बेहतरीन निशाने लगाए, लेकिन मुकाबले का फैसला शूट ऑफ से हुआ। 157-157 से स्कोर बराबर होने के बाद शूट ऑफ में भारतीय टीम ने बाजी मारी और पदक जीत लिया। वहीं कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने भी चीन को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की टुकड़ी ने एक रोमांचक फाइनल में चीन के जियाओ लियाओ, जिदयी लियू और जिंगयू शी को 238-237 से हराकर भारत के कंपाउंड तीरंदाजों के लिए गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की।
3: For India at the Asian Games 2026 was these three gentlemen who gave India the gold. Sahil Jadhav, Kushal Dalal and Ganesh Manirat.
2: भारतीय तीरंदाजों ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए अंक का अंतर सिर्फ 2 कर दिया। इसके बाद भारतीय तिकड़ी ने आखिरी 6 शॉट में बिना किसी गलती के 238 का स्कोर करते हुए पदक जीत लिया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: आइए सुनते हैं इस जीत के बाद ज्योति सुरेखा वेन्नम ने क्या कहा।
5: बहुत खुशी है हमें, आज हमारा फर्स्ट मेडल मैच था आर्चरी में, हमने गोल्ड जीता। हमने एज ए टीम बहुत मेहनत करी है एंड आज सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैच में भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किया एंड अपने 100% दिया, तो हमारा हर शॉट अपना बेस्ट देने का ही कोशिश था।
1: आर्चरी से अब चलते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां भारत ने वहां भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। निशानेबाजी में आज भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता। मिक्स ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को एक और पदक दिलाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: That's another gold for India. What a day, Raman.
7: This edition of the Asian Games for India. Proud moment for the mixed team. Kenan Chennai and Neeru Danda. Gold for India.
8: नीरू और किनान की जोड़ी ने 34 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक देश के नाम कराया। वहीं कतर ने रजत और चीन ने कांस्य पदक जीता। नीरू का इस प्रतियोगिता में ये

0: मुक्केबाजी पर बात कर लेते
1: जी
0: हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने प्रतियोगिता में कम से कम अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है। हालांकि भारतीय मुक्केबाज से देश को गोल्ड मेडल की आस है। लवलीना लगातार 2 एशियन गेम्स में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं।
1: और एकता अगर बात की जाए, भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में उन्हें चीन की यांग चेंगयू से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान की मिसगोना समदोवा पर 5-0 की एकमत जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और फाइनल में जगह बनाने की प्रबल दावेदार के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उधर भारतीय पुरुष मुक्केबाज कपिल पोखरिया को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। कपिल को 90 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के तुर्बेक के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष मुक्केबाज अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं नरेंद्र ने सेमीफाइनल मैच हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नरेंद्र को सेमीफाइनल में ओरलबे ने एक तरफा अंदाज में 0-5 से हराया। वहीं महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की ली शू यू को 5-0 से शिकस्त दी।
0: प्रशांत, अब बात करेंगे महिला हॉकी की।
1: जी,
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। जापान के काका मिघारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से मात देकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई है। 1982 के बाद से महिला हॉकी में अपना पहला एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बनाए रखा है।
1: और एकता, इस नतीजे ने एशियन गेम्स में महिलाओं की हॉकी में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के भारत के 44 साल के इंतजार को खत्म करने की उम्मीद को जिंदा रखा है। भारत पूल चरण में उज्बेकिस्तान को 19-0, इंडोनेशिया को 17-1 और थाईलैंड को 20-1 से हराने के साथ साथ मेजबान जापान को 3-1 और सिंगापुर को 7-0 से मात देकर बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंचा था। अब भारतीय टीम शुक्रवार को फाइनल में चीन का सामना करेगी।
0: प्रशांत, अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ। एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की पुरुष और महिला स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत के लिए 2 पदक तो अब पक्के हो गए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष वरीयता और मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुवैत को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद भारतीय महिला टीम ने भी सिंगापुर के खिलाफ 2-0 की आसान जीत दर्ज की। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत की दोनों टीमें अंतिम 4 में पहुंच गई और स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी हुई हैं। भारतीय पुरुष टीम ने चीन पर 3-0 की दमदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें सूरज कुमार चंद, वीर चोटरानी और वेलावन सेंथिल कुमार ने अपने अपने मैच जीते। दूसरा गेम हारने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की और 34 मिनट में 12-10, 8-11, 11-0 और 11-5 से जीत हासिल की। तन्वी ने शुरुआती सिंगल्स मैच में औ ये ओंग वाई लीन के खिलाफ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। मुकाबला पहले 3 गेम तक बराबरी का रहा, लेकिन चौथे गेम में तन्वी ने बढ़त बनाते हुए 32 मिनट में 11-6, 4-11, 15-13, 11-1 से जीत हासिल की। इसके बाद अनाहत सिंह ने दूसरे मैच में भारत के लिए जीत पक्की की और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: आइए अब चलते हैं कुश्ती की तरफ। एशियन गेम्स में आज सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स के खिलाफ 9-0 से जीत हासिल की। इसी के साथ सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सुनील ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा लिया है। 27 वर्षीय सुनील एशियन गेम्स में 2 ग्रीको रोमन रेसलिंग मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। यह ब्रॉन्ज मेडल उनके कैरियर में एक और अध्याय जोड़ता है, जिसमें पहले से ही 6 एशियन चैंपियनशिप मेडल शामिल हैं। अब सुनील कॉन्टिनेंटल गेम्स में 1 से ज्यादा ग्रीको रोमन मेडल जीतने वाले

0: पहले भारतीय बन गए हैं।
1: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। गुवाहाटी में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच वेस्टइंडीज और भारत के बीच जारी है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 25 ओवर में बिना किसी नुकसान के 250 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 82 गेंद पर 142 रन बनाए और रोहित शर्मा 71 गेंद पर 99 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। कप्तान शुभमन गिल की बात की जाए तो उन्होंने पिछले मुकाबले में भी शतक लगाया था। अभी वे 6 छक्का और 17 चौके लगाकर 173.2 के स्ट्राइक रेट के साथ क्रीज पर मौजूद है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा 71 गेंद का सामना कर 99 रन बनाकर 10 चौके और 6 छक्के की मदद से क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए। उधर भारत की ओर से कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और गुरनूर ब्रार ने 2-2 विकेट हासिल किए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। वहीं जी
0: प्रशांत, क्रिकेट की बात चल रही है तो रैंकिंग की बात भी कर लेते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शतकीय पारी खेलने का इनाम विराट कोहली को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में मिला है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोहली ने एक पायदान की छलांग लगाई है और वह अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कोहली से आगे वनडे रैंकिंग में अब सिर्फ शुभमन गिल हैं, जो पहले एक दिवसीय मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह चौथे नंबर पर बने हुए हैं।
1: और उधर भारत के सुमित नागल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और एशियाई खेलों की बात की जाए तो पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
2: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
3: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
3: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
4: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
2: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक

0: वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया, वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oilseeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees, and wheat by 20

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए, जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव के हिसाब से दिखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है, तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिवीजन या एनुअल रिवीजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यहाँ एक एन्यूमरेशन प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
2: बिल्कुल, क्यों नहीं करें हम? कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 मतदाता और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
2: जी।
3: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ, जब बलराज मधोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस पृष्ठभूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में 2 चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता

0: में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से खिसियानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्षी दल नहीं आए हैं। यानी
1: बिल्कुल
0: विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी
1: जी
0: डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर
1: जी
0: मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अक्षय जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECINET नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं, AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप ERO AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ
1: जी
2: इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले, जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी वमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से, कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया।
1: जी
2: दूसरी बात है कि राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो ये एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी, मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो

0: रिलीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपैंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं, और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे, और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके, नर्चर करके, रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला, उसमें 4-5 आम नागरिक, आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है, और ऐसे भी लेना चाहिए, बात नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं, वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे सेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को, और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिये, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे, और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने मिलाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं, और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है, और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है, अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र

0: में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है?
1: बिल्कुल
0: केरला में सरकार बदली, तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए, अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें? लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम।
1: जी
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, ना कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है,
1: जी
0: क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई। क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का एक कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए। मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला, SIR नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था, उसमें भी करना के आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है, ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये

0: एफआईआर का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए, कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं, हम और एसआईआर के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा 18 साल के हो चुके हैं,
0: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था, स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को, जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा, उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें एसआईआर में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और एसआईआर के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्टोरल रोल को, आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्टोरल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्टोरल रोल, अपडेटेड, करेक्टेड, क्लीन्ड इलेक्टोरल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए, उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल्स ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप डीओ के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है, अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आग रहता है, चाहे 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
1: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
2: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी एसआईआर प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को

0: जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खास तौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
1: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
6: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
5: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में

0: मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पेट्रोलियम संशोधन विधेयक 2026 के मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार सभी हितधारक और आम जनता इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव मंत्रालय की वेबसाइट डाक या ईमेल के माध्यम से 30 अक्टूबर से पहले भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन DIBD ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में CAG भाषणी अनुवाद का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म AI सक्षम अनुवाद समाधान है, जिसे भाषणी द्वारा CAG के आधिकारिक दस्तावेजों और लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट के अनुवाद में सहायता के लिए विकसित किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue hain.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor GEC Phase 3 scheme. Prime Minister Narendra Modi has said the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the MSP for Rabi crops for 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage, while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation, 526 kilograms of methamphetamine and heroin were seized from the boat, which was within India's exclusive economic zone. In a social media post, Mr. Shah highlighted that the Modi government is determined to shield its youth from the scourge of drugs. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning four gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added two more bronze medals to the tally, with Priya Ghangas and Kapil Pokharia finishing on the podium today. Vice President C.P. Radhakrishnan congratulated India's archers for a clean sweep of gold medals in all three compound team events. The Vice President also congratulated Neeru Dhanda and Kainan Chennai for winning gold in the trap mixed team event. And with that, we end this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। भारत और दोहा ने भारत में कतर के 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तेज करने पर भी चर्चा की। फ्लाई दुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट ने कॉकपिट में हुई कहासुनी के बाद सह पायलट को काबू कर बड़ा हादसा टाला। विमान की सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग हुई। अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों की वापसी औपचारिक रूप से पूरी की। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ 12 साल पुराना सैन्य अभियान समाप्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति बनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने भारत और कतर में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने कतर की 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता को लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में तेजी लाने पर भी चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। डॉक्टर अल सईद ने 2025 में अपनी

0: भारत यात्रा का स्मरण किया और कहा कि भारत में कई बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे और बिजली में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर बल दिया, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। दुबई से तेल अवीव जा रहे एक विमान ने आज सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। विमान में कथित तौर पर एक पायलट पर चाकू से हमला किया गया था। फ्लाइट FZ1073 में कई इजरायली नागरिकों सहित लगभग 180 यात्री सवार थे।
1: इसराइल के मीडिया के अनुसार यात्रियों ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ान के दौरान तेजी से नीचे उतरा और एक मिनट से भी कम समय में लगभग 17,000 फीट पर आ गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक पायलट ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया। इसराइल के अधिकारियों के विमान से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहने के बाद लड़ाकू विमान को रोकने के लिए भेजा गया। बाद में विमान से संपर्क स्थापित हो गया और वह तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली और घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और इसराइल के यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: फ्लाइट दुबई की फ्लाइट में भारतीय पायलट ने कॉकपिट में हुई कहासुनी के बाद सह पायलट को काबू कर बड़ा हादसा टाला। विमान की सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने इराक से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। इससे बगदाद के साथ हुए समझौते के तहत इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ 12 साल पुराना सैन्य हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। दशकों तक अमरीकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद इराक के लिए यह वापसी एक नए चरण की शुरुआत है। ईरान समर्थित समूह ने अमरीकी सेनाओं की वापसी का स्वागत किया है, लेकिन इराकी कुर्दिस्तान के अधिकारियों और निवासियों को डर है कि अमरीकी सेना के जाने से सुरक्षा में कमी आएगी। इससे इस्लामिक स्टेट के आतंकी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 9वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक आज भारत द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और सेशल्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि सदस्य देशों ने पिछले वर्ष 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की। उन्होंने 2025-26 के लिए सहयोग और गतिविधियों के रोड मैप की भी समीक्षा की और सहयोग के 5 स्तंभों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन में सदस्य देशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को सराहा। मंत्रालय ने कहा कि सदस्य देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को और मजबूत करने तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत में अपनी अस्थायी साझेदारी को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रणनीतिक मामलों के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भानु की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने 406 रन के लक्ष्य को भारत ने 39 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। भारत और दोहा ने भारत में कतर के 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तेज करने पर भी चर्चा की। अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों की वापसी औपचारिक रूप से पूरी की। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ 12 साल पुराना सैन्य अभियान समाप्त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. New Delhi and Doha review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India, also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Indian pilot of Fly Dubai flight helps prevent disaster by subduing co-pilot after cockpit altercation. Plane makes emergency landing in Saudi Arabia. US formally completes withdrawal of troops from Iraq, ending 12-year military mission against Islamic State group. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with the US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Finance Minister Nirmala Sitharaman has urged Qatari businesses to actively explore trade and investment partnerships with India and further strengthen bilateral economic ties. Addressing a business roundtable of the Qatari Businessmen Association in Doha, she highlighted India's strong economic growth, rising investment and record gross FDI inflow of over $94.5 billion in financial year 2025-26. She also noted Japan credit rating's recent upgrade of India's long-term issuer rating. The two sides also discussed implementation of Qatar's $10 billion investment commitment, establishment of a Qatar Investment Authority office in India, and accelerated engagement on the bilateral investment treaty and free trade agreement negotiations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu today said that Saudi authorities have arrested the pilot of a Fly Dubai flight who allegedly stabbed another pilot and attempted to crash the aircraft carrying Israeli passengers. Mr. Netanyahu said passengers and crew members managed to subdue the attacker, preventing what he described as a major disaster. He praised those on board for their courage and quick response, saying they had saved many lives. The incident occurred on a commercial flight travelling from the United Arab Emirates

यही तो प्यार की खूबसूरती है ना, कभी हंसी कभी आंसू, कभी किसी की याद और कभी किसी का इंतजार। जी हाँ, लेकिन प्यार की कहानी में खूबसूरत मोड़ तब आता है, कब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हर श्रृंगार में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ रितिका, और ये जो गीत आप सभी ने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ और नदीम श्रवण का संगीत, और इस गीत को लिखा समीर ने, और फिल्म कयामत। तो दोस्तों, बात हो रही थी प्यार की, प्यार के खूबसूरत मोड़ की, जब कोई चुपके से दिल में उतर जाए और पता ही ना चले कि कब दिल उसका हो गया, है ना। कुछ ऐसा ही है हमारे अगले गीत में, जहां कोई दिल चुरा कर ले जाने

बरसात फिल्म से आपने ये खूबसूरत गीत सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर का लिखा ये गीत, और फिल्माया बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना पर।

दोस्तों कहते हैं कि दिल भी बड़ी अजीब चीज़ है, किसी को देखते ही अपना बना लेता है और फिर उसी के बिना रहना मुश्किल कर देता है। लेकिन अगर साथ में प्यार हो तो अकेलापन भी शायद उतना नहीं सताता, है ना? क्योंकि जब दिल में किसी की मौजूदगी हो तो तन्हाई में भी एक खूबसूरत सी महफिल सज जाती है।

बिल्कुल आकाशवाणी दिल्ली का अगर साथ हो, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड का चैनल, तो खूबसूरत गीतों का तो हमेशा साथ यूं ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म कयामत से कयामत तक का, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज, आनंद मिलिंद का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। तो दोस्तों, छोड़े जाती हूँ आपको अगले इस गीत के साथ। और जी हाँ, 11 बजे समय रहेगा समाचार का, और हर श्रृंगार में आज बस इतना ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते निखिल, गुड इवनिंग अनुभा।
1: सबसे पहले हेडलाइंस अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स नियरली फ्लैट, निफ्टी सेटल्स एट 22,620। कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी हाइक फॉर रबी क्रॉप्स इन 2027-28। And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ। निफ्टी 22,620 पर पहुंचा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027-28 में रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: And a disclaimer for our listeners, before we begin with the main stories, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक यानी कि 0.42% नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। मासिक आधार पर सेंसेक्स इस महीने 5.8% लुढ़का जबकि निफ्टी 6% गिर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं आया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की तेजी दर्ज हुई। इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट स्तर पर खुले क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल यील्ड को लेकर की चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क रहे। सेंसेक्स ज्यादातर समय बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा जबकि निफ्टी में उतार चढ़ाव होता रहा। बढ़त बनाए रखने में असफल रहने के कारण कारोबार के आखिरी घंटे में दोनों सूचकांक नीचे आ गए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the third straight session today. The Sensex settled nearly flat, down by 49 points to close at 72,480. The Nifty fell by 96 points or 0.42% to settle at 22,620. On a monthly basis, the Sensex shed over 5.8%, while the Nifty was down 6% in September. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index remained unchanged, while the Small-Cap 100 Index rose 0.3%. Markets opened on a flat note this morning as investors remained cautious amid volatile crude prices,

0: and concerns over global yields. The Sensex stayed in positive territory for most of the session, while the Nifty swung between gains and losses. Failing to hold on to those gains, the indices edged lower in the final hour of trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल 2.3%, सन फार्मा 2.1% से ज्यादा और टाइटन 2% गिर गए. इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक 2.9%, आईसीआईसीआई बैंक 2.3% और इंडिगो 2% बढ़े.
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged higher. Among the top gainers, Realty jumped 1.4%. Mid-small private banks rose 1% and BankEx added 0.7%. In contrast, hospitals tanked 5%, healthcare lost over 2.3%, and consumer durables dropped over 1.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,232 companies declined. Shares of 2,144 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
1: Nifty 50 May. छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को आज शामिल कर लिया गया है. और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपये पर बंद हुआ. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैंने जो भी अपने श्रोताओं को बताया कि निफ्टी 50 में छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को शामिल किया गया, इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी दें, कैसे होता है ये?
2: नहीं देखिए, जो निफ्टी का 50 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है, और ये मान के चलें कि जो 12-13 सेक्टर्स की जो 50 कंपनियां वो सभी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कह सकते हैं. और हर 6 महीने पे इसका एक बार जो है रिविज़न होता है इंडेक्स का, मतलब उसका एक रिविज़न होता है. नेसेसरी नहीं है कि कोई कंपनी निकले या आए, लेकिन उसको रिव्यू किया जाता है. और इसमें होता क्या है कि जो 6 महीने का जो एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का होता है, जो कि शेयर्स जो कि ट्रेडेबल है. फ्री फ्लोट शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर जो खरीदे और बेचे जा सके, ना कि वो शेयर्स जो कि प्रमोटर के पास हैं. तो ऐसे शेयर्स जो कि ट्रेडेबल हैं, उसके बेसिस पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है, उसके बेसिस पे ये फैसला होता है कि किसी कंपनी को बाहर ले जाना है या अंदर लाना है. और जो अंदर आने वाली कंपनी है उसका जो सबसे छोटी कंपनी, जो सबसे बाहर जाने वाली कंपनी है, उससे कम से कम 1.5 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए. तो उसी के बेसिस पे अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी का पार्ट होगा. और विप्रो जो है वो ऐसा स्वाभाविक है कि चूंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीजों का वो आया है, तब से उसके शेयरों में गिरावट भी आई, तो इस वजह से वो बाहर जा रहा है.
1: सिद्धार्थ, आज की शेयर बाजार की खबरों की अगर बात करें और उस पर आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि निफ्टी में 8 साल में सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया और पिछले 25 साल में सबसे खराब सितंबर ये महीना गया, क्योंकि आज इस महीने का आखिरी दिन है. मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, क्या ये शेयर मार्केट में रिसेशन है या कुछ और है, या वैश्विक जो हमारी चिंताएं हैं, जो वैश्विक गतिविधियां हैं, उनका असर है, क्या कहेंगे?
2: नहीं देखिए निखिल, जहां तक जो शेयर बाजार में आजकल जो देखा जा रहा है, मैं कहूंगा पिछले कुछ समय से जो शेयर बाजार में दबाव है या जो वॉलेटाइल है शेयर बाजार, उसके मुझे लगता है जो ज्यादा कारण है वो देश के बाहर से हैं, जो जैसे कि अमेरिका में आप जो देखेंगे, और अब खाली अमेरिका में ये सीमित नहीं है, चूंकि महंगाई सब जगह बढ़ रही है, तो बॉन्ड यील्ड्स जो कि वो सब जगह बढ़ रही है, साथ साथ जो तेल की कीमतें हैं वेस्ट एशिया, जब से शुरू हुआ ये क्राइसिस अमेरिका और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से, हमेशा से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 के आसपास के ऊपर हैं आज भी, तो वो एक बड़ा कारण है. वेस्ट एशिया जो मैंने बोला, उसके वजह से जो अनिश्चितता आई है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हैं, वो एक कारण है. साथ में एक ये भी चिंता है, और हालांकि हम देख भी रहे हैं अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ऑलरेडी महंगाई को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारा रिजर्व बैंक भी शायद अपनी जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी, उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ा दें. तो मुझे लगता है, और साथ साथ इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने भी जो अभी तक बिकवाली है वो अभी तक बनी हुई है, उसमें मतलब रुकावट नहीं देखने को मिल रही है. लेकिन हमारी बाजार फिर भी मैं कहूँगा जो थोड़ी बहुत स्थिरता, जो स्थिरता हमें दिखती है काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले क्या होता था, जब विदेशी निवेशक जाते थे तो बहुत तेज़ी से बाजार गिरती थी, लेकिन इस अभी देखेंगे आप पिछले 2 सालों में तकरीबन 2.5-3 लाख करोड़ के रुपए के आसपास जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकला ला है. लेकिन उसके विपरीत जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने तकरीबन इसका डबल 4.5 लाख करोड़ के 5 लाख करोड़ के आसपास

0: जो है भारतीय बाजारों में निवेश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि दुनिया में इतनी अस्थिरता है तो शायद उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है।
1: सिद्धार्थ, इट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग दैट यू सेइंग दैट यू नो आवर डोमेस्टिक आवर इकोनॉमी द इंडियन इकोनॉमी इज you know quite stable when you look at whatever is happening around the world, the when you look at the global economy. But at the same time, like you said, that there's been volatility in our markets, whatever may be the reasons. So I want to ask you one question, that for the investors who probably want to, you know, are looking for other revenues for investment in terms of equity investment. So would you say that, you know, right now, like the US markets are doing pretty well comparatively. What are the options for domestic investors? Can they move out? Can they invest in, you know, markets overseas? If so, how can they do it?
0: See, Anubha,
1: and is it advisable also?
0: See, Anubha, in my view, it's not very easy to track every market, right, especially the overseas market. Hmm. Yes, you are absolutely right that if you look at markets outside, US markets have done fairly well. Even Kospi has done well. South, yes, Korean market has done well. So there are other markets also where, yes, investors are getting good money. But I would say for our domestic investors, especially for retail investors, they should have faith in the Indian markets.
1: Right.
0: Because our, as I said earlier also, our economic fundamentals are completely sound. So there is nothing to worry. Yes.
1: This is not to take away from our domestic market or our indices. It's like in addition to that.
0: Yo, I agree. But yes, you can obviously hedge your
1: bets.
0: Yeah, but in a way I would say for a retail investor it's not very easy to track
1: right,
0: every market, and every market requires different kind of mindset and knowledge sphere. So I would say stay put in our markets, but I would say also plus it's always my view, like if you want to invest in markets, as we say, people do through mutual fund, through a systematic investment plan. If you are investing in the markets directly, also follow SIP approach. Don't go very gung-ho, do it at a very slow pace, slow and in small tranches. So, but I would say good time, because markets are falling, they're giving you an opportunity to buy.
1: An entry point also for those who want to, you know, like spare the money and maybe invest in better blue chip companies. Right.
0: Absolutely.
1: What about the GIFT City route for investment?
0: GIFT City route is also good. I wouldn't say that's a bad, because that's obviously you're getting you can invest staying in India, you can invest in overseas indices. So that's a good option for Indian retail investors or even other investors to go and invest in the GIFT City.
1: Right. But I think the crux of the matter here is, like you said, trust, have faith in your own economy. Our markets are doing pretty well. And I think the most important thing, remain calm and patient.
0: Yeah, what I'm trying to say is, yes, markets are getting impacted and that's happening.
1: Yes.
0: But don't lose hope. There's nothing to worry. There's nothing has happened in India to which our markets are reacting.
1: Right.
2: Siddharth, एक छोटा सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा। अगर आंकड़ों की हम फिर से बात करें तो लगभग 1000 से अधिक अंकों की दो दिन में गिरावट हम देख रहे हैं। इतनी तेजी से गिरावट आ रही है, क्या लगता है कि जब मार्केट संभलेगा तो इसी तेजी से हम संभलते हुए दिखाई देंगे?
0: देखिए निखिल, हो क्या रहा है कि जो अनिश्चितता है वो काफ़ी हद तक अब निश्चित हो गई है, और दिनों दिन चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। चाहे वो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो, ईरान की तरफ से रोज़ समझौते की बात आती है लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ और, उनकी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आता है, उसमें और नए नए एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ रही। साथ ही साथ मैं आपका जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने एक दो अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि जो सप्लाई शॉक्स हैं या जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं उनका इंतजाम करना भी आसान नहीं है, उनको फ्रेट, उनको लाना फ्रेट और साथ साथ उनके इंश्योरेंस, तो इन सब चीजों में काफी अनिश्चितता और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आने वाला समय और अनसर्टिनिटी वाला हो सकता है। साथ साथ आप देखेंगे सप्लाई डिसरप्शन की वजह से मेटल की प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, उसका कहीं ना कहीं बाजार पे भी असर पड़ रहा है।
2: जी, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। नई दिल्ली में इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए 675 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
3: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाई

0: क्योंकि मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं।
1: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पहल भारत के अंतर्राज्यीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। सिद्धार्थ, ऐसे समय में जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ग्लोबली भी और इंटरनेशनल भी, साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी कई सारे असर देखे जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के फैसले लेना आपको क्या लगता है, कैसा निर्णय है ये, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी?
2: नहीं, जहां तक कैबिनेट का ये फैसला है एमएसपी का, ये मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, जब से वो प्रधानमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो तब से हमने इस बात पे खास ध्यान दिया है कि जो एमएसपी हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसपे सरकार किसान से उसकी उपज खरीदती है, उसको कम से कम, जैसा मंत्री जी ने भी बोला कि 50% कॉस्ट प्राइस के ऊपर एमएसपी रखने का हमने एक निर्णय लिया और उसको हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं। और इसका इसमें सबसे बड़ा कारण है ना केवल अनाज, ना केवल रबी में जैसे खासकर गेहूं होगी जो क्रॉप, केवल उसके लिए नहीं, साथ साथ जो दलहन है, जो दालें हैं और उसके साथ साथ तिलहन, क्योंकि ये दो ऐसे आइटम्स हैं जिस पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। हम चाहते हैं कि किसान डाइवर्सिफाई करे, केवल चावल या धान या गेहूं से हटके दलहन और तिलहन की तरफ जाए, क्योंकि ये हम भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है जो आज जो एमएसपी जो अनाउंस की है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को इस बात का श्योरिटी मिलेगी कि जो वो जो उनकी लागत है उसकी भी वसूली होगी, उससे कहीं ज़्यादा उनको आज एमएसपी अनाउंस की गई है।
3: एंड सिद्धार्थ, आई थिंक रिपल इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी होपफुली अ बूस्ट इन रूरल डिमांड एज वेल वंस द यू नो this is implemented.
2: Yeah, Anubha, because there has been pressure or uncertainty surrounding especially because of the El Nino effect and the monsoons which have now more or less we have covered the entire country, but still, so because of that uncertainty also, I think announcing MSP, also announcing it well in advance,
3: yes,
2: gives the farmer a confidence that yes, the government is standing by them. And I think another installment of PM Kisan would also be coming, I think, just before the festival, so that would also give them the necessary boost.
3: Siddharth, I want to have your comment on this other initiative as well, where the government has approved the Green Energy Corridor, the third phase of it. So basically, while government while the Modi government has been emphasizing a lot and focusing a lot on producing green energy, clean energy, but the transmission of it is not so easy. How do you see, in that perspective, how do you see this approval for the Green Energy Corridor?
2: I think very important step, especially the kind of money that we are putting into it, almost 2 lakh crores spread, and the corridor is slated to be completed by 2033.
3: Yes.
2: But yes, especially the solar and the wind energy produced has to reach to the consumer. Plus, also we are also trying to ensure that we can store it in batteries, especially for times when there are power cuts or we do not have the renewable source of energy available.
3: Let's move on to the next story. The center has approved procurement worth around 5,548 crore rupees at minimum support price under the price support scheme for major pulses and oil seeds in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for the Kharif marketing season 2026-27. The Agriculture Ministry has said that the decision has been taken to protect farmers from a fall in market prices and ensure remunerative returns for their produce. Moving on, SEBI Chairman Tohin Kanta Pandey has said that the portfolio management industry must focus not only on growth, but also on building investor confidence, transparency and accountability. Addressing the annual conclave of the Association of Portfolio Managers in India in New Delhi today, Mr. Pandey said assets under management of portfolio managers had grown to about 9.2 lakh crore rupees by August this year, from around 1.4 lakh crore rupees at the end of the financial year 2016. Siddharth, what would you say about the SEBI chairman, when he says that portfolio management industry must focus not just on growth, and but also in building investor confidence. And before you comment on that, let's

0: कि क्रूड ऑयल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, और आपने खुद बोला कि एक उबाल सा देख रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर आना कहां तक हमें किस तरह की स्थिति में ले जा रहा है। और अभी हमने देखा 28 सितंबर को $108 तक भी पहुंच गया था।
1: नहीं, और अगर आप हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन क्रूड बास्केट है जो हम कंज्यूम करते हैं वो तकरीबन $114-120 प्रति बैरल के आसपास है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये, और क्योंकि हम 90% अपना जो है एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है ये चिंता का सबब है, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हॉर्मूज़ या सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है और जो अब आ रहा है बाज़ार में वो काफ़ी तेज़ी से प्री जो जब युद्ध शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उस लेवल्स पर पहुँच रहा है, उसके बावजूद ये तेजी बनी हुई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि अभी सप्लाई एकदम से बढ़ी है, तो हो सकता है उसका कुछ कीमतों पे असर पड़े।
2: और बढ़ते हैं
0: जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% बढ़कर 147,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट्स के अनुसार चांदी की कीमत 0.5% गिरकर 2,20,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, अभी सोने के दाम जिस तरह से उतार चढ़ाव हम इसमें देख रहे, एक स्थायित्व तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये भी सुनने में आता है कि सोने के दाम और लगातार तेजी से बढ़ेंगे।
1: नहीं निखिल, अभी तो थोड़े से दाम नीचे आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसी लेवल के आसपास जो है ट्रेड करेगा गोल्ड अभी फिलहाल, और उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स वो किस स्तर पे रहती हैं या किधर जाती हैं, साथ साथ क्रूड ऑयल का क्या होता है और डॉलर की जो वो है वो कितना मजबूत और होता है, तो वो शायद दिशा तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है $400-4100 पर आउंस के आसपास का मुझे लगता है सपोर्ट अभी भी है, उससे नीचे मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ तो त्यौहार का मौसम आ रहा है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लोग अभी घरों में सोना बहुत बड़े पैमाने पे त्योहारों में खरीदा जाता है।
2: सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यू नो, वी हैव सीन, कॉमन विजडम सेज दैट व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, यू नो, गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर बिकम सेफ हेवन एंड सो वन एक्सपेक्ट्स, बट टुडे ऑफ कोर्स वी सी दैट एज ऑफ नाउ द प्राइसेस हैव गॉन अप, बट इन द पास्ट वी हैव बीन सीइंग अ वेरी क्विक कमेंट दैट द prices are coming down. Do you see it as a good thing for bullion? Very quick comment.
1: See, I don't see it in a, basically the prices of bond yields are hardening, so that is the reason for their immediate coming down, so that right. is the only reason.
0: Siddharth, is karyakram mein shamil hone ke liye aur humse charcha karne ke liye aapka bahut bahut aabhar.
1: Aap dono ko bhi dhanyawad.
2: And before we end, look at the headlines. In Indian stock market, Sensex ends nearly flat. Nifty settles at 22,620. Cabinet approves MSP hike for rabi crops in 2027-28 and global crude oil prices rise. And that's it in this program. For now, goodbye and namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं रितिका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और बस हमारा अगला गीत

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अंजू आ चुकी हैं स्टूडियो में, निशिगंधा लेकर छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना के वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय ने परिधान, कपड़े और वस्त्र उत्पाद के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्क में छूट योजना को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत मौजूदा दरें और दिशा निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में इस योजना से 15,400 से अधिक निर्यातकों को लाभ मिला। मंत्रालय ने कहा कि योजना बढ़ाए जाने से निर्यातकों को नीतियों में स्थिरता और स्पष्ट मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकंधा। तो चलिए चलते हैं इस सफर में यूं ही धीरे धीरे। रहिएगा मेरे साथ इस खूबसूरत सफर में।

देखो, सुर तुमने दिए, शब्द मैंने पिरोए हैं। सुर तुमने दिए, शब्द मैंने पिरोए हैं, और हम दोनों ने मिलकर ही तो ये ख्वाब संजोए हैं। सुर तुमने दिए, शब्द मैंने पिरोए हैं, और हम दोनों ने मिलकर ही तो ये ख्वाब संजोए हैं। अब इस तराने को कभी खामोश मत होने देना, क्योंकि इस गीत में हमने अपनी जिंदगी के हर रंग खूबसूरती से पिरोए हैं।

सुनो, लोग कहते हैं कि घर ईंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन मेरे लिए मेरा घर सिर्फ तुम हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वही मेरी जन्नत होगी। मुझे किसी आलीशान महल की चाहत नहीं, बस तेरे ही संग सजाना है मुझे अपने घर का आंगन, ताकि जब भी सुबह आँख खुले तो सबसे पहले तुम्हारा ही खिलखिलाता चेहरा मुझे नजर आए। तेरे संग ही सजाना है मुझे इस घर का आंगन, बांधना है तुम्हारे साथ 7 जन्मों का भी बंधन। सजाकर अपनी उम्मीदों के खूबसूरत दिए महकाना है इस महकती हुई खुशियों से अपना जीवन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि समय हुआ है 12:32 और 32 सेकेंड। कार्यक्रम है निशिगंधा, अंजू है आपके साथ।

लाखों की इस भीड़ में तुम्हारा मुझसे टकराना कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना। लिखा था खुदा ने इस रिश्ते को जन्म जन्म का बनाकर, तभी तो मुमकिन हुआ हमारा एक दूसरे का होना।

0: सूखे हुए पत्तों में जैसे जान आ गई और मेरी सोई हुई तकदीर में उड़ान आ गई। तेरे आने से आई है जिंदगी में बहार, जैसे हर एक धड़कन अब तुम्हारी गुलाम सी हुई।
1: शील, शील कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

नजरें तरसती हैं जिसे देखने को बार बार, नजरें तरसती हैं जिसे देखने को बार बार, तुम वही खूबसूरत और हसीन ख्वाब हो, ढूंढने से भी ना मिलेगा कोई तुमसा इस जमाने में, तुम मेरी इस छोटी सी दुनिया में सबसे नायाब हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, एक कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2026 को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हुआ है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रसंस्करण केंद्रों से प्रदेश के 80 से अधिक वितरण केंद्रों तक बीज पहुंचाए जाएंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मेरी आंखों में पढ़ ले जो ख्वाब बुने हैं मैंने तेरे लिए। मेरी आंखों में पढ़ ले जो ख्वाब बुने हैं मैंने तेरे लिए। मेरी खामोश तमन्नाओं को तू जान ले बस मेरे लिए।

तेरी जुल्फ की छांव में अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तेरी आंखों के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कबूल करता हूँ सरेआम इस महफिल में आज कि तेरी इस कातिल सादगी का

आसान नहीं है किसी की याद में रातों को जागना, खुद को भूलकर किसी के ख्वाबों में ही बहना। नसीहत देने वालों, कभी तुम भी किसी से मोहब्बत करके देखो, तब जानो कि क्या गुजरती है इस नादान दिल पर।

गमों को पीछे छोड़कर आज दिल खोलकर मुस्कुराओ संग मेरे। गमों को पीछे छोड़कर आज दिल खोलकर संग मुस्कुराओ संग मेरे। उठाओ सुर और आज गाओ झूमकर संग मेरे।

खत्म करते हैं ये रोज रोज का तड़पना एक दूजे के लिए, खत्म करते हैं ये रोज रोज का तड़पना एक दूजे के लिए। चलो आज फिर से एक दूसरे के लिए हम अजनबी बन जाते हैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में

0: शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए और चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दिल्ली में इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष सितंबर में दिल्ली का मासिक औसत AQI 102 रहा, जबकि 2025 में ये 105 था। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक की अवधि में दैनिक औसत AQI 200 से कम रहने वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कल इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत में मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। इसके जरिए कुवैत के मीडिया को भारत, भारतीय दूतावास की गतिविधियों और भारत कुवैत संबंधों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारत की तकनीक, डिजिटल क्षेत्र, आर्थिक विकास और नई उपलब्धियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 233 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। दोनों ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए 255 रन की साझेदारी की। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said The decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 475

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:11:07। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है रात सुरमई। एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का स्वागत और नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

इश्क का ये खेल किसी एक का नहीं है मेरे हमसफर। इश्क का ये खेल किसी एक का नहीं है मेरे हमसफर। साफ नजर आता है कि ये बेकरारी दोनों तरफ है।

न तुम्हें नींद आती है न मुझे चैन आता है। हवा का हर एक झोंका तुम्हारा ही पैगाम लाता है। छुपाने से नहीं छुपती दिल की ये सुलगती हुई आग, छुपाने से नहीं छुपती दिल की ये सुलगती हुई आग कि साफ दिखता है बेकरारी दोनों तरफ है।

किताब का कोई पन्ना खोलूं या आईने में खुद को देखूं, हर अक्स में हर लफ्ज में बस तुम्हें ही लिखा पाऊं। अब इसे मेरी दीवानगी कहो या मेरी मोहब्बत का असर, कि तुम मेरी हर दुआ में बस याद ही आते रहते हो।

दोस्तों, अब जाने का वक्त आ गया है और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगला कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके साथ वंदना। कार्यक्रम होगा हमराही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अब तक

0: तटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में कॉलेजों और आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट, CCTV और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है, जिससे समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, बाईपास और 4 और 6 लेन वाली सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
1: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से
3: द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर द रबी सीजन विल ब्रिंग एन एडिशनल 84,263 करोड़ रुपीस टू आवर फार्मर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स. एमएसपी इज डिटरमाइंड थ्रू अ वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस. द न्यू एमएसपी रेट्स

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून कर ही लिया है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड चैनल और समय हो चला है हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत सुनवाने का। और साथ ही इन गीतों के मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।
1: सिखा दूँ?
2: सीखना।

0: उपासना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब सुन लेते हैं ये बातों भरा गीत।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना

बातों बातों में। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, अमित खन्ना की रचना थी और राजेश रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे जीना तेरी गली में फिल्म से, गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ है, रविंद्र रावल की रचना है और बाबुल बोस का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत आंधी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गुलजार ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है आरडी परमर ने।

दोस्तों, प्रेम कहानी में कोई ना कोई परेशान होता तो है। जब दोनों दोस्त यह समझने लगते हैं कि उसकी परेशानी मेरी परेशानी है, तब यह प्रेम कहानी को मंजिल मिल जाती है और वो मुश्किल सफर भी आसानी से निकल जाता है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, हम राही कार्यक्रम में युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर। और अब अगला गीत।

पर्वत के पीछे, बहुत ही सुंदर गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना। और अब अगला गीत, ये धुन सुनकर आप पहचान जाएंगे कि ये कौन से फिल्म का गाना।

चरस फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, अगला गीत दिल से दिल को पुकार रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है?

किसने कहा कि कोई जा रहा है या आ रहा है? कोई नहीं जा रहा। ज्वेल थे फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी SD बर्मन ने।

दोस्तों हमरा ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ। और कार्यक्रम के आखिर में अब सुन लेते हैं जंगली फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गायक हुआ। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।

दोस्तों, ये थी आज के कार्यक्रम की आखिरी रचना। जल्द ही हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। परीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है जिसमें समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, बाईपास और 4 और 6 लेन वाली सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। कार्यक्रम अरुणिमा लेकर आपके समक्ष गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभिमान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की मनोहर उदास की आवाज में। मजो सुल्तानपुर की रचना थी, एस डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, आपके मनपसंद गीत चल रहे हो तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। और कई बार ऐसा होता है कि गीत आपके मन में चल रहा होता है और वही सुनने को मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा हो जाए।

परवरिश। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा था दत्ताराम वाडेकर ने। अगला गीत आप सुनेंगे ममता फिल्म से। गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी ने अपने कलम से लिखा है और धुन तैयार की है रोशन ने।

दोस्तों ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अरुणिमा कार्यक्रम में गीत चल रहे हैं और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

खानदान फिल्म से अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे लैला मजनू फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत है और तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

और ये गीत उनमें से ऐसा ही है। आज भी ऐसे गीत हमें अच्छे लगते हैं और हमें गुनगुनाने पर भी बहुत अच्छा फील होता है।

अनुपमा। इस फिल्म से गीत सुना आशा भोंसले का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी हेमंत कुमार ने। दोस्तों अब अगला गीत आप सुनेंगे जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और नंदा का गाया हुआ है। आनंद बख्शी ने अपनी कलम से सजाया है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

ऐसी प्यार की कहानियां भी कितनी अच्छी लगती हैं, जहां हम प्यार में खुद को अनजान बना बैठते हैं।

0: सफर फिल्म से गीत आपने सुना किशोर कुमार का गाया हुआ, इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अगला गीत आप सुनेंगे 9/2/11 फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और एसटी बर्मन का संगीत।
1: Nothing should be given to you on a platter. If things are given to you on a platter, तो आपकी क्या contribution है? कुछ भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर को देख लो, किसी भी फील्ड में उनकी शुरुआत देखो कहाँ थी, कहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर शुरू से आदमी बड़ा पैदा हुआ हो तो उसको आगे कहाँ जाना है भाई? जो अचीव कर चुके हैं उनको और आगे क्या है सिवाय देवनंद के? तो मैं तो ये समझता हूँ मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया अभी तक। इट्स नॉट एन ईगो, इट्स अ फैक्ट।

और अब दोस्तों बढ़ते हैं अरुणिमा कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। किशोर कुमार का गाया हुआ दुनिया फिल्म से ये गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। भोर सुहानी कार्यक्रम में मिलेंगे 5:11 पर जल्दी ही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमेंस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

0: एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जापान एशिया खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, कर्नाटका के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Mr. Modi will also release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp and a book titled 100 Landmark Judgments, Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Delhi Jal Board has approved a series of major projects worth over 17,900 crore rupees to strengthen the capital's water supply, sewage network and sewage treatment capacity. The board has given in-principle approval to a 10-year 17,969 crore rupees program for comprehensive sewer maintenance under the One Zone, One Operate

आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम भोर सुहानी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। सुप्रभात। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

राधा का भी श्याम बोलो, मीरा का भी श्याम, और वो तो सबका ही है, लेकिन बस लगन सच्ची होनी चाहिए। ये भक्ति रचना आपने सुनी, गीत

गाता चल फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज में गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत आप सुनेंगे गीत आदत का गाया हुआ जोगन फिल्म।

सही बात है। कबीर दास जी ने भी अपने दोहे में यही बात कही है कि हमें अपने प्रीतम की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारी बुद्धि से अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। और अब अगला गीत कहता है कि हम दूसरों की खैर मांगेंगे तो हमारी रक्षा खुदा स्वयं ही करेगा।

ये गीत आपने सुना बादल फिल्म से मन्ना डे का गाया हुआ, जावेद अनवर का लिखा गीत था और उषा खन्ना का संगीत। दोस्तों, जब ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए इंसान मन में ठान लेता है तो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं परोक्ष रूप में सामने अपने आप को बता ही देते हैं कि वो कण कण में है।

बैजू बावरा फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, शकील बदायूनी की रचना थी और नौशाद का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे आशा फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत ने संगीत से संवारा है।